हो जाए यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है, सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें। योग से पहले और

बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है, लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो एक महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है, इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से, लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है, इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं, लेकिन जो हमने पानी पिया होता है वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवान रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार।
पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन, शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में है। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम स्वचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या, क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7, ये जब सब एक साथ मिल करके, जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या है? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं आइए हम आपको वो बताते हैं। गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई,
और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं। ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल अधिकांश मामलों में यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़े और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप जीरो पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें। यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है, बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया न लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20 से 30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद, यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन, यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15 से 20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन, या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5 से 10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना पानी आपको

प्रकाश सिर्फ दिए की लौ नहीं, वो ज्ञान की वो चमक है जो अंधकार मिटा दे। ईश्वर ने हमें आंखें दी देखने के लिए, पर प्रकाश दिया समझने के लिए। ऋग्वेद में कहा गया, तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से उजाले की ओर ले चल। यह सिर्फ भौतिक रोशनी की नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मबोध के प्रकाश की बात है। हमारे ऋषि मुनि दीप

प्रकाश ज्ञान, सत्य, दिव्यता और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। ये अज्ञानता और अंधकार को दूर करने वाली शक्ति है और अक्सर ईश्वर या चेतना के रूप में देखी जाती है, जो आंतरिक दृष्टि और दिव्य समझ से पहचानी जाती है। प्रकाश में जीना, इसका अर्थ है आनंद, जागरूकता और एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। दोस्तों, आध्यात्मिक प्रकाश के विभिन्न पहलू हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

प्रकाश को विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है, जैसे ज्ञान और सत्य। यानी प्रकाश को सत्य के रूप में देखा जाता है, जो अज्ञानता और झूठ को नष्ट करता है। ये हमें जीवन के सत्य के प्रति जागृत करता है। दूसरा है दिव्यता और ईश्वरीय उपस्थिति। ये ईश्वरीय शक्ति या चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जो कभी कभी दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ये ईश्वर और आत्मा, इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करता है। इसके बाद बात करेंगे आत्म जागरूकता और मुक्ति की। यहाँ पे प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति में आत्मज्ञान और जागृति आती है। ये आत्मा के पुनरुत्थान और आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। किसे? हमें, हम सभी को, हम सभी जीवों को। फिर बात करेंगे मार्गदर्शन की। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्गदर्शन। कई बार होता है हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता होता है, फिर भी यदि हमें किसी गुरु का सानिध्य ना मिले, उचित मार्गदर्शन ना मिले, तो हम अपने पथ से भटक जाया करते हैं। तो प्रकाश जीवन के पथ को रोशन करने वाली एक आंतरिक शक्ति है, जो हमें गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के द्वारा मिलती है। ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं।

अब हम बात करेंगे प्रकाश के उन पहलुओं पर जो कि हैं भौतिक और आध्यात्मिक संबंध और इसके अलावा एक अनुभव के रूप में प्रकाश। जिस प्रकार प्रकाश भौतिक दुनिया को देखने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश हमें सूक्ष्म और अदृश्य दुनिया को देखने की क्षमता देता है। ध्यान जैसी आत्मिक क्रियाओं से ये प्रकाश जागृत होता है। जब कोई व्यक्ति प्रकाश में आता है तो उसका अर्थ है कि वो दिव्य ज्ञान और सत्य के प्रति जागरूक हो गया है, जिससे उसके चरित्र में स्थायी परिवर्तन आता है। एक ही प्रकाश के विभिन्न व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप हो सकते हैं। ये प्रकाश ही है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभव प्रदान कराता है, जैसे उपचार, मार्गदर्शन या प्रेम। इन सभी में कुछ भी हो सकता है। तो हम चलते हैं उस प्रेम की ओर जो हमारे अंदर का प्रकाश हमें दिखाता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर अपना भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। और आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश की। चलिए आपको ले चलते हैं, कुछ धर्मों से रूबरू कराते हैं जिनमें प्रकाश का माने क्या है, यह हम आपको बताते हैं। बाइबल में लिखा है, लेट देयर बी लाइट, और प्रकाश हो गया। ईश्वर का पहला सृजन था लाइट यानी प्रकाश। ईसाई परंपरा में लाइट यानी लाइट ऑफ क्राइस्ट, वो दिव्य शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। क्रिसमस पर जलती हुई मोमबत्तियां इस बात का संकेत है कि अंधकार में भी ईश्वर का प्रकाश सदैव साथ रहता है। कुरान शरीफ में नूर ये शब्द बार बार आता है। अल्लाहु नुरुस्मावाती वल अर्ज, यानी अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। यहाँ नूर मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और रहमत का प्रकाश है। इस्लाम सिखाता है कि जो दिल का साफ है उसके चेहरे पर खुदा का नूर झलकता है।

गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपु भव, यानी स्वयं दीपक बनो। बौद्ध धर्म में प्रकाश का अर्थ है अज्ञान के अंधकार से मुक्ति। जब मनुष्य अपने भीतर का दीपक जलाता है तो करुणा, शांति और ज्ञान की रोशनी फैलती है। यहूदी धर्म में हनुक्का पर्व प्रकाश का उत्सव है, 8 दिनों तक दीप जलाने की परंपरा इस बात की याद दिलाता है कि विश्वास का प्रकाश हमेशा भय पर जीत पाता है। जब तेल सिर्फ 1 दिन का था पर वह 8 दिन तक जलता रहा, यही तो चमत्कार है प्रकाश का। यानी जब दीपक में सिर्फ 1 दिन मात्र का तेल बचा था, फिर भी वो विश्वास, प्रेम और आस्था के बल पे पूरे 8 दिन तक जलता रहा। और तभी से ये पर्व जिसका नाम है हनुक्का यहूदी धर्म में बहुत प्रचलित है।

श्रोताओं, अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है एक दीपक की यात्रा। बहुत समय पहले एक छोटा दीपक मंदिर में रखा था। हर रात वो मंदिर को जगमग करता, पर दिन में बुझा दिया जाता। उसे लगता कि शायद उसका कोई महत्व नहीं। दिन के उजाले में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक दिन आंधी आई, सब दीपक बुझ गए, पर उसी ने अपने छोटे से शिखा से पूरे मंदिर को फिर रोशन कर दिया। तब उसे एहसास हुआ, प्रकाश का काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस सच्चे इरादे से जलना जरूरी है। और जो सच्चे इरादे से जलता है वो अपने आसपास प्रकाश कर देता है, खुद जलकर, खुद को जलाकर, और जलने के बाद वो खुद भी कहीं ना कहीं मजबूत होता है।

दोस्तों, आज विज्ञान ने हमें बिजली, लेजर, सोलर एनर्जी दी। ये सब आधुनिक प्रकाश हैं, पर असली रोशनी तो तब होगी जब मानवता, सहानुभूति और प्रेम का उजाला हमारे दिलों में फैलेगा। स्मार्टफोन की स्क्रीन चमक सकती है, पर दिल की रोशनी वही जलाएगा जो दूसरे के दुख में भी मुस्कुराए। हर धर्म, हर युग, हर इंसान का मकसद एक ही रहा, अंधकार मिटाना, चाहे वो बाहर का हो या भीतर का। पहली किरण हमें यही सिखाती है कि हर सुबह एक नई रोशनी है और हम सब उस ईश्वर के अंश हैं जो प्रकाश के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है।

श्रोताओं अब बात करेंगे प्राचीन काल की। प्राचीन काल में प्रकाश को क्या माना जाता था? प्राचीन काल में प्रकाश ईश्वर का स्वरूप और ज्ञान का प्रतीक था। प्राचीन भारतीय सभ्यता में प्रकाश को परम सत्य का प्रतीक भी माना गया। वेदों में कहा गया, तमसुमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। यहाँ अंधकार का अर्थ अज्ञान, भ्रम और मोह से है, जबकि प्रकाश का अर्थ ज्ञान, आत्मबोध और सत्य की अनुभूति से है। दीपक जलाना केवल कर्म नहीं था, उस वक्त आत्मा के जागरण का प्रतीक था। सूर्य को साक्षी और ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप माना गया। उपनिषदों में कहा गया, ना ही सूर्या तप्ति तेन तस्य तेजः, अर्थात आत्मा की ज्योति सूर्य से भी महान है। इस प्रकार प्राचीन काल में प्रकाश ब्रह्म यानी सत्य की अभिव्यक्ति करता था।

बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल में प्रकाश भक्ति और प्रेम की रोशनी था। मध्यकाल भक्ति आंदोलन का युग था। आप चाहे हिंदी में चले जाएं, इतिहास उठा के देख लें या फिर अंग्रेजी लिटरेचर की बात कर लें, सभी में भक्ति आंदोलन अपने चरम पे था। कबीर, तुलसी, नानक, मीरा, रूमी आदि संतों ने कहा कि सच्चा प्रकाश हृदय में है, मंदिरों या दियों में नहीं। कबीर कहते हैं, मन के भीतर जो दीप जले वही असली ज्योति है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सूरज एको रुति अनेक, यानी प्रकाश एक ही है पर रूप अनेक हैं। सूफी मत में नूरे इलाही, यानी ईश्वर का प्रकाश, वे आत्मा में बसते हैं जो सच्चे प्रेम और इबादत से छलकता है। यानी मध्यकाल में प्रकाश का अर्थ है भक्ति, प्रेम और आत्मा की एकता का प्रतीक, जो कहीं ना कहीं आज भी हम अपने मन में टटोलते हुए पाए जाते हैं।

अब बात करेंगे आधुनिक काल में प्रकाश की, जो हमारा आज का युग है। आज के युग में प्रकाश चेतना, मानवता और आत्म जागरूकता की ऊर्जा की बात करता है। आज का युग यानी तकनीक और ज्ञान का युग, पर सच्चा उजाला वही है जो मन और समाज को प्रकाशित करे। आधुनिक आध्यात्म कहता है, आउटर लाइट ब्रिंग्स कंफर्ट बट इनर लाइट ब्रिंग्स क्लैरिटी। यहाँ प्रकाश का अर्थ है सकारात्मक सोच, मानवता का उजाला और आत्म चेतना। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि हम अपने भीतर की रोशनी को जलाएं, तो बाहरी अंधकार हमें कभी छू भी नहीं सकती। यानी आधुनिक काल में प्रकाश मानवता, आत्म जागरूकता और करुणा का प्रतीक है।

तो श्रोताओं, प्राचीन काल में प्रकाश ज्ञान था, मध्य काल में प्रेम बना और आधुनिक काल में वो मानवता बन गया। युग बदलते गए पर ईश्वर का उजाला कभी नहीं बदला और ये प्रकाश यूं ही निरंतर चलता रहेगा, जलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ में, पहली किरण के साथ में। अपने मन की पहली किरण को और ऊर्जावान करें, उसमें और आँच भरें और अपने मन को प्रकाशमान करें। मुझे दें इजाजत, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र, रब रखा, राधे राधे।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.
2: क्या बात है सुबह ही, हर रोज की तरह आज के मौसम ने भी हमको लाजवाब कर दिया है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो, ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा, शहर की धड़कन, और आप इस वक्त सुन रहे हैं अपना मॉर्निंग वाला शो विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सुबह ही आपको बताया कि हम आते हैं, आपका वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना वेलकम कोई अपना ही करता है। कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपने रिश्तेदार के यहाँ बड़े सालों बाद जाएं, या आप जब घर जाएं तो आपकी छोटी बहन या छोटा सा भाई आपका वेलकम करें, बहुत प्यारा लगता है। फिलहाल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे छोटा ही हूँ, बट ठीक है, मान लेने में क्या बुराई है यार। मैथ्स में आपने ना जाने कितने सारे एक्स वाई जेड सब माने हैं। सो फिलहाल आइए, ये मानना मनाना तो चलता रहेगा क्योंकि ये मॉर्निंग वाला शो है। फिलहाल वक्त है आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ बढ़ने का। सो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है ये तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, क्योंकि आज होने वाली है बहुत सारी बातें और आज है स्पेशल डे।

0: मॉर्निंग चौक आरजे नान आपका वेलकम करते हैं आपके गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गुंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। सुबह चलिए अब सीधे चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, लेकिन उससे पहले ऑब्वियस सी बात है कि आपका वेलकम करना है। और आपने ट्यून कर लिया है फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। सो आप सभी का वेलकम करते हैं, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर। सो अभी वक्त है आपसे बात करने का और बताते हैं कि भैया आज का मॉर्निंग वाला थॉट क्या है, क्योंकि हर रोज़ का थॉट आपका दिन बना देता है। हर रोज़ का जो थॉट है वो कहीं ना कहीं आपके दिन की शुरुआत करता है। सो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कह रहा है और आज का थॉट ऑफ द डे किस तरह से आप तक आ रहा है और किस फॉर्म में आ रहा है, इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं क्या है कहना आज के थॉट ऑफ द डे का, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

बड़ा ही उम्दा है आज का थॉट ऑफ द डे, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही बेमिसाल है। वैसे दिन तो याद है ना क्या है। जी हाँ, आज फ्राइडे है। फ्राइडे मॉर्निंग में थॉट जो कह रहा है वो दरअसल कुछ यूं कह रहा है कि घाव भरने हैं तो उन्हें छूना बंद करें। अगर आपको अपने घाव भरने हैं तो उन्हें छूना बंद करें। बहुत सच्ची, बहुत गहरी और बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है। हम परेशान होते हैं अपनी चीजों को, हो तो जाता है, लेकिन उसके बाद हम भी सोचते हैं यार क्या उसको लेकर के बैठा जाए, और ये सोच करके हम आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन फिर अचानक कहीं ना कहीं फिर उन्हीं घाव को छूने लगते हैं, किसी से बताते हुए, किसी से चर्चा करते हुए, और या बैठ करके अकेले में उन्हीं चीज़ों को सोचते हुए, और इसीलिए लाइफ फिर आगे बढ़ने ही नहीं देती है। बस इतनी सी ही तो बात है, और ये बात अपने आप में कहीं ना कहीं काफ़ी अलग है। यस, अलग इसलिए क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है, ये अपने मायने में बिल्कुल असर रखती है। इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि घाव जो है वो भरने में सच में वक्त लगता है, और आप भी इस बात को बखूबी जान रहे हैं कि हाँ, सच में घाव भरने में काफ़ी वक्त लग जाता है। सो फिलहाल ये वक्त शायद हमको कम ही लगेगा अगर हम अपने घाव को छूना ही बंद कर देंगे, क्योंकि घाव को जब जब कुरेदा जाता है तब तब वो बढ़ता है। ये बात तो बहुत फैक्ट है और ये बात बिल्कुल सच है। सो घाव को कुरेदना छोड़ दिया जाए, घाव खुद ब खुद भरना शुरू हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आप खुद भी अंदर से जानते हैं, और आपके अंदर की जो आवाज़ है वो भी ऐसा ही कह रही है। क्योंकि देखिए, अक्सर हम अच्छी बुरी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहती है, और हम कहते हैं कि यही लाइफ है, और हम सभी को ये पता भी है, लेकिन फिलहाल जब जख्मों की बात आती है तो ना जाने क्यों हम थोड़ा ठहर से जाते हैं उसको लेकर के, हम उस पर ज़्यादा ही स्टिक रहते हैं। इससे हम किसी और का नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि इससे अपना ही नुकसान।

होता है, क्योंकि उन जख्मों को हम बार बार कुरेदते रहते हैं। चूंकि जख्म अपना है, शरीर अपना है और कुरेद भी हम ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दर्द कहाँ होना है, खुद को ही होना है। ये बात तो बहुत ही फैक्चुअल है और इसीलिए शायद आज का ये थॉट ऑफ द डे बहुत शानदार है। सो आज ही देखिए, आज फ्राइडे है, आज का दिन है, तो आज का दिन ये हमको बात बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो भी जख्म है और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने ही गाहे बगाहे या गलती से ही सही या अनइंटेंशनली ही सही लेकिन कुरेदा है, तो आज उन चीज़ों को दूर करने का वक्त आ गया है। आपको अपने ज़ख्म कुरेदने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि घाव भर जाए, डेफिनेटली भर जाएगा, बशर्ते आपको उससे आगे बढ़ना होगा। नहीं बढ़ना हमारे लिए दिक्कत है, बढ़ जाना हमारे लिए बेहतरी है। ये हो सकता है शुरुआत में ना समझ में आए, लेकिन ये बाद में आता ही आता है, क्योंकि जब वक्त बीत जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि जब हम दूसरों के बारे में सोच रहे थे कि फलाने ने हमारे साथ क्या किया, धमाके ने हमारे साथ क्या किया, उससे बेहतर था कि उसी वक्त हमारी लाइफ चल रही थी जिसमें हम उन लोगों के साथ वक्त बिता सकते थे जिनके लिए कुछ बेहतर कर सकते थे। कुछ छोटे छोटे से ख्वाब, कुछ छोटी सी ख्वाहिशें, कुछ अपनी आदतों में बदलाव, कुछ बेहतर खाना, कहीं बेहतर जगह जाना, कुछ बेहतर चीज़ों को सीखना, सब कुछ तो हो सकता था, लेकिन हमने चुना क्या? अपने घावों को कुरेदना? तो क्या मिलेगा? वही जख्म, वही घाव ताज़ा होते जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि घाव भरने हैं तो उन्हें छूना बंद करें। बस इतना ही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मुझे लगता है कि आपको अपने हर घाव याद हैं जिसको फिलहाल आप अभी फेस कर रहे हैं, और अब इस थॉट के सुन लेने के बाद कहीं ना कहीं आप इस तरफ सोच रहे हैं कि हाँ, आप जाने अनजाने में ही सही लेकिन उस घाव को बार बार छू रहे थे और वो भर नहीं पा रहा था, है ना? चलिए, सो फिलहाल आप बताइएगा कि आज का थॉट ऑफ द डे आपको कैसा लगा, मॉर्निंग स्पेशल वाला, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी नूरे खुदा नूरे खुदा, आजकल तू कहाँ है मुझे ये बता। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के इस स्पेशल शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो वक्त है आपके भेजे गए मैसेजेस को देखने का, क्योंकि आपने ट्यून किया हुआ है फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से। और उसी एप्लीकेशन पर चूंकि चैट का ऑप्शन मिलता है जहां पर आकर के आप अपनी बातों को रखते हैं, आज क्या कहा है आइए चल के देखते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

सो एप्लीकेशन से सुनने वाले हमारे कुछ श्रोता जो हैं वो चैट बॉक्स पर अपने मैसेजेस भेज चुके हैं। कौन कौन मौजूद है और क्या लिखा है ये बताते हैं। सबसे पहले अभिराज पांडे फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपने हाय लिखा हेलो। एंड इसके बाद जो है वो नगेश्वर हैं, गुड मॉर्निंग आर्जन नानसर जी, हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है आपका मॉर्निंग वाले शो में। गीता श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग आर्जन सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और आपने लिखा है रिंकी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, सही कहा, मैंने बताना बंद कर दिया है और आप बदल गए हैं, क्या बात है, दैट्स वेरी ग्रेट। नगेश्वर ने भी अपना रिएक्शन दिया है और आप लिखते हैं कि चाकू से लगा घाव एक दिन वक्त आने पर भर जाता है, लेकिन किसी की ज़ुबान से लगा हुआ घाव पूरी ज़िंदगी नहीं भर पाता। किसी को अगर भूलना है तो उसको बार बार याद करना बंद करना पड़ेगा, उससे मिलना जुलना बंद। घाव हो या किसी की यादें, बार बार याद करने से और भी तकलीफ बढ़ने लगती है। थैंक यू सो मच कि आपको आज का सुविचार काफ़ी अच्छा लगा। प्रीति जी बहराइच से हमारी मौजूद हैं, लिखती हैं सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। हमारी गीता जी ने लिखा है घाव शरीर पर हो या मन के, कुरेदने से वो जल्दी ठीक नहीं होगा, इसीलिए उसे छोड़ दे वक्त आने पर, क्योंकि यही वो मरहम है जो सब कुछ ठीक कर देता है। वेरी स्पेशल थॉट, क्या बात है, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स चाहे जो हो, मुझे लगता है आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप इस वक्त 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, 50s में हैं, 60s में हैं, 70s में हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं आप, लेकिन आप इस बात को, आज के इस थॉट को रिलेट ज़रूर कर पा रहे हैं, क्योंकि अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग, हमने अपनी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई घाव ज़रूर सहा है। बस ये बात होती है कि कोई बहुत हल्ला कर देता है कुछ होने का, और कोई बहुत खामोशी से उन चीज़ों को भरने में लग जाता है, क्योंकि होती तो तकलीफ सभी को है, हर किसी के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई बुरा ज़रूर करता है। दो ही ऑप्शन होता है, या तो चिल्ला दिया जाए और इसी तरह रहा जाए, और या तो उसको मरहम लगा करके आगे बढ़ करके अपने आगे के सफर पर चल दिया जाए। सो फिलहाल थैंक यू सो मच कि आप सब अपने इस थॉट से रिलेट कर पाए, जो आज का फ्राइडे स्पेशल थॉट बना गुड मॉर्निंग गोंडा शो का। एंड यस, इस वक्त आप ये भी सोच रहे हैं कि हाँ सच में आपके कौन कौन से घाव हैं जिसको फिलहाल अभी आप टच नहीं करना है। यस, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें हमेशा रह जाती हैं, इसलिए उनको भूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलिए, भुलाने का एक और तरीका है, कुछ अच्छे अच्छे मस्त मस्त सॉन्ग सुनिए तो भी आप भूल जाते हैं, वो भी किस पे, अरे गोंडा FM के साथ साथ अपनी प्लेलिस्ट भी बना लीजिए। जी हाँ, एंड हमारी प्रीति जी कहती हैं ऑसम थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको ये थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। फिलहाल आइए ऐसी एक सुपर्ब सॉन्ग से आपको रूबरू कराते हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर ही लिया है गुड मॉर्निंग गोंडा।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: सुबह इतनी सारी बातों के बीच में क्यों ना आपको हम बता दें कि अब से कुछ ही वक्त बाद आपके लिए आपका स्पेशल सबसे खास सेगमेंट सिटी अपडेट आ रहा है। जी हाँ, एक सॉन्ग हम अच्छा सा एंजॉय करने वाले हैं ताकि मूड थोड़ा मॉर्निंग वाला और ज़्यादा बन जाए, और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज की सिटी अपडेट में आपके लिए क्या है, क्या कुछ हो रहा है आपके लिए ख़ास आपके शहर में। तो ये सब कुछ आप जानने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल आपने चूंकि ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
2: Do I sound a little cheesy? Where's the money?

0: हाँ जी, सो फिलहाल कहे हुए वादे के अनुसार आपको बताना था कि शहर में आखिर आपके यानी गोंडा में क्या कुछ चल रहा है आपके मॉर्निंग वाले शो में, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो लेट्स गो।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अकान।

सो फिलहाल सबसे बड़ी जो अपडेट गोंडा से आ रही है वो इस वक्त सरयू को लेकर ही आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब कटान होने लग गई है और ख़तरे के निशान से महज बल्कि 8 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है नदी, यानी इसका जो वाटर लेवल है वो ख़तरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊंचे पहुंच गया है। सो एल्गिन ब्रिज पर पानी लगातार बढ़ रहा है और नवाबगंज के कई गांवों में जो है वो कटान तेज़ी से इस वक्त हो रही है। सो आपको हम बता दें, सरयू नदी का जो वाटर लेवल है लगातार बढ़ने से जो आसपास के तटीय क्षेत्र हैं उसमें बाढ़ का ख़तरा बढ़ने लगा है, और कहीं ना कहीं अगर बताया जाए तो कल शाम 4 बजे एल्गिन ब्रिज पर नदी का जो वाटर लेवल था वो 106.15 मीटर दर्ज किया गया था, जो कि ख़तरे के निशान से 106.07 मीटर से 8 सेंटीमीटर ऊपर है। सो जल स्तर बढ़ने से रफ्तार भले ही कुछ धीमी हुई हो, लेकिन नदी किनारे बसे जो गांव हैं वहां के लोगों की फिक्र हो रही है। सो भाई जो भी तटवर्ती क्षेत्र से हमको सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो बताए हुए सेफ्टी मेजर्स हैं उनका प्लीज़ अपना ख्याल रखें ताकि आपका कोई भी ऐसा लॉस ना हो। और स्पेशली बहुत सारे हादसे इसी वक्त सुनने को आ रहे हैं जब नदी के किनारे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करें नदी के आसपास उसके किनारे पे जाने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि भाई ज़िले में वज़ीरगंज में पहला खुला है ज़िले का होम स्टे। जी हाँ, सो ज़िले में पहला होम स्टे जो है वो खुला है और पर्यटन निदेशालय की तरफ से जो वहाँ के निवासी हैं विनोद कुमार मौर्या, यानी मौर्या होम स्टे को सर्टिफिकेट जारी किया गया है। सो ज़िला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन के दौरान विनोद कुमार मौर्या को यह सर्टिफिकेट सौंपा है और डीएम ने कहा कि होम स्टे प्लानिंग के ज़रिए जो आसपास के लोग हैं उनको रोज़गार और स्वरोज़गार के जो नए मौके हैं वो मिलेंगे। सो इसके अलावा अब चलते हैं बिजली विभाग की तरफ। सुबह बकाया ना चुकाने पर 15 लोगों की काटी गई है बिजली। जी हाँ, बिजली विभाग के राजस्व वसूली अभियान के तहत कल चरसड़ी ग्राम के अहिरनपुरवा में 53 घरों के कनेक्शन की जांच की गई, जिसमें बिल बकाया होने पर 15 कंज्यूमर्स के कनेक्शन काट करके 48,000 रुपये वसूले गए। सो SDO मुकेश कुमार और JE विद्या सागर ने बताया कि 16 जुलाई से अभियान चल रहा है, 2 टीमें घर घर जा कर के जाँच कर रही हैं। बड़े बकायेदार 25 कंज्यूमर्स को वसूली नोटिस भेजा गया है, बकाया होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी करने की बात बताई जा रही है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल रोडवेज से जुड़ी हुई अपडेट है। सो मथुरा और वृंदावन के लिए अब बस सेवा जो है वो शुरू हो रही है। जी हाँ, सो सुबह 8 बजे से गोंडा डिपो रवाना होगी और कहीं ना कहीं ये जो मथुरा वृंदावन जाने वाले लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी सहूलियत होने वाली है। सो अब मथुरा वृंदावन जाने के लिए ये सेवा शुरू की गई है। गोंडा रोडवेज डिपो से मथुरा वृंदावन के लिए सीधी बस सेवा कल से शुरू हो गई है और हर रोज़ सुबह 8 बजे ये डिपो यानी गोंडा डिपो से रवाना होगी। इसके बाद ये लखनऊ, कानपुर, इटावा, मैनपुरी और आगरा होते हुए मथुरा पहुंचेगी। सो रोडवेज ने इस रूट के लिए 2 बसें जो है वो रिजर्व्ड की है। दोनों बसें बारी बारी से चलाई जाएंगी जिससे जो ये सर्विस है वो रेगुलर बनी रहे। अभी तक गोंडा से मथुरा वृंदावन के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा अवेलेबल नहीं थी, जिससे लोगों को कई बार बस बदलना पड़ता था, और ये सर्विस शुरू होने से अब कहीं ना कहीं वक्त बचने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा फिलहाल विदेशी धरती पर लक्ष्य ने लगा दिया है रनों का अंबार। जी हाँ, गोंडा के ही जो लक्ष्य हैं, सो गोंडा के युवा क्रिकेटर लक्ष्य रायचंदानी ने अपने पहले ही इंटरनेशनल अभियान में श्रीलंका में ऐसा परफॉर्म किया कि भारतीय क्रिकेट ने भावी सितारों में उनका नाम जो है वो अब लिया जाने लगा है। सो भारतीय अंडर 19 टीम के उप कप्तान के रूप में मैदान पर उतरे लक्ष्य ने टेस्ट और वनडे दोनों ही फॉर्मेट में शानदार बल्लेबाजी करके जो है वो दबदबा कायम किया। इनके परफॉर्मेंस से ज़िले में खुशी और गर्व का माहौल है।
सो कहीं ना कहीं भाई अब ये जो है विदेश की धरती पर लगातार झंडे गाड़ते जा रहे हैं, और ये चूंकि गोंडा से ही ताल्लुक रखते हैं इसलिए काफी ज्यादा यहाँ के लोगों में खुशी की माहौल देखा जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है भाई, हम खुश तो बहुत हैं। एंड इसके अलावा आपको अब हम बताने जा रहे हैं अगली अपडेट। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है राजकीय इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है सुबह 10 बजे से। इसके अलावा परसपुर में फैमिली आईडी बनाने के लिए शिविर का आयोजन भी सुबह 10 बजे से शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा परसपुर में ही पशुओं को खुरपका मुंहपका जैसी जो संक्रामक बीमारी है इससे बचाने के लिए भी टीकाकरण किया जा रहा है। तो जो भी हमारे लिसनर्स परसपुर से जुड़े हुए हैं गोंडा एफएम पर और वो पशुपालन करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वक्त खुरपका मुंहपका बहुत भयानक बीमारी पशुओं में हो जाती है, उसका टीकाकरण किया जा रहा है पशुधन विभाग की तरफ से। तो कृपया अपने पशुओं को लेकर के जाएं और इस टीकाकरण का पूरा पूरा फायदा उठाएं। एंड इसके अलावा आपको हम बता दें कि फिलहाल विज्ञान की प्रयोगशाला में स्टूडेंट्स ने लाइव कई एक्सपेरिमेंट्स किए। सो पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में कल आंचलिक विज्ञान नगरी की तरफ से 2 दिन का सचल विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, और प्रदर्शनी में ऊर्जा संरक्षण, विद्युत, ध्वनि और वैकल्पिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर बेस्ड 20 खुद से चलने वाले और हाथ से बने मॉडल्स जो हैं वो आकर्षण का केंद्र बने रहे। और इसमें काफ़ी बच्चों ने काफ़ी कुछ साइंस के सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट्स किए और जाना। फिलहाल आपको बता दें कि मंडल की हैंडबॉल टीम जो है वो घोषित कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। सो देवी पाटन मंडल की महिला हैंडबॉल टीम का जो है सिलेक्शन कर लिया गया है, और जो चुने हुए खिलाड़ी हैं 26 जुलाई को अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सो इस टूर्नामेंट में 27 से 29 जुलाई तक ये होगा, और टीम में सिलेक्शन के लिए बुध को ही उतराला रोड पर मौजूद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रायल हुआ भी था। प्रदर्शन और फिटनेस के बेस पर देवी पाटन मंडल की जो आखिरी टीम है वो घोषित की गई है। सो इसमें कहीं ना कहीं अब 29 जुलाई को अयोध्या के लिए रवाना किया जाना है, जहां पर ऑफ कोर्स कुछ मैचेस होंगे और उसको लेकर के हम अभी से बहुत सारे विशेज गोंडा टीम को देते हैं। एंड यस, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। सो ये रही आपके लिए आज की गोंडा अपडेट यानी सिटी अपडेट। आई होप कि आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ज़रूर रही होंगी और लगातार आप जुड़ते जा रहे हैं। सो यस ऑफ कोर्स, इस वक्त आप फ्रिक्वेंसी से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हैं रेडियो गार्डन के ज़रिए, और साथ ही साथ आप सुनते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। सो भाई, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है हमसे बतियाने का लाइव शो में, चलिए बहुत अच्छी बात है। और इस गाने को एंजॉय करते हैं जो काफ़ी वक्त बाद आपके बीच आ रहा है। आई होप कि आप इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
7: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
8: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सो यस डियर स्टूडेंट्स, डियर प्रिपरेशन करने वालों, आपके लिए फिलहाल एक अपडेट है जो हमें आप तक पहुंचाए देनी है, और वो है आरआरबी जेई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, सो फिलहाल रेलवे में जेई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नेक्स्ट मंथ से जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। तो आखिर इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल और साथ ही साथ क्या कुछ होना वाला है इस वैकेंसी में और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आइए सब कुछ बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो फिलहाल आपको हम बता दें कि रेलवे की जिस भर्ती का फिलहाल कुछ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे उसकी यानी आरआरबी जेई भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सो जारी हुए इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक नई भर्ती जूनियर में 4098 पदों पर आवेदन लिए जाएंगे और इसके बारे में आपको हम बता दें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जेई की इस वैकेंसी के लिए अगले महीने से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। सो नोटिफिकेशन में अप्लाई करने से जुड़ी हुई ज़रूरी तारीखों का भी जिक्र चुकी किया गया है। आरआरबी ने इस भर्ती के लिए 14 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ओपन करने की बात बताई है, जिसमें कैंडिडेट लास्ट डेट 13 सितंबर 2026 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो फिलहाल आपने बता दिया है कि भाई ये आरआरबी की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सो भर्ती का जो बोर्ड है वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी। पद का जो नाम है वो है जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल मेटरलॉजिक असिस्टेंट। इसके अलावा कुल जो वैकेंसीज हैं लगभग 4098 है। आवेदन करने की जो तारीख शुरू होने वाली है वो होने वाली है 14 अगस्त अभी जो बताया गया है उसके अनुसार, और लास्ट डेट बताया गया है 13 सितंबर 2026। पे लेवल जो है वो लेवल 06 यानी सातवें वेतन पे कमीशन 35,400 रुपये इसकी शुरुआती वेतन है। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें रिटन एग्ज़ाम और कई स्टेजेस हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना होगा। सो अब बात आती है मेन बात कि भाई कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसके लिए योग्य है, योग्यता क्या चाहिए इस वैकेंसी के लिए। सो रेलवे जेई की ये भर्ती जो है वो केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स और सिविल वर्क डिज़ाइन वर्कशॉप्स केमिकल्स और मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इन सारी चीज़ों पर जो है वो भर्ती निकलेगी, जिसके लिए शैक्षिक योग्यता और उम्र के दो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी में रखे गए हैं। शैक्षिक योग्यता में बताया गया है 3 साल का इससे संबंधित फील्ड में इंजीनियर

हमने आपको बता दिया वैकेंसी के बारे में, लेकिन अगर कोई बदलाव होता है तो आप इसकी लगातार वेबसाइट आरआरबी की चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये सब तैयार करवा सकते हैं तब तक, ताकि बाद में आपको फॉर्म फिल करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। सो भर्ती से जुड़ी किसी भी ज़रूरी जानकारी के लिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट आप कर सकते हैं, ताकि आपको बाकी जानकारी या शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताई गई जानकारियों में कुछ अगर फेरबदल हो रहा है तो उसकी जानकारी एग्जैक्ट आपको मिल पाए, अगर आप भी इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं और वैकेंसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो आई होप कि ये जानकारी आप तक पहुंच गई होगी, और अब आइए चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ। अगला सॉन्ग जो आ रहा है वो ज़बरदस्त है, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: मेरी गजल को मेरी जहाँ फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है। वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेरो शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
2: तो पैसा वाले तो कहूँ भी आ जा सकते हैं। ये कुआं कौन बड़ी चीज है।

0: भारत का एक ऐसा भी राज्य है जहाँ ऐसा लग रहा है जहाँ की सरकार जो है वो पूरी तरह से मूवी बना रही है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। जब से विजय थलापति वहाँ सीएम बने उसके बाद से उनके लिए गए फैसले लोगों को काफ़ी खूब भा रहे हैं और इंटरनेट सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मूवी में जिस तरह से किरदार निभाते थे विजय थलापति, कुछ उसी तरह का एक्शन लाइव देखने को मिल रहा है। और न जाने क्यों ऐसा लोगों को लग रहा है कि भाई कोई मूवी रियल में चल रही है। फिलहाल इन्हीं विजय थलापति की जो लास्ट मूवी है जिसका नाम है जन नायकन, आइए उस मूवी को बारे में बताते हैं, क्योंकि ये मूवी जो है वो फिलहाल सिनेमा घरों में जो रिलीज़ हो गई है। और क्या है जन नायकन मूवी में, जिसके फ़िलहाल जन नायक हैं विजय थलापति, इस मूवी के बारे में बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सबसे पहले तो एक बात साफ ये है कि भाई ये फिल्म पूरी तरह से थलापति विजय की फिल्म है और इसे फैंस इनके हमेशा इससे याद रखेंगे। जहाँ एक तरफ एक्शन सीन है और आर्टिस्ट का जो अभिनय है वो दमदार है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म की कहानी और क्लाइमेक्स थोड़ा सा निराश भी करते हैं। जी हाँ, अगर कहानी के बारे में आपको हम बताएं तो फिल्म की कहानी थलापति वेत्री कोंडन उर्फ TVK यानी विजय नाम के एक शख्स की है जो जेल में बंद है और कैद से रिहा होकर थलापति अपनी जेल के जेलर की बेटी यानी विजी ममिता बैजू का ख्याल रखने लगता है। एक दिन जेलर की मौत हो जाती है और थलापति पूरी तरह विजी को संभालने का जिम्मा उठा लेता है। दूसरी तरफ एंट्री होती है जॉन हेमलर यानी बॉबी देओल की, जो एक बहुत ही निर्दयी हत्यारा है। वो साउथ अफ्रीका में कत्लेआम मचाने के बाद भारत में भी तहलका मचाने आया है। इसी बीच एक विजी किडनैप हो जाती है और जब थलापति उसे बचाने जाता है तो उसका सामना होता है जॉन से। जॉन का एक अतीत है जिसका विजय थलापति से कनेक्शन है, ये सोचने वाली बात है। सो आगे की कहानी जानने के लिए आपको जाहिर है मूवी तो देखना पड़ेगा दोस्त। और अगर हम एक्टिंग की बात करें सो विजय थलापति ही इस फिल्म की जान है और ये फिल्म उतनी ही देखने लायक है जितनी देर विजय थलापति स्क्रीन पर आते भी हैं। इनका स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का है लेकिन कहानी कहीं ना कहीं कमज़ोर लोगों को लगती हुई नज़र आ रही है। सो फिलहाल एनिमल अल्फा और अब जन नायकन तीनों ही फिल्मों में बॉबी देओल के एक्सप्रेशंस और किरदार से एक हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा निराश करने का काम करते हैं। पूजा हेगड़े फिल्म में सिर्फ नाम के लिए रखा गया है। ममिता बैजू पूरी तरह फिल्म में अच्छी लगी हैं। प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेमन, प्रिया मणि और नासर ने अपना काम अच्छा किया है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो फिल्म की सबसे जो बड़ी कमज़ोरी माना जा रहा है वो अधूरा डायरेक्शन माना जा रहा है। सो निर्देशक जानते थे कि ये थलापति की आखिरी फिल्म है, इसलिए कई सीन और कहानी के कुछ हिस्सों में वो लॉजिक के पीछे गए नहीं। सो फर्स्ट हाफ ठीक ठाक ही रहा। सेकेंड हाफ की शुरुआत में फिल्म थोड़ी बेहतर होती है लेकिन क्लाइमैक्स तक आते आते कहीं ना कहीं ये ड्रामा लगने लग जाती है और स्क्रीन प्ले कुछ बिखरा हुआ सा नजर आता है। शुरुआत में जो फिल्म फैमिली ड्रामा लग रही थी वो सेकेंड हाफ में पॉलिटिकल ड्रामा लगने लगती है। सो क्लाइमैक्स तक ये साइंस फिक्शन बन जाती है। सो फिलहाल ये मूवी है जन नायकन जो कि विजय थलापति की लास्ट मूवी है और इसके बाद अब ये रियल लाइफ में भी भाई तमिलनाडु के चूँकि CM बन गए हैं और CM बनने के बाद जिस तरह के इन्होंने डिसीजंस लेना शुरू किए हैं उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि कोई मूवी सच में चल रही हो और उस मूवी का पार्ट पूरा पूरा राज्य हो। सो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि किस तरह से ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी और कितना और इम्प्रूवमेंट आ सकता है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले आपको एंजॉय करना है अपने मॉर्निंग वाले शो में आ रहे इस सॉन्ग का जोरदार हार्दिक स्वागत करना है। क्यों? क्योंकि आप इस गाने को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर चुके हैं और अब काफ़ी वक्त बाद आप सुनने वाले हैं अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ओ आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

लगातार अगर आप भी स्क्रॉल करते करते परेशान हो गए हो और अब चाह रहे हो कि यार कहीं तो ऐसी जगह हो जहां पे रील्स कोई ना बनाए और कहीं ना कहीं रियलिटी में रहे, ऐसा कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि भाई एक ऐसी जगह है, क्योंकि हम जब भी इमेजिन करते हैं हमें लगता है चलो ठीक है हम अपने घर में तो रह लेंगे, लेकिन हम जहाँ निकले वहाँ लोग भी ऐसे हो, वो भी इतना ज़्यादा फ़ोन में बिजी ना हो, वक्त निकालते हों, बात करते हों, बैठ के बतियाते हों, अपनी बातों को कह पाते हों, छोटी छोटी बातों को शेयर कर पाते हों। तो एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव है और ये गांव भारत में ही है। अब आप सोचेंगे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भारत का ऐसा गांव है भाई जहाँ लोग जो हैं वो डिजिटल दुनिया से दूर रियल वाली लाइफ में। जी हाँ, आपको हम बताने वाले हैं। उससे पहले आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं, बट आके हम जरूर बताते हैं कि आप भी जा सकते हैं ऐसी जगह जहां आपको अपने इस इमेजिनेशन वाले गांव में रहने का मौका मिल सकता है।

0: Literally, I'm blushing. मैं ब्लश कर रहा हूँ. वजह भाई, इसी चैट बॉक्स पर धर्मेश ने कुछ लिखा है. एंड थैंक यू सो मच दिल से धर्मेश, हम आपकी बात को पढ़ने वाले हैं और सब तक पहुंचाने वाले हैं. एंड लेकिन उससे पहले, चूंकि जो वादा किया है वो ज़रा निभा दें. वादा ये था कि आपको आने के बाद हम बताएं भारत का एक ऐसा खूबसूरत गांव, एक ऐसी जगह जो रील्स और मोबाइल की दुनिया से दूर असली भारत से मिलाता है. अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या है, तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आखिर ये भारत, असली भारत हम क्यों कह रहे हैं.
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

कुछ कुछ क्लैरिटी हमको इसी बात से मिलने लगती है जब हम कहते हैं भारत। जब ये नाम आपके कान में जाता है तो क्या इमेजिन होता है? हो सकता हो सबको अलग होता होगा। किसी को पहाड़ दिखने लग जाते होंगे, किसी को हरियाली, किसी को त्योहार नजर आते होंगे, किसी को गांव की मिट्टी के बने मकान, तो किसी को बतियाते हुए दो चार इंसान। कुछ भी हो सकता है इमेजिनेशन आपका, आपके सपनों का भारत है, कुछ भी आप कर सकते हैं। सो फिलहाल हम इसलिए इसको असली भारत कह रहे हैं क्योंकि हिमालय की गोद में बसा ये बागेश्वर जिला उसका सूपी गांव है। जी हाँ, हिमालय में बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सूपी गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए, साफ हवा के लिए और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। सो आपको बता दें कि यहाँ आने वाला हर शख्स इस गांव की सादगी और खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। सूपी गांव में ज्वार, बाजरा, रागी और मडुआ जैसे मोटे अनाज भी उगाए जाते हैं जो कि भारत के लिए बहुत पुराना अनाज है ये, और कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी पे चलती चली आ रही थी। फिलहाल ये अनाज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और लोगों को पारंपरिक थाली का यहाँ पर हिस्सा भी है, यानी वो रेगुलर लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सूपी के लोग अपने गांव से, खेती और अपनी लाइफस्टाइल से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जैसे अगर हम ही अपनी बात करें तो कई बार हमको लगता है नहीं यार, बड़ा गड़बड़ चीज़ें खा रहे हैं, बाहर की भी चीज़ें हो जाती है, अनहेल्दी बहुत हो जाता है, या मॉर्निंग में टहलना नहीं हो पाता, या नाइट वॉक मिस हो जाती है। लेकिन यहाँ के गाँव के लोग जो है अपने रूटीन के पक्के हैं और अपनी जीवन शैली से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए गांव नहीं छोड़ना पड़ता। जी हाँ, सूखी गांव में लोग होम स्टे चला करके जो आने वाले वहाँ पर्यटक हैं यानी टूरिस्ट हैं, इनका स्वागत करते हैं। सो इस पहल के लिए गांव को बेस्ट टूरिज्म अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अब ज़रा सोचिए, कोई ऐसा गांव जिसको बेस्ट टूरिज्म अवार्ड से नवाजा जाए तो इसका मतलब वो है उस लायक। अगर गांव अपनी संस्कृति, खेती और मेहमान नवाजी को बढ़ावा दे तो पर्यटन के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी मिसाल सीधे सीधे सूपी गांव है और इसकी एक शानदार मिसाल है ना। सो ऑफ कोर्स ये है हमारा सपनों का, रियल वाला भारत का गांव, यानी जो हम इमेजिन करते हैं। आज हम भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने कामों को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं यार बिजी रखना इस वजह से कि हमें टेंशन ना हो, हम याद ना दिलाए, या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कर ले, या इसी बहाने हम शॉपिंग कर पाएंगे, अपना घर ले पाएंगे, गाड़ी ले पाएंगे, घूम पाएंगे, इसमें ही हम लगा देते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि असली सुकून तो हमको कहीं ठहरने पर मिलने वाला था, कहीं बैठने पर मिलने वाला था, किसी से सच्चे दिल से कह पाने पर मिलने वाला था, और किसी को माफ़ कर देने से मिलने वाला था। तो शायद घूम करके हम वहीं आते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिंदगी की राह तो बहुत आसान है, लेकिन न जाने क्यों हम ही उसको इतना ज्यादा क्रिटिकल बनाए रखते हैं, है ना। सो फिलहाल मुझे लगता है अगर आप भी इमेजिन करते हैं ऐसा गांव जहां ये सारी चीजें दूर होकर के प्योरली लोग आपसे मिले, पुरानी चीजों को खाए पिए और अपना सांस्कृतिक जो भी है उन चीज़ों को जड़ से पकड़ कर रखें और मॉडर्न भी हों, ऑब्वियस सी बात है कि वक्त के साथ चीज़ें बदलती, इंसान भी बदलना चाहिए ही चाहिए। सो ये सब कुछ मिलने वाला आपको सूपी गांव में, जो कि बागेश्वर ज़िला है और ये हिमाचल में है, हिमालय की गोद में बसा है। सो आई होप कि आपको ये गांव सुनने के बाद ही बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। क्यों नहीं आएगा, इतनी सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें हमको पसंद हैं, और इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए पसंदीदा जगह पर तो क्या ही बात होती है। तो चलिए हम भी एक उम्मीद तो एटलीस्ट रख ही लेते हैं आज के इस शो में बात करते करते कि कभी बन पाया तो सूपी गांव ज़रूर जा कर के एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने आसपास का गांव, इसको कैसे भूल सकते हैं।

0: चलो बच्चों, अच्छा बताओ छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? अच्छा अब बताओ पतली बकरी क्या देती है?
1: दूध।
0: और मोटी भैंस?
2: मैं चिंटू बताएगा।
0: अच्छा ठीक है चिंटू, तुम भी बता दो।
3: मैडम जी, वो मोटी भैंसिया पहले ढेर सारा होमवर्क देती है, फिर थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़।
0: मारे क्या?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।

हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे नाना आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो यस, कुछ बातें होती हैं जो ज़्यादा ही अलग होती। फिलहाल एक ऐसी अलग बात जिसको देखकर दिल खुश हो गया, जस्ट अभी बहुत ही अच्छी बारिश शुरू हो गई है गोंडा में। सो आई होप कि भाई आप भी इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय करने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या होता है बारिश को? चलिए अंदाज़ा लगाइए और आप बताइए कि बारिश को एंजॉय करने का आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका क्या है। अगर आप सोचते हैं या आप इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं बारिश को, तो जाहिर सी बात है आपको बताना भी चाहिए, क्योंकि बारिश तो बारिश है। कहते हैं कि भाई बारिश एक रहमत की तरह होती है, जब आती है तो दिलों को गुलजार कर देती है और खुशियां अपार कर देती है। तो अगर आप भी हैं बारिश से बहुत ज़्यादा मुतासर, तो आप बताए ना कि आप बारिश को कैसे एंजॉय करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं शायद हमको वो तरीक़ा मिल ही जाएगा जहां बारिश को हम अपने ही तरह से सेलिब्रेट करते हैं, अपनी ही तरह से फील करते हैं।

0: क्या बात है, तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है। और फिलहाल बारिश के साथ साथ हमने भी याद कर लिया, इसीलिए हम वापस से आ गए। आप भी याद कर लेते हैं भाई, बताते नहीं हैं इसलिए हम आ भी जाते हैं। फिलहाल चलिए, हम तो आते रहेंगे और आप याद करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बारिश कैसे सेलिब्रेट करते हैं हमें ये जानना था आपसे।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Aajya Khan.

सुभाई बता दिया है फिलहाल रिंकी ने कि नहाना, अच्छा आप नहाने से एंजॉय करते बारिश को, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। और धर्मेश बताते हैं बारिश में पकौड़ी खाओ बनाकर अच्छे से, और क्या बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी ग्रेट। सो हाँ, मैं बस यही कह रहा था कि बारिश को एंजॉय कैसे किया जा सकता। दरअसल सच बात तो ये है कि आप जैसे भी फील कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, वो आपका एंजॉय करने का तरीका हो सकता है। जैसे कोई नॉवेल पढ़ने लग जाता है, तो कोई रोमांटिक से सॉन्ग सुनने लग जाता है, तो कोई बारिश में भीगने लग जाता है, तो कोई सौंधी सी पकौड़ियाँ तलने लग जाता है, तो कोई बस विंडो से बैठा देख रहा होता है। अलग अलग तरीके हैं, जो आपको सूट करे वो आप करिए। बारिश में निकल सकते हैं, लेकिन बारिश में निकलने के दौरान ध्यान भी ज़्यादा ही रखना पड़ता है। फिलहाल आइए, आपकी तरफ से कंटेंट भी आ गया है, वो भी हम पढ़ करके बताने वाले हैं। और बता रहे हैं कि भाई चैट बॉक्स पर कौन कौन से लिसनर्स हैं जो हमारे आ चुके हैं। मैंने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद से कई सारे मैसेजेस जो हैं वो आ गए हैं। आइए बताते हैं कि फिलहाल क्या कुछ लिख भेजा है आपने मॉर्निंग वाले शो में, मॉर्निंग वाले टाइम में। सो मैंने जो मैसेज पढ़ा था उसके बाद से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड यस, अगला जो मैसेज आया है वहाँ से शुरुआत, और धर्मेंद्र जी का आया है, किसी को भूलना इतना आसान नहीं, क्योंकि मन इतनी तीव्र गति से भागता है कि कितना एक पल के लिए वो याद ही आ जाता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच अपना पॉइंट रखने के लिए। और साथ ही लिखते हैं अदनान से, गुड मॉर्निंग, कोई सुलह कर दो जिंदगी की उलझन से, बड़ी तलब लगी है आज मुस्कुराने की। क्या बात है, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, सरयू नदी वाली, वही उसी की बात कर रहा है। आशु जी लखनऊ से हैं। सुप्रभात सर जी, क्या खूब सफ़र ये जिंदगी का, वही रोज़ वही सुबह और वही शाम, फिर भी हर रोज़ का सवेरा नया लगता है। दैट्स वेरी नाइस। सोनिया तिवारी जी, आपका स्वागत है, हेलो, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। उस्मान खान मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे अदनान सर, वालेकुम अस्सलाम, नाइस जानकारी, थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आई ये जानकारी। धर्मेश त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं धर्मेश, गुड मॉर्निंग। एंड यस, नीना जी मौजूद हैं। इसके अलावा धर्मेश लिखते हैं कि आदरणीय अदनान सर जी, आपकी आवाज़ सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुँचती है, हर गीत के साथ आप मुस्कुराने की वजह भी देते हैं और कभी कभी आंखें भी दम कर देते हैं। आपकी आवाज़ में ऐसी मिठास है जो दिल को सुकून दे जाती है, हर गीत की महफिल में आपकी वजह से और भी ख़ास बन जाती है। दिल से शुक्रिया, यूं ही अपनी प्यारी आवाज़ और बेहतरीन गीतों से हमारी ज़िंदगी महकाते रही, आपका लिसनर धर्मेश त्रिपाठी। ये दिल से कही गई बात है, सो दिल तक उतरी है, थैंक यू सो मच। और ये मैं मानता हूं कि तारीफ़ों से कहीं ज़्यादा एक जिम्मेदारी हो जाती है, और ये जो प्यार होता है वो कहीं नज़र आने लग जाता है, कहीं झलक सा जाता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया धर्मेश। एंड यस, आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, सोनिया जी भी काफ़ी एंजॉय कर रही हैं, सॉन्ग्स और बातें सब कुछ आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। कमल नैन जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड इसके बाद अगर हम चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने बताया कि कैसे कैसे आप एंजॉय करते हैं। धर्मेंद्र जी हमारे बारिश में साइकिल उठाते हैं और भीगने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुषमा तिवारी जी, आपको भी गुड मॉर्निंग, ओके, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए कि आपको शो नहीं पसंद आया, और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको और अच्छा बनाने के लिए। एंड नगेश्वर कहते हैं, मुझे तो बरसात के टाइम पर जहाँ पानी भरा रहता है उसमें साइकिल चलाना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच भाई कि आपको अच्छा लगता है। एंड यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्या बारिश को देखते रहना, दैट्स अमेजिंग, बहुत डीप होता है ना। सो चलिए भाई, आपकी तरफ से कंटेंट आ गया। हमारी प्रीति शुक्ल जी ने फ्रॉम बहराइच से भेजा है, मन के घाव, क्या लिखती हैं इस पे आप, मन के घाव, किस किस को दिखाऊं अपने मन के घाव, मन में एक टींस सी उठती है जब जीवन साथी ही दिन प्रतिदिन देते हैं असहनीय व्यंगवाणी वाली घाव, फिर भी खुश रहती हूं, मेरा खुश रहना उनको गवारा नहीं होता, और तीक्ष्ण वाणी का व्यंग बाण चलाने में कोई कोताही नहीं बरतते, बताओ करूं तो मैं क्या करूं, कुछ समझ ना आए मेरे, जाऊं तो जाऊं किस दिशा, और है मेरी मंजिल का अंत कहां, अनाप शनाप सुनने में अब कान भी मेरे जवाब दे चुके हैं।
ये लिखना सिर्फ लिखने तक नहीं होता, किसी को एंटरटेन करना नहीं होता हर बार, कुछ बातें होती हैं जो इंसान खुद से बोलता है, और शायद ये बातें दिल तक पहुंच जाती हैं, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो फील कर रहे होते हैं, जो पेन, जो दर्द, जब किसी से कह नहीं पाते तो शायद शब्दों से हम बात करने लग जाते हैं, और जब वही शब्द दूसरों के कानों में पड़ते हैं तो उनको भी अपने जैसा कहीं ना कहीं फील होता है ना? सो कोई बात नहीं जी, अच्छी बात यह है कि चलिए हम शब्दों से बातें तो करते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि हमारे इतने प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं कि आपकी लिखी हुई बातों को सुनते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, वक्त देते हैं, और अपने जज्बात भी उसमें डुबो देते हैं। सो दिल से शुक्रिया हर उस शख्स का जो सुनता है इस बात को, जो पोएम्स को, उस लिखावट को, उस पेन को, उस खुशी को, उस एक्साइटमेंट को, उस गहराई को, सब कुछ। थैंक्स टू एवरी लिसनर, आप महान हैं, और आपकी वजह से ही हम सब यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। फिलहाल अब चलने का वक्त हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि जाते जाते एक रोमांटिक सॉन्ग तो बनता है ना बॉस, क्योंकि बाहर बारिश और कानों तक खूबसूरत सा नगमा, भाई माहौल बन जाता है। तो चलिए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं। आज का शो कैसा लगा हमको बता सकते हैं आप, लेकिन हाँ अपना ख्याल रखना प्लीज मत भूलिएगा, और हाँ जिस तरह पानी खूब पीते रहते हैं उसी तरह कभी बारिश को भी ठहर ठहर के देखना काफी अच्छा होता है। लेट्स वॉच।

0: भाइयों आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर। क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल? तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज

0: साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहाँ होती है BA, MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
0: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज गोंडा।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद हम सभी मिलकर एक नया एपिसोड फिर से ला रहे हैं, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे गीतों की माला पिरोई गई है और हमारी प्यारी किरण दी की आवाज में है, जिसका साथ देने आ रही हैं खुशबू जी, जिमी जी, समता जी और स्वयं किरण जी। हमारी इस बार के गांव के गूंज का जो एपिसोड का नाम है वो है गोंडा। आइए तो चले हम गोंडा की गलियों का भ्रमण करेंगे सॉन्ग के साथ में।
1: श्वेता, खुशी, जिम्मी, कहाँ हो सब? अरे इतना सन्नाटा क्यों है और सबके चेहरे उतरे हैं, क्या हुआ? लो गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, धनिया की चटनी भी है।
2: कोई बात नहीं, हम अकेले ही खा लेते हैं।
3: हम लोग दुखी हैं, इसका मतलब ये थोड़े के पकौड़े नहीं खाएंगे।
0: जब इतनी गर्मी पड़ती थी तब हम लोग गांव जाते थे, आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो लगा टेढ़ी नदी में बोटिंग करेंगे तो पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
4: अब ना किरण दीदी का गाना सुन पाएंगे, हफ्ते में एक ही दिन तो होता है जब हम फ्री होते हैं। अब बताइए कैसे लोकगीत सुने हम?
1: सब अपने अपने मोबाइल यहीं छोड़ो और चलो मेरे साथ, सब हमारा हाथ पकड़ो और आंखें बंद करो, कोई चैटिंग मत करना, बस चुपचाप चलो।
3: कहाँ ले चल रही है भाई, हम लोग का किडनैप तो नहीं हो जाएगा?
0: बताइए ना किरण दीदी।
4: वहाँ हम सब बारिश में भीगने चल रहे हैं, मजा आ गया, कितनी तेज बारिश हो रही है।
1: देखो देखो समता छिप रही है, उसे बारिश से डर लगता है, सब पकड़ के ले आओ उसे।

0: आज पहली बार बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बारिश हो रही है। गाने पर डांस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है।
1: सच में अनोखा अनुभव है। इतनी तपती गर्मी के बाद ठंडी फुहार, बहुत मजा आ रहा है। किरण दी, एक और लोकगीत हो जाए।

0: चलो पानी रुक गया है, सब लोग कपड़े चेंज कर लो और देखो टेबल पर कितनी सारी चीजें सजा दी है मालती ने खाने के लिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है,
1: नमकीन पूड़ी, अदरक तुलसी की चाय, लहसुन का अचार, आम का गलका, मुंह में पानी आ रहा है। अरे मेरी प्लेट क्यों हटा रहे हो तुम लोग?
2: पहले रलिया बैरन पिया का गाना, फिर कोई और सुनाइएगा।

0: यह लीजिए गर्मा गर्म पूरी, आज का दिन तो हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे मालती, हाथ में तुमने गुदना गुदवाया है क्या?
1: ये तो बहुत पेनफुल होता है मालती, ध्यान रखना, भीगने मत देना हाथ को, इन्फेक्शन हो सकता है।
0: हमें तो देख कर दर्द हो रहा है, मालती को कितना दर्द हुआ होगा, पर बहुत सुंदर लग रहा है।
2: अरे गुदवाई लो हो गुदनवा, गुदवाई लो।

0: हर चीज पर आपके पास लोकगीत होता है, कानों को कितने मीठे लगते हैं।
1: आप लोग हमको गोंडा का बाजार घुमा देंगी? बहादुर की लड़की आई है शादी के बाद पहली बार, उसको मुझे कुछ देना था तो सोचा वहाँ से कुछ खरीद लूं।
2: चलो हम चलते हैं गोंडा के चौक बाजार में, कपड़े की चूड़ी की बहुत सी दुकान है।
0: पर सब ई रिक्शा से चलेंगे, पहले किरण दी गाने के जरिए गोंडा बाजार घुमाएंगी, फिर शॉप पर लेकर चलेंगी।

0: हम लोग बाजार जा रहे हैं मालती, तुम आराम करना और अपने हाथ का ध्यान रखना।
1: खुशबू, गोंडा में दो बाजार हैं, एक रानी बाजार और दूसरा चौक बाजार, दोनों बहुत पुराने हैं।
2: अब तो दुखरनाथ मंदिर से GGIC तक कई ब्रांडेड शॉप खुल गए हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन गए हैं।
3: लीजिए, ई रिक्शा आ गया, चलो सब लोग वहाँ। 89.6 FM पर गांव की गूंज चल रहा है। समता मैम, आपका फेवरेट लोकगीत।

0: यह रघुनंद मार्केट है, इसके बाद पीपल चौराहा, यहाँ से सब पैदल चलते हैं, तभी बाजार का मजा आएगा।
1: लौटते समय जय माता दी हॉट एंड कूल पॉइंट पर कॉफी पियेंगे, अभी तो पेट बहुत भरा है।
2: जगत, झाबड़ा, सेठ, लक्ष्मी, यह सब बहुत पुरानी शॉप है। चलिए चूड़ी वाली गली में चलते हैं।
3: ये गली तो कितनी पतली और कितनी सकरी है, और इतनी सारी शॉप्स। ये तो लखनऊ के अमीनाबाद से भी पतली गलियां हैं।
0: हाँ, चूड़ी की शॉप, लेस बहुत सुंदर मिलती है यहाँ, शादी का हर सामान मिलता है, और इन शॉप में बर्थडे पार्टी का सामान भी है, और यह शॉप है जहाँ कॉस्मेटिक सामान है।
1: खुशबू, यहाँ तुम्हें सब मिल जाएगा, पूरी गली में ज्ञानस्थली रेडियो सब सुन रहे हैं। हाँ भाई, यह वही किरण दीदी है जिनका गाना आप सभी सुन रहे हैं।

0: चूड़ी वाली गली को घूमने में तो लगता है पूरा दिन चला जाएगा। चलिए, हमारे मतलब भर का सामान हो चुका है,
1: चलिए फिर वापस चलते हैं। सीधे सीधे चलिए, हम लोग फल वाली मंडी के पास निकलेंगे।
2: ये गली चार अलग अलग सड़क पर खुलती है, क्रॉस के शेप में है।
3: यहाँ सारी बुक्स स्टेशनरी की शॉप है, इसके पीछे सब्जी मंडी, चलो ई रिक्शा लो, तुम्हें राधा कुंड घुमा दे।
0: हाँ याद आया, कृष्णा मैम ने एनएसएस की स्टूडेंट्स को भेजा था इस कुंड की सफाई के लिए।
1: अब तो यह बहुत सुंदर हो गया है, दीपावली पर दिए भी जलते हैं।
2: हेलो, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो गांधी पार्क चलते हैं। वहाँ ना एक लेडीज क्लब का प्रोग्राम्स है, जिसके लिए बुला भी रहे थे।
3: चलिए चलिए, वहाँ तो बहुत मजा आता है, खूब खाने को मिलेगा, सब नाचेंगे गाएंगे, खूब मस्ती करेंगे।
1: वहाँ महात्मा गांधी की स्टैचू है, वह एरिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। क्लियर इंडिया मिशन के चलते इसे बहुत साफ कर दिया गया है।
2: जिम्मी खुशी समता, सबसे मिलो तुम लोग। रोली, तुम इन लोगों का ध्यान रखना। लाओ लाओ लाओ ढोलक, बस दो मुझे दो। इस सुंदर मौसम में धमाल करते हैं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर

नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द वायरस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

हाँ जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहे होंगे। आज है दिन फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। और भैया शुक्र है, शुक्रवार आता है जहाँ हम आपसे बातें करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप एक इंडियन है। देखिए, इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, लेकिन हम लोग सोचते हैं यार छोड़ो, कौन ही जाने। और अगर उसके बारे में कोई हमसे बाहर वाला पूछ लेता है तो भैया मुंह बना के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमें तो नहीं पता। लेकिन ये हमारे लिए सबसे एम्बैरेसिंग चीज़ होनी चाहिए दोस्तों, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, वो भी स्पेशली अगर वो हमारे इंडिया से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, मैं यानी आपकी होस्ट आरजे आयुषी आपके साथ आज आ गई हूँ लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानाश्री लाइव। और आप सुन रहे हैं कलाकार इंडिया। जी हाँ, कलाकार इंडिया इसलिए क्योंकि आज शुक्रवार के दिन हम बात करते हैं कुछ ऐसे टैलेंट की, कुछ ऐसे आर्ट की, कुछ ऐसे क्राफ्ट की जिसके बारे में हमें जानना चाहिए और वो हमारे इंडिया से संबंधित है। भाई वही अपना प्यारा शो जहाँ हम ढूंढते हैं भारत के अनछुपे हुए हीरो को और उनको अपने हाथों से रचते हैं और जादू देते हैं। चलिए आज के इस शो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ अपनी फ्रेंड की। जी हाँ, मेरी ये सगी फ्रेंड है, मतलब बिल्कुल अपनी वाली, एकदम कहते ना एकदम जिगरी यार, चड्डी बड्डी दोस्त वो है। उसकी एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। भाई देखिए, वो है बरेली उत्तर प्रदेश से। हाँ वही बरेली जहाँ का भैया झुमका बड़ा सा फेमस है। और पता नहीं क्यों झुमका बरेली में ही क्यों गिरता है, इसका जवाब तो मुझे आज तक पता ही नहीं चला। लेकिन बहुत कम लोग को पता है कि ये शहर और भी एक चीज़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ देखिए, वो चीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ भैया। वो है हमारा, बताऊँगी आपको, अभी थोड़ा सस्पेंस रखो। चलिए बता देती हूँ, वो है हमारा बैम्बू क्राफ्ट। देखिए बैम्बू क्राफ्ट यानी कि बांस से बनने वाली चीज़ें। अब आप अगर गोंडा वासी हैं तो आपने स्टेशन रोड जाते वक्त कई जगह पे बांस से बनने वाली चीज़ों को देखा होगा। ऐसे लोग मंदिर के किनारे बैठे रहते हैं जो बांस से कई सारी चीज़ों को बनाते हैं, जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं, डब्बे होते हैं, एक जिसे हम अवधि में सूप कहते हैं, जिसे हम धान वान हो गया या गेहूँ हो गया उसको साफ़ करते हैं, वो बनाते दिख जाते हैं। या फिर अगर कोई ऐसा त्यौहार है जिसमें, और स्पेशली हमारे देहात में आज भी बांस का बना हुआ बेना यानी कि पंखे का इस्तेमाल होता है। बचपन में उसने जो है अपनी एक गली के नुक्कड़ में एक कई बार एक चीज़ देखी है जहाँ वो कारीगर जो रहते थे वो बांस से बहुत लंबी लंबी पत्तियाँ काटते थे और उसका वो कभी झोला बना देते थे, कभी टोकरी बना देते थे। उस वक्त तो उसने भैया वो सारी चीज़ें देखी और उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन उसे बड़ी होकर समझ में आया कि ये जो चल रहा है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है या सिर्फ ये रोज़गार का एक ज़रिया ही नहीं है, बल्कि ये पूरी एक संस्कृति है, एक पूरी कला है जो कि आज नहीं कल नहीं बल्कि सदियों से हमारे भारत में चली आ रही है। और बस इसी वजह से जब उसने मेरे को ये सारी चीज़ें बताई तो मुझे लगा कि हमारे दोस्तों को यानी कि आपसे लिसनर, आपको इन सारी चीज़ों को बताना चाहिए, क्योंकि भैया ये जो ग्रीन गोल्ड है ना भारत का, यानी कि हमारा बांस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, बांस का हमारे उत्तर प्रदेश से भी बहुत ज़्यादा लेना देना है। क्या है उस तक हम चलते हैं। देखिए भैया दोस्तों, सबसे पहले अब हम समझते हैं कि बांस से बनता क्या क्या है। अरे भाई, लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं शुरू करूँ ना तो मुझे लगता है कि आज का पूरा शो ही सिर्फ लिस्ट गिनाने में लग जाएगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बांस से बनती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रसोई की। जी हाँ, आपकी दादी नानी के ज़माने में कटोरी, थाली, बॉक्स, डलिया और कई जगह गाँव में इसे हम मेलिया भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें बांस से बनी होती हैं। सब कुछ बांस से ही बनता है। और मज़ा तो देखिए भैया कि जब आप पूरी दुनिया आज प्लास्टिक से परेशान है, उन्हें हम बैम्बू इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और लोग बैम्बू की बनी हुई चीज़ों को दुगने तिगुने रेट पे खरीद रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमारी संस्कृति में आज नहीं बल्कि सदियों पहले से है। प्लास्टिक का यूज़ तो हमारे भारत में बाद में आया, इससे पहले हम लोग तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों का यूज़ करते थे जिसका कोई नुकसान नहीं है, जैसे कि बांस से बनी हुई चीज़ें हो गया, मिट्टी से बनी हुई चीज़ों का हो गया। अब ये इको फ्रेंडली भी है, बायोडिग्रेडेबल भी है और ये मजबूत भी रहता है। हम मिट्टी के बर्तन तब इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि उसमें अगर कोई लिक्विड लग जाता था तो हम उसे इजीली साफ़ कर सकते थे, लेकिन जो कुछ सूखा खाना होता था, जैसे पहले के ज़माने में नमकीन नहीं होती थी तो लाई होती थी, या फिर हम कह सकते हैं चूड़ा होता था जिसे हम पोहा भी कहते हैं, उसको हम खाते जो सूखी चीज़ें होती है, तो उसके लिए हम बांस की चीज़ें यूज़ करते थे। अब सुनिए भाई प्रोसेस। अब देखिए, जितना ये चीज़ें खूबसूरत होती हैं ना, उतना ही इसका प्रोसेस भी मज़ेदार होता है। देखिए भाई, ये कोई मैजिक से कम नहीं है, इससे काम करना, इससे चीज़ें को बनाना,
कारीगर पहले जो है बांस की लंबी लंबी पत्तियां चीरते हैं। चीरना आप समझ रहे हैं ना, यानी कि उसको पतले पतले पतले भाग में उसे काट देते हैं। फिर उस पतली पट्टी को हम कहते हैं सरई। जी हाँ, सरई। अब ये जो सरई होती है ना, इससे काम करना सबसे मुश्किल काम होता है। देखिए, अगर ये सरई से जरा सा भी इधर उधर हुई ना, और जरा सी चूक हुई, तो हाथ आपके कट भी सकते हैं, ये इतना शार्प होता है। और अगर चौड़ी पट्टी काट रहे हैं तो चौड़ी पट्टी को हम कहते हैं बिरला। फिर इनको पानी में रंग डाला जाता है, पानी में 2-3 घंटे डुबो के रखा जाता है, जिसमें हम कलर डालते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बांस की चीज़ों को बनाते हैं, वो बांस की चीज़ों को रंगते ज़रूर है, रंगते हुए हैं उसकी खूबसूरती के लिए। आपने अधिकतर उन्हें पिंक और ग्रीन और येलो कलर से रंगते हुए देखा होगा। ये सारे कलर्स ऐसे कलर्स होते हैं जो हमें नुकसान नहीं करते, ताकि ये लचीले भी बन जाए, क्योंकि ये भीगे रहते हैं, और इन पे कलर जो आए उससे उसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर जाए। इन पत्तियों को क्रॉस क्रॉस करके, यानी उसको बुनते हैं, और देखते ही देखते बन जाती है एक सुंदर सी टोकरी, कटोरी, बॉक्स, या फिर एक कोई सूप। अब जहाँ मैं सूप बोल रही हूँ, वहाँ उत्तर प्रदेश वासी स्पेशली ये समझ जा रहे होंगे कि मैं कौन से सूप की बात कर रही हूँ, पीने वाला या फिर हमारे घरों में जो यूज़ होता है उसका। ये काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो एक पूरा उनका एक समुदाय होता है। मैं आपको बता दूँ, इस पूरे समुदाय को जो बांस की चीज़ बनाते हैं उसे हम बसोद कहते हैं, या फिर बंसोर कहते हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी रोजी रोटी कला पे ही टिकी होती है। और ये कला बिहार से लेकर के बंगाल तक फैली हुई है। ये कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो हुनर है इसको आगे बढ़ाते हैं। वेस्ट बंगाल में तो दोस्तों एक खास टोकरी होती है जिसे हम कहते हैं डॉली। डॉली जो होती है, जिसे हम DULI, जिसे आप दादा पे डबल ओ की मात्रा और लाला पे ई की मात्रा, इससे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये धान, यानी कि ये पैडी रखने के लिए ये यूज़ होता है। काफ़ी बार हमारे उत्तर प्रदेश में, स्पेशली अगर हम बात करें तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में डॉली भी यूज़ होती है, और हमारे बिहार में भी डॉली यूज़ होती है। आपने देखा होगा कि बिहारी कल्चर में जब दुल्हन अपने ससुराल आती है तो सबसे पहले उसे डॉली, यानी कि हम वहाँ पे डोरा भी कहते हैं, वहाँ पे पैर रखवाया जाता है, क्योंकि बांस से बनी हुई चीज़ों का हमारे कल्चर में बहुत बड़ा कह सकते हैं स्थान है, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था से भी वो जुड़ा हुआ है। और सिर्फ घर की चीज़ें ही नहीं, बल्कि फर्नीचर, जैसे झूले हो गए, लैम्प हो गया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, खिलौने हो गए, सनशेड हो गए, मैट्स हो गई, चटाइयाँ हो गई, ये भी हमारी बांस से बनाई जाती है। भाई, एक पूरी की पूरी दुनिया हम बना सकते हैं बांस से। अगर किसी को बांस की बनी हुई चीज़ों को इंटरेस्ट है ना, अगर आप छोड़िए, अगर मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल दूं, अगर आपको बांस की दुनिया देखनी है ना, तो आप चले जाइए जहाँ पे ये बंसौर या बंसौर का घर हो, जो लोग बांस की चीज़ों को बनाते हैं। जब आप उनके घर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे 80% चीज़ें हैं जो बांस से बनी हुई हैं, चाहे वो कटोरी हुई, थाली हुआ, पंखा हो गया, लैम्प शेड हो गया, बैठने की कुर्सी हो गई, चटाइयाँ हो गई, ये सारी चीज़ें बांस से बनी हुई हैं। यहाँ तक कि कपड़े रखने वाली अलमारी भी बांस की ही बनी होगी। अक्सर हम सभी के घर में, कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनके घर में भी, अगर मैं कहूँ तो मेरे घर में खुद एक अलमारी है बांस की, शू रैक है बांस का, एक कहते हैं जो पंखा मैंने कहा वो बेना, जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में बेना, वो भी आपके घर में मिल जाएगा। और एक सूप तो है जो हमारे कल्चर में है, और वो ज़रूर आपको बांस का मिल जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, बांस की चीज़ें अभी यहीं तक समाप्त नहीं हुई, यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बांस की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, उसकी उपस्थिति है हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में, और धीरे धीरे ये इवोल्यूट भी हो रहा है। यानी कि इसका जो एक ऐसा इवोल्यूशन आया है जिससे बांस छोटी से लेकर के आज एक बहुत बड़ी कला है। और आपको पता है, ये जो हमारी बांस की कला है ना, ये सिर्फ हमारे गली, नुक्कड़, हमारे शहर तक या उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, ये विदेश तक भी पहुँच चुकी है। कैसे गई है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए, ब्रेक में मैं जा रही हूँ, आपको कहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो कहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ, एंजॉय करना है ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग छैया छैया।

वेलकम बैक लिसनर, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, जिसमें हम आज इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट, साथ ही साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें जाननी चाहिए भाई, हमारे कल्चर में है लेकिन हम उसके बारे में इतने जानकार हैं ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरी लगती है यार, हमें जानना चाहिए। और स्पेशली मेरी फ्रेंड जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया, उससे इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि आपको भी सारी चीज़ें बतानी चाहिए। अभी तक हमने बात की कि बाँस की क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कहाँ बनती हैं, उन्हें कौन लोग होते हैं जो उसे बनाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन अब हम जानते हैं भैया इसके इतिहास के बारे में, तो थोड़ा टाइम मशीन को पीछे लेके चलते हैं। हाँ, मतलब बहुत पीछे। सच कहूँ तो भाई देखिए, बांस के जो शिल्प होती है, जो बांस के क्राफ्ट होते हैं, उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी के पास नहीं है। कोई भी ऑफिशियल सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला जो मैं आपको बता सकूं। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं दोस्तों कि ये कला भारत में लगभग सेकेंड सेंचुरी के पास आई। अब सेकेंड सेंचुरी, अब आप समझ लीजिए कि अभी चल रही है 21वीं सदी, और वो दूसरी सदी में के आसपास ये हमारे भारत में आई। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ये इतनी पुरानी है कि इसी से एक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। अब सोचिए, उस ज़माने में जब प्लास्टिक नहीं था, ना स्टील की फैक्ट्रियां थी, तो लोगों के पास आसपास की प्रकृति ने दिया उन्हें एक ऐसी चीज़ जिससे वो उन्होंने अपना काम चलाया, अपने आप को। और कह सकते हैं कि उस ज़माने में जब इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ है और हमारे लिए भी सेफ़ है। और ट्राइबल कम्युनिटीज़, यानी कि जो आदिवासी समुदाय होते थे, जो जंगलों में रहते थे, और उन्होंने देखा कि भैया जो बांस है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपने नोटिस किया होगा कि बांस, अरे अगर आपने कभी, अगर आप गांव से लिंक करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे गुरुजी आते थे, जो स्कूल के बाद हमें पढ़ाने आते थे, जिसे हम आज के ज़माने में ट्यूशन टीचर कहते थे, वो अपने साथ एक छपकी लाते थे। अब छपकी जो होती थी वो बहुत पतली लकड़ी होती थी, वो अक्सर बांस की बनी होती थी। जो बांस का पतला पार्ट होता है उससे मारते थे, और भैया बहुत तेज़ लगती थी। जिसने पाई है ना, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद हुए कि आखिर वो छपकी, यानी जो बांस की डंडी होती थी, वो कितनी तेज़ लगती थी। और उसी के डर से हम लोग अपना होमवर्क पूरा करते थे, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होती थी। और इसी से शुरू हुआ बांस से बनने वाली चीज़ों को, क्योंकि ये स्ट्रांग भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और ईजिली हमें जंगलों में, हमारे घर के आसपास खेतों में मिल ही जाती है। और फिर क्या, वहीं से शुरू हो गया एक बहुत ही बेहतरीन सफ़र। सबसे ज़्यादा क्रेज़ था ही भैया नॉर्थ इंडियंस में। देखिए, नॉर्थ इंडियंस अपनी कला के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। जी हाँ, इन्होंने अपनी कल्चर को, अपनी कला को बहुत ही प्यार से संजो के रखा है। जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, जहाँ बांस के 38 से भी ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। असम में तो बांस को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है कि शुभ दिनों में बांस का इस्तेमाल करना बिल्कुल मैंडेटरी हो गया है, और बांस को बिल्कुल देवता जैसा ट्रीटमेंट मानते हैं। कहते हैं कि ये बांस जो है, इसने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और पहले के ज़माने में और आज भी आपने देखा होगा कि हम इंडियंस जो हैं वो किसी भगवान से ज़्यादा हम लोग नेचर की पूजा करते हैं। जैसे सूर्यदेव हो गए, हमें सनलाइट देते हैं, पानी हो गया, गंगा नदी हो गई, हम पानी की रिस्पेक्ट करते हैं, पानी की पूजा करते हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं, हमारी सारी पूजा पाठ रिचुअल्स, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो नेचर से जुड़ा हुआ है। और नेचर अगर हमें इतनी सारी चीज़ें देता है तो उन्हें देवता मानने में हर्ज ही क्या है। धीरे धीरे ये कला दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से निकल कर वेस्ट बंगाल पहुँची, फिर उड़ीसा, और फिर पूरे देश में ये फैल गई। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में भी, अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा रिवाज है। जब आप जाएंगे पहाड़ों में, तो पहाड़ों में मौजूद, या फिर कहे पहाड़ों में ज़्यादा मिलने वाली लकड़ियों से भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उन्हें भी ऐसे पतले पतले पट्टियों में काट के उससे भी चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन जहाँ बांस की पैदावार ज़्यादा होती है, वहाँ पे बांस का इस्तेमाल किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि इसमें कोई एक इन्वेंटर नहीं है, ये ऑर्गेनिकली गाँव में लोग इंडिपेंडेंटली खुद ही करते हैं। क्योंकि ज़रूरत ही, कहते हैं ना कि ज़रूरत पे हम चीज़ों को, जिसे हम झाड़ झंकड़ कह के फेंक देते हैं, उसको भी हमने अपने, और हर एक इंसान को ये चीज़ें आती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो दादी दादा हैं, नानी नाना हैं, हमारे पापा हैं,
इनको कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से जुड़े हुए कोई कला के बारे में ज़रूर पता होगा। मैं आपको बताती हूँ भैया, देखिए हमारे पापा या दादा दादी को किसी ना किसी को खाट बनाना ज़रूर आता है, जैसे हम गांव की भाषा में हम कहें अवधि में हम लोग खटिया कहते हैं, जो हमारे गांव में आज भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये भी कोई ऐसा थोड़ी ना, ये सारी चीज़ें भी एक कला में आती हैं। ऐसे ही बाँस की बनी हुई चीज़ें, पहले मेलिया बनाई जाती थी, इसके बारे में हमने बात की। और पहले दोस्तों जब हमारे घरों में शादी होती थी तो शादी में बाँस की बनी हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता था, और शादी से पहले घर में मौजूद लोग जो है वो उस बाँस का इस्तेमाल करके छोटी छोटी टोकरियाँ बनाते थे जिसमें दुल्हन के घर मिठाइयाँ जाती थी, उसको रंगते थे। और जब भी ये चीज़ें बनाई जाती थी, क्योंकि देखिए पहले शादियों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता था और घर में लोग ज़्यादा होते थे, तो ये जो बाँस की चीज़ें होती हैं इनका इस्तेमाल करके ये टोकरी बनाते थे, बास्केट बनाते थे, कटोरियाँ बनाते थे, सूप बनाते थे जिसका इस्तेमाल हमारी शादियों में होता है, और इसको रंगते थे। और सबसे खूबसूरत दोस्तों हमारे कल्चर की ये भी है, सबसे खूबसूरत बात कि जब भी ये चीज़ें प्रिपेयर की जाती थी घर वालों के थ्रू, तो हमारे घरों में जो है गाना बजाना होता था, शादी के गीत गाए जाते थे, देवताओं के गीत गाए जाते थे। और कहते थे कि जो ये सामान है, हम सभी ने सुना है कि जब हम कोई भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अगर हम सिर्फ सिंपल खाने की ही बात कर लें और हम खुश मन से बनाते हैं और हम इंजॉय करके बनाते हैं, तो उस खाने में भी हम ये मानते हैं कि उसमें बरकत होती है, वो अच्छा बनता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और इसी तरीके से जब हमारी शादियों में कोई भी चीज़ें रेडी की जाती हैं, कोई हैंडमेड चीज़ें होती हैं, तो उसको बनाते वक्त गाना ज़रूर गाया जाता है। जैसे कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में भी, आज भी अगर जो लोग के, हाँ आपने देखा होगा शादी वादी में तो दाल वाल धोई जाती है और मंडप सजाया जाता है, तो उस वक्त भी गाना गाया जाता है जिसे कहते हैं ये शुभ गीत होता है। और इसकी वजह से जो नया जोड़ा है उसकी लाइफ में कई सारी ब्लेसिंग्स हम लोग ऐड करते हैं। सेम यही चीज़ हमारे बाँस के साथ भी होती थी जब चीज़ें बनाई जाती थी, और यहीं से बाँस का जो है कह सकते हैं इम्पोर्टेंस हमारे कल्चर में और भी ज़्यादा हो गया। और आज हमारे घरों से कहीं ना कहीं बाँस की चीज़ें गायब हो रही हैं, लेकिन हमारे कल्चर से कभी नहीं। हमारे घरों में हमारे भी जब हम किसी के दादी दादा बनेंगे, जब हम किसी के नानी नाना बनेंगे, तो हमसे भी बच्चे ये ज़रूर पूछेंगे कि आखिर ये बाँस की जो चीज़ें होती थी ये क्या है, कैसी हैं। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तो हमें सबको पता है कि भैया प्लास्टिक का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हमें भी बाँस पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, और आगे आने वाली जनरेशन को इसके बारे में बताना भी चाहिए। अब हम चलते हैं घर वापसी की तरफ, यानी कि बरेली की कुछ कहानियों की तरफ जहाँ पे इसका इवोल्यूशन हुआ। लेकिन इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे हम जा रहे हैं लेकिन आपके लिए लाएंगे कई सारी चीज़ें, हमारे कल्चर की भी चीज़ें, कल्चर से कैसे ये कनेक्ट हुआ, कल्चर यानी कि हम अगर कहें तो मंदिर से लेकर के, नहीं मंडप से लेकर के मंदिर तक का जो बाँस का सफ़र है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ। हमारे साथ काफ़ी सारे लिसनर जुड़ चुके हैं जिसमें कमल लैन जी हैं, सोनिया तिवारी जी हैं, अनोखी शर्मा जी हैं, कई सारे लिसनर हैं, सभी को गुड आफ्टरनून। आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे और अपने कल्चर की चीज़ों को समझ भी रहे होंगे। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना, गाने के बाद आएंगे और सुनेंगे आपसे, नहीं और बताएंगे आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना चाहिए।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही अनोखी, क्योंकि भाई हम ही ने इसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया था। किसी और ने तो ना छुड़वाया है, हम ही है वो जिसने अपनी चीज़ों को, अपने कल्चर को पीछे ढकेल दिया था। लेकिन अब नहीं, अब हम अपने कल्चर को पीछे नहीं ढकेलेंगे। अब जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, जो दादी नानी की परंपरा है वो चलती आएगी। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भैया देखिए, हम हर चीज़ को, विदेशी चीज़ों को अपनाते चले जा रहे हैं, लेकिन जो अपनी चीज़ है, जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनको हम पीछे ढकेलते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो आगे आने वाले भारत का जो कल्चर है वो भी छूट जाएगा। और हम जो कि कहते हैं कि भाई हम इंडियन हैं, इंडियन कल्चर यूज़ करते हैं, नहीं, हम इंडियन तो रहेंगे लेकिन कल्चर हमारा पूरा वेस्टर्न हो जाएगा। इसीलिए अपनी चीज़ों को नहीं खोना है, अपनी संस्कृति को जानना है, संस्कृति में बनी हुई चीज़ों को, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश को जानना है। जी हाँ, अब हम आपको सुनाते हैं कि भैया कैसे ये जो बांस है, ये सिर्फ एक, कह सकते हैं, सिर्फ एक कला ही नहीं बल्कि रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया लोगों के लिए। अब मैंने आपको ये तो बताया कि जो लोग बांस की चीज़ें को बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और उनका एक पूरा जीवन जो है वो उसी पे ही, कह सकते हैं, टिका हुआ होता है। लेकिन कुछ ऐसे मॉडर्न लोग होते हैं, देखिए हमारे देश में जितने भी लोग होते हैं, कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जो यूथ है उसके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, हमारी पुरानी चीज़ों को वो इतने अच्छी तरीके से निखारेंगे और आपके सामने रखेंगे कि आप खुद दंग रह जाएंगे कि भैया ये इंडियंस हैं और इन्होंने हमारी चीज़ों पे इतनी बड़ा काम किया है। मैं आपको सुनाती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़। देखिए, एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिनका नाम है अनुराग सोनकर। जी हाँ, वो उन्होंने नेफ्ट से पढ़ाई की है और उन्होंने 2019 में अपना खुद का एक यूनिट शुरू किया था। और उनका काम जो था वो कोई पुराने डिज़ाइन को कॉपी करने का नहीं था, बल्कि उन्होंने पुराने जो बेस मॉडल होते थे, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो बहुत बेसिक चीज़ें होती थी, उनका इस्तेमाल करके मॉडर्न चेयर्स, लैम्प, कॉफ़ी टेबल, प्लांटर्स, इसको बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो भैया इनके सिर्फ 4 से 6 कारीगर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कई सारी लोगों की टीम है। और पता है, ये जो चीज़ें हमारे भारत के बिल्कुल कोर से जन्मी है, कल्चर से जन्मी है, वो आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऐसी कई बड़ी देशों में जाती है। और आपको मैं बता दूं कि उससे इनका कारोबार करोड़ों तक पहुंच चुका है। एक बांस जो कि हमारे लिए ऐसा लगता है कि अरे ये जस्ट एक नॉर्मल पौधा है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो स्ट्रांगनेस है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका इस्तेमाल करके, हमारे ही कल्चर की चीज़ों को इस्तेमाल करके, किसी ने इतना बड़ा करियर भी बिल्ड कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जिसको हम पीछे छोड़ रहे थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा, कह सकते हैं ना, ये कई खजाने का काम कर सकता है, जैसे कि वो अनुराग सोनकर जी के लाइफ में उसने काम किया। और सच कहूँ दोस्तों कि जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे नहीं पता था कि मैं जो छोटी छोटी चीज़ें अपने गली के कोनों में देखती थी। देखिए, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं अक्सर रानी बाज़ार जाती थी, जो कि हमारे गोंडा में ही है, जब हम स्टेशन जाने लगते हैं। और वहाँ पे जब हम जाते हैं ना, तो हमारे रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, एक दुर्गा जी का मंदिर पड़ता है, उसके कोने में जो ये बांस की कला है उसको बनाते हुए कई लोग दिख जाएंगे आपको। और मुझे

कि जो ये बांस है इसका जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में हमने बात की, इसकी इम्पोर्टेंस की बात की। और मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप मूवीज़ देखते हैं, स्पेशली जो बिहार की हैं उन मूवीज़ को देखते हैं, या फिर आप किसी बिहारी कल्चर के लोगों को जानते हैं, तो आपको पता होगा कि बिहार में जैसे भी मैंने बताया कि नई दुल्हन का पैर जब पहली बार पड़ता है अपने ससुराल में तो एक डलिया होती है बांस की बनी हुई, उसमें रखवाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे बिहार में और हमारे गोरखपुर साइड आज भी ऐसी कुछ कह सकते हैं कि कल्चर को संजोने वाली एक रस्में होती हैं जिसमें हम कहते हैं मंडप छाना। अब हमारे उत्तर प्रदेश में तो अधिकतर जगह पे क्या होता है कि मंडप जो होता है वो हम टेंट वाले को बोल देते हैं, टेंट वाला बना के चला जाता है। लेकिन हमारे बिहार में आज भी इस कला को, इस कल्चर को संजो के रखा गया है कि जब शादी होती है तो लड़की के घर हरा बांस उसके घर वाले ही काट के लाते हैं और कहते हैं कि बांस जितना हरा रहेगा, जितना हरा भरा रहेगा, उतना ही लड़की का जीवन जो है वो खुशहाल रहेगा। फिर उसको गाने के साथ, गीतों के साथ, शुभकामनाओं के साथ अपने घर में वो एक मंडप बनाते हैं जिसमें वो कुछ बांसों को इकट्ठे बांधते हैं। उसको कह सकते हैं, हम बिहारी में कहते थे कि उसे मंडप छाना कहते हैं, मंडप छवाना। तो मंडप छवाते हैं और घर के मेल करते हैं ये चीज़ें। और जो लड़की होती है, जिसके घर शादी होती है, जिसकी शादी होती है, वो उसका पूजा करती है, क्योंकि जो बांस होता है वो उसकी ज़िंदगी में बहुत ही शुभ चीज़ें ला रहा होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको बस रस्में समझ के कि भैया बस हमें करना है, बस करना ही है, ये समझ के हम अगर करेंगे तो फिर हम उसे पीछे छोड़ देंगे। लेकिन अगर उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो जब भी आप उसको, उसके उसको अपने इमोशन से जोड़ेंगे, तो जब भी आप बांस देखेंगे ना तब आप अपने कल्चर की अहमियत को समझ पाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो रोज़गार आप ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग भारत में लगभग 20 लाख से ज़्यादा कारीगर हैं, यानी कि 2 मिलियन लोग से भी ज़्यादा कारीगर हैं जो जिनकी जो रोज़ी रोटी है वो बांस से चल रही है। बांस की जो इकोनॉमी पे है वो डिपेंड करते हैं। ये लोग बांस काटने से लेकर के उसको प्रोसेस करते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं और पूरी एक चेन इसके पीछे काम करती है। सरकार ने भी पोटेंशियल को, इसको पहचाना और इसीलिए शुरू किया है नेशनल बैम्बू मिशन, जिसका पूरा फोकस है रूरल इनकम को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, खासकर ट्राइबल और गांव के लोगों के लिए जो कि पीढ़ियों से बांस पे ही डिपेंड करते हैं। और ये सिर्फ कह सकते हैं कि सिर्फ आदमियों तक ही सीमित नहीं है, महिलाएं भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं और इससे अपना एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर जो है वो बना रही हैं और अपना सशक्त हो रही हैं, अपना इंडिपेंडेंट बन रही हैं। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे इस बहुत ही प्यारी सी कला के बारे में जिसे हम बैम्बू क्राफ्ट भी कहते हैं और बांस की कला भी कहते हैं। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्त्री लाइव, जिसमें हम आज बहुत प्यारी सी जो प्लेलिस्ट है उसे एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ हम सुन रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जो कि हमारे ही रूट से, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कला जो हम सोचते हैं ऐसे ही तो है, क्या ही है इसमें, लेकिन उसमें बहुत कुछ है अगर हम जानना चाहें तो। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और एक ये भी जाना कि दोस्तों एक छोटा सा पेड़, एक छोटा सा बांस का पेड़ कितनी बड़ी कहानी सुनाता है, हिस्ट्री से लेकर के एवोल्यूशन तक, मंडप से लेकर रोजगार तक। ये कला जो भारत की एक ऐसी कला है जिसे हम हरी संपदा भी कह सकते हैं, हमारी एक ऐसी संपत्ति है जिसका हम अगर सही से इस्तेमाल करें तो हमारे भारत को एक अच्छा कह सकते हैं रोज़गार भी मिल जाएगा जो भारतीय हैं, और साथ ही साथ हमारी जो कल्चर है उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा जो विदेश तक जा सकती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि दोस्तों जब भी आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आपको बांस से बनी हुई चीज़ें दिखें, ऐसे लोग दिखें जो बांस की चीज़ों को बना रहे हैं, तो सिर्फ उन्हें देख के मुस्कुराइए नहीं, सिर्फ उनकी कला को एडमायर ही ना करिए, बल्कि उन चीज़ों को अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको लेना है तो आप उसको ज़रूर खरीदें, क्योंकि आपकी हो सकता है कि छोटी सी चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी हो जाए। आपकी छोटी सी कह सकते हैं आपके लिए तो जस्ट वो एक कटोरी, एक चीज़, एक सामान होगा, लेकिन उनके लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, तब हम सोचते हैं अरे नहीं भैया बार्गेनिंग नहीं करेंगे, यानी मोल भाव नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ हमारी इज्जत थोड़ी सी घट रही है, तो हम उसको बिल्कुल भी सोचते हैं कि नहीं भाई बार्गेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं, हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। लेकिन जब हम एक ऐसे लोग के पास जाते हैं, एक ऐसे कलाकार के पास जाते हैं जो अपने पे डिपेंड करते हैं, अपनी कला पे डिपेंड करते हैं, नुक्कड़ पे या किसी कोने में अपनी कला को लेकर के अपना रोज़गार चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, वहाँ जाके हम 100 रुपये की चीज़ को 10 में खरीदने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरा एकदम अपने सर से लेकर के पैर तक कदम लगा देते हैं, भैया चलो थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो, और थोड़ा कम करते करते उनको सिर्फ उतना पैसा देते हैं जितने से उनका सिर्फ और सिर्फ सामान ही आया हो। और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि भाई कला ऐसे ही नहीं बन जाता, मशीन का प्रोडक्ट नहीं होता है वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एक प्रॉपर तरीका लगता है किसी चीज़ को बनने में। तो उन चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो मोल भाव ना करें, कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है अगर कोई उनका बनाया हो प्रोडक्ट वो आप खरीदते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है मेरे जाने का, आपसे फिर मिलूंगी कल लेके आपका अपना शो स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें हम बात करने वाले हैं बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भैया देखिए बारिश का महीना है, बारिश हमें इन्जॉय करनी है, और किसको नहीं पसंद है बारिश में भीगना, बारिश बहुत प्यारी चीज़ होती है, लेकिन जितनी ये प्यारी होती है ना, इसके पीछे आते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो हमें बहुत ज़्यादा इरीटेट कर देते हैं, लाइक हमें खुजली होने लग जाती है, दाद, खाज, पैरों में जलन होने लग जाती है, स्किन में हमारी रेडनेस आ जाती है, हमारे पस इकट्ठा होने लगते हैं, हमारी बॉडी के किसी पार्ट में छोटे छोटे दाने निकलने लग जाते हैं, और स्पेशली आपके जो हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूर दाने हो जाते हैं। तो इनसे कैसे निजात पाई जाए, कैसे इनका क्योर किया जाए, और कैसे इनको इनका भी ध्यान रखते हुए साथ ही साथ मॉनसून भी इंजॉय किया जाए, इसके बारे में हम जानेंगे कल। तो सुनना ना बोले 12 से 1 स्वास्थ्य संगिनी कल मेरे साथ, आप यानी कि अपनी आरजे आयुषी के साथ। लेते हैं आपसे विदा और छोड़ जाते हैं आपको इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान में नहीं आ पाती है। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भावस्था महिलाओं को कमजोरी, थकान या चक्कर आना, इन सभी लक्षणों के साथ तो ये सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए, कब जांच करानी चाहिए, और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। आप दोनों का स्वागत है। सेहतिया सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये एनीमिया है क्या?
1: देखिए आरजे जी, सरल भाषा में कहें तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में ही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब उसे एनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ बच्चे की ज़रूरत भी पूरी करनी होती है। ऐसे समय में आयरन और फोलिक एसिड की ज़रूरत काफ़ी बढ़ जाती है। अगर ये ज़रूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव का, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जितनी जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर परिणाम माँ और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
1: और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हमें केवल बीमारियों का इलाज नहीं करना है, बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र को भी तोड़ना है।
0: दुष्चक्र, वो कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद को कुपोषित और उसे खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में यदि बच्चे भी पर्याप्त पोषण ना मिले तो वो भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। इसलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, ये बात सचमुच सोचने वाली है। यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। सेहतिया सिंह जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं।
1: अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर उसे चक्कर आ जाते हैं, सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज लगती है, या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगा तो ये केवल थकान नहीं हो सकती है, या आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं,
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की रीना की कहानी सुनिए। दूसरी बार वो गर्भवती थी, उसे लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाती है। वहाँ खून की जाँच होती है, पता चलता है कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
0: फिर क्या रीना ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा और यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच कराना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
0: तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए?
1: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवाना चाहिए।
0: ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच क्या है?
1: और पूरी तरह गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती है, लेकिन खून की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर की हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से या 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.0 ग्राम के बीच हो तो मध्यम एनीमिया, और 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर एनीमिया कहा जाता है।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
1: अगला, IFA यानी आयरन और फोलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरत विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
0: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
1: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही, केवल गोली खाने से ही बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण है।
0: किस तरह का भोजन?
2: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता का ध्यान दे, खासकर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
0: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है।
2: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिलना चाहिए।
0: ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेहतिया सिंह जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, आखिर ये है क्या चीज?
1: सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी होने वाला एनीमिया पाया गया है और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
0: यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह।
1: बिल्कुल, और भी सरल भाषा में कहें तो या आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नस के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाला मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर तेज तथा निगरानी में इलाज को जरूरी समझें।
0: तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते?
1: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच के आधार पर होता है।
2: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता है जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई है कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना बिल्कुल सही नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर कराइए, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
1: और याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANSC जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बढ़ती है।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वो नियमित ANC की जांच करवा रही है, क्या वो IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया तथा IVFCM की भूमिका पर। तब तक के लिए नमस्कार।
3: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी? लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता, और आपकी आज समता ही है आज, क्योंकि आपकी आज अंशिका आज नहीं आई है, किसी विशेष काम के खातिर वो आज छुट्टी पे हैं। आप बताएं आपका क्या हाल है और कैसा रहा? अभी इतनी झमझमाझम बारिश हो रही थी तो मुझे लगा कि काफ़ी लोगों का तो, जैसे हमारा गोंडा सिटी आपको पता ही है कि काफ़ी रोड तो बिल्कुल पानी से भर जाते हैं, और कुछ लोग तो राह चलते हुए भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ये एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि ये है आपची मुंबई, ऐसा कुछ एक मूवी में था, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी बनाया है कि ये है अपना गोंडा, यानी आपन जिला गोंडा। तो आपके अपने शो सुन सहेली में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो सुन सहेली विद आर जे समता एंड आर जे अंशिका। लेकिन आज आर जे अंशिका नहीं आई है, तो कोई नहीं, आर जे समता तो है आपके साथ में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के बहुत ही प्यारे वाले प्रोग्राम को। एंड काफ़ी लिसनर्स आ गए हैं, एंड आप सभी लोग फटाफट अपनी अपनी एंट्री दे दें, क्योंकि हम सभी के नाम को पढ़ेंगे और साथ ही साथ में हम सभी के मैसेजेस को भी रीड करेंगे। लेकिन उसके पहले बता दूं कि जैसा कि हमारे प्रोग्राम की औपचारिकता होती है, विश करना एंड बहुत ही प्यारी सी जो पोयम है, तो पोयम से पहले आप सभी को हमारी तरफ से यानी आज समता की तरफ से शुभ दोपहरिया। तो आइए शुरू करते हैं। रिश्तों पर एक बहुत ही प्यारा सा एक कविता है जो कि मैं लेके आई हूँ, हमेशा से लेके आती हूँ, लेकिन कमी बस इस बात की है कि अंशिका होती है तो उस कविता को पढ़ने के लिए मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता देती है, लेकिन आज वो नहीं है। कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट आज हमारे साथ कुछ गेस्ट भी आएंगे अभी थोड़ी देर में, और तब तक हम शुरू करते हैं आपके पसंदीदा शो को सुन सहेली में। तो रिश्तों पर आज बात करने वाले हैं क्योंकि आज है फ्राइडे। और फ्राइडे के दिन हम लेकर के आते हैं खूबसूरत से रिश्ते को, किस तरीके से और हम अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो आज बात करेंगे कुछ खास

0: खास टॉपिक हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं आपको रिश्तों पे एक प्यारी सी पोयम। रिश्ते, रिश्ते कोई कागज के टुकड़े नहीं होते, रिश्ते कोई कागज के टुकड़े नहीं होते, जो वक्त की बारिश में गल कर बिखर जाएं, जो वक्त की बारिश में गल कर बिखर जाएं। ये तो दिल की वो धड़कन है, ये तो दिल की वो धड़कन है, जो हर पल हमें अपनों का एहसास दिलाए। कभी माँ की ममता बनकर सराहते हैं, कभी पिता का हौसला बनकर संवारते हैं। कभी माँ की ममता बनकर संवारते हैं, तो कभी पिता का हौसला बनकर संभालते हैं। भाई बहन की नोक झोंक में मुस्कुराते हैं, दोस्त बनकर हर गम चुपचाप बांट जाते हैं, दोस्त बनकर हर गम चुपचाप बांट जाते हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं, रिश्ते शब्दों में कम, एहसासों से ज्यादा चलते हैं। विश्वास की एक डोर से हर पल जुड़ते हैं, विश्वास की एक डोर से हर पल जुड़ते हैं। जहां सम्मान और अपनापन बसता रहता है, जहां सम्मान और अपनापन बसा रहता है, वहां हर रिश्ता उम्र भर महकता रहता है। अगर कभी मन में दूरियां आ भी जाएं, अगर कभी मन में दूरियां आ भी जाएं, तो अहंकार को नहीं प्रेम को आगे लाएं, तो अहंकार को नहीं प्रेम को आगे लाएं। क्योंकि टूटे हुए रिश्ते जोड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते जोड़ना आसान नहीं होता है। हर जख्म का मरहम हर इंसान नहीं होता है, हर जख्म का मरहम हर इंसान नहीं होता है। आओ रिश्तों को समय दें, स्नेह दें, सम्मान दें, हर अपने को दिल में एक खास जगह दें। यही जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है, इन्हें संभाल लें यही हमारी सच्ची खुशी है, इन्हें संभाल लें यही हमारी सबसे सच्ची खुशी है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लाइनें इसमें हम सभी के जीवन को जिसे टच करती है, हमारी लाइफ को टच करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे रिश्तों को जीते हैं, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि उसमें से कोई एक रिश्ता हमारे दिल को टच कर जाता है और कहीं ना कहीं उसे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में धोखा दे जाता है, या फिर बहुत प्यार कर जाता है। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो अगर लाइफ में धोखा है तो प्यार भी है, और अगर प्यार है तो धोखा भी है। इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलने का नाम ही हमारी प्यारी जिंदगी है। इस प्यारी सी कविता के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आएंगे आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताने के लिए। लेकिन उसके पहले आपको सुनना पड़ेगा ये प्यारा सा एक सॉन्ग, और हम बस यू है यू आए। स्टे ट्यून।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है? स्किन पीली पड़ रही है? या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

भूल नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि आज आपके लिए है सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, तो सरप्राइज हमारे स्टूडियो में आ गया है। बस इस सॉन्ग के बाद उस सरप्राइज को हम आपके साथ

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल। पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

तो शायद आप लोगों ने ये आवाज़ पहचान ली होगी और मैं इसीलिए चुप हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि अभी ये गाना पूरा सुनने को मिलेगा, लेकिन मैम ने बिल्कुल दो लाइन, जैसे कहते हैं ना कि ऊँट के मुख में जीरा वाली बात हो गई, तो थोड़ा सा सुना करके ये चुप हो गई और मुझे लगा कि ये गाना पूरा बिल्कुल सुनाऊंगी पूरा आप सभी को भी लिसनर्स। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि मैंने अभी स्टार्टिंग में एक सरप्राइज़ की बात करी थी और आप लोगों को सरप्राइज़, जैसे कहते हैं ना कि आप

0: बिग सरप्राइज। तो आज के लिए बहुत बड़ा वाला सरप्राइज, हमारे साथ हमारे गांव की गूंज की टीम आई है, यानी कि हमारी किरण मैम आई हैं और साथ में हमारी जया मैम आई हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि जो जिस उसमें माहिर होता है वो अपनी उस कला को छिपाए बिना नहीं रह, मतलब छिपा के नहीं रह सकता है। तो अभी आपने आवाज़ सुनी ही, तो आइए उन दोनों का वेलकम कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका
1: और
0: जया आपका भी। तो जैसे अभी आपने प्यारी सी लाइनें जो गाई, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप लिसनर्स को और हमें खुद ये जो दो लाइन सुनाई इसका मतलब बताएं और ये गाना स्पेशली कब गाया जाता है वो बताएं।
1: सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम। दरअसल ये सावन लगने ही वाला है, हरियाली दिख रही है क्योंकि बारिश हो रही है हल्की फुल्की।
0: हाँ।
1: और कल तो ऐसा महसूस हो रहा था समता जैसे सावन ही आ गया।
0: हाँ।
1: मतलब फुहारें पड़ रही थी, फिर धूप, फिर पानी, फिर बादल, ऐसे करके।
0: बिल्कुल।
1: तो ये मन कर गया कि क्यों ना सावन आने से पहले ही सावन के कुछ गाने हो जाएं।
0: जी।
1: तो जैसे चारों तरफ हरियाली है तो ऐसे हमारा मन भी हरा भरा हो जाए, क्यों?
0: बिल्कुल, हरा भरा मन हो जाए। और कहते हैं ना कि जब हरा भरा मन होता है तो ही हमारा बाकी के कामों में भी मन लगता है।
1: मन लगता है। तो इसीलिए जो है मैं जो है जो गुनगुना रही थी वो सावन का गीत है
0: जी,
1: और तो इसको मैं और भी सुनाऊंगी।
0: बिल्कुल, मैं अभी आपसे ये पूरा गाना ही आज आप सुना के जाएंगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि जया मैम आप भी अपनी आवाज से, मधुर आवाज से कुछ बोल दें, ताकि हमारे लिसनर्स को बता दूं कि हमारी आज गांव की टीम तो आई है, लेकिन आज जो कि हम जिस पर बात करने वाले हैं तो उस रूप में हम आज आप दोनों से बात करेंगे। तो बिल्कुल, मैं ठीक हूँ जया मैम,
2: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
0: थैंक यू, मतलब मैं आप दोनों को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे लगता है ना कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनका आभार किस तरीके से व्यक्त करते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा।
2: जी जी बिल्कुल।
0: तो आज जया मैम और हमारी किरण मैम को, अभी आपने किरण मैम की आवाज़ भी सुनी, तो मैम हम चाहते हैं कि जैसे एक टॉपिक हमारा आज के दिन होता है, फ्राइडे के दिन होता है, रिश्तों पे बात होती है।
1: हाँ।
0: तो मैं चाहती हूँ कि आज ना हम लोग एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच का जो एक कॉम्बिनेट वाला जो एक रिश्ता होता है, कभी उन कुछ बच्चे उनको लाइक भी करते हैं, कुछ लोग उनको डिसलाइक करते हैं, कुछ लोग उनको ये कहते हैं कि अरे ये मैम तो बहुत खड़ूस है, ये मैम बहुत गुस्सा करती हैं, या फिर कोई कोई बच्चों की तो फेवरेट बन जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो लिसनर्स आज हमारे पास में वो दोनों रिश्ते हैं, मतलब स्टूडेंट भी हैं और मैम भी हैं। तो सबसे पहले हम मैम से जानना चाहेंगे कि आखिर ये बच्चों के मन में ये डर, ये प्यार, रिस्पेक्ट, फेवरेटनेस क्यों होती है?
1: देखो समता, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने किया है, बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि ज़रूरत भी है आज के समय में कि टीचर्स और जो गर्ल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, असल में होता ये है बच्चे डरना तब शुरू करते हैं जब आप एक डर बिठा देते हैं उनके अंदर।
0: हाँ।
1: जैसे अगर उनको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उनको सुने बिना ही आप उनको डांट लगा देते हैं, क्यों खड़े हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले आप उनकी सुनिए, पता नहीं किस मुसीबत में है वो, किस दुख में है वो, किस परेशानी में है वो, तो उनकी बात को आप ध्यान से सुनिए, वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा भी है, कि बच्चे जो बात अपनी माँ से नहीं कह पाते हैं
0: वो टीचर से कह,
1: वो टीचर से कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और
0: बिल्कुल।
1: वही बच्चे बहुत करीब हो जाते हैं टीचर्स के, और ये होना चाहिए। और होता ऐसा तब है जब आप कहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, तो आप एक चीज़ मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ, आज भी कह रही हूँ, कि अगला जो बच्चा जो बैठा है आपके सामने, जिसको आप पढ़ा रहे हो, उसमें भी अपना ही बच्चा महसूस करो।
0: बिल्कुल।
1: तब आप उस बच्चे के दिल तक पहुंचोगे, क्योंकि जब ये आप महसूस करोगे कि अरे ये मेरा ही तो बच्चा है, तो आपका, आपको उसका दर्द दिखेगा।
0: बिल्कुल।
1: आप उसे सुनोगे, उसकी परेशानी क्या है। जैसे ऐसे होता है ना, कैसे कुछ बच्चे आते हैं कि मैं इतनी फीस नहीं दे सकता हूँ।
0: हाँ।
1: या नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास, हम भी ट्यूशन करते हैं, घर पे भी क्लासेस करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं कि मैम इतना नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं नहीं दे सकती हूँ इतना। तो ठीक है, कुछ भी मत दो। तो गुरु दक्षिणा के रूप में अगर वो मुझे 100 रुपए भी देते हैं, तो वो भी मैं उनको वापस ही करना चाहती हूँ। इससे आप बच्चों के करीब आते हैं।
0: एग्जैक्टली।
1: हाँ, उनके करीब जाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। झुकने का मतलब ये नहीं है, जहां पे जरूरत हो कि इनको दंड देना है,
0: हाँ,
1: वहां आप मतलब अनुशासनहीनता मत बर्दाश्त कीजिए। अगर वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जो गलत है तो आप उसके लिए तुरंत उनको डांटिए।
0: बिल्कुल। हाँ। और आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई कि ये मैंने भी सुना है कि जब आप किसी एक यंग किसी लड़की से, जो कि हमारे कॉलेज हैं, आप सभी को पता है, हमारे लिसनर्स को भी, कि हम लोग ज्ञानस्थली की टीचर्स भी हैं, तो वहाँ पर बड़ी लड़कियाँ हैं, तो ये होता है ना कि जब हम एक मतलब किसी क्या कहते हैं बड़े बच्चों से मिलते हैं, तो उनकी दिल की बात को जानने के लिए हमें उनके साथ उनका उनकी वैसे दोस्त बनना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जैसे कहते हैं ना कि घर में हमारी माँ है, तो माँ के साथ हमारा एक फ्रेंडशिप वाला जब तक नहीं होगा,
1: हाँ।
0: तब तक हम अपनी दिल की बात उन तक नहीं पहुँचा सकते,
1: नहीं कह सकते।
0: और जहाँ अगर ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो वो बच्चा, लड़की हो या लड़का हो, वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता।
1: नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सही तुमने कहा।
0: बिल्कुल। और आपकी बात से मुझे एक बात और याद आ गई कि आप यहाँ पर म्यूजिक की टीचर हैं, तो मेरे पास मतलब बहुत सारे बच्चे आते हैं और आपके लिए बताते हैं, तो आज मैं उसको रिवील करना चाहती हूँ यहाँ पर। वो बच्चे कहते हैं कि अगर मेरे पास कभी, मतलब एक टाइम था, एक बच्ची आई थी, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो शायद वो फीस भूल गई थी, मतलब फीस लेके आई थी बट वो भूल गई थी उसको सबमिट करने के लिए, और उसकी कॉलेज में चोरी हो गई थी। आपको उसका नाम याद आ गया होगा। तो आपने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और उसको दिया कि तुम फीस सबमिट करो, फिर जब तुम्हें होगा तब तुम मुझे वापस करना। तो वो उस दिन मैं आपके रूम में बैठी थी, तो मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी, दिल से अच्छी लगी थी, कि देखो ये होता है कि किसी के, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ किस बच्चों के करीब जाना और एक अनुशासित रूप से मतलब उनको अपनी बातें सुनाना और कहना, ये बहुत बड़ी बात होती है।
1: बिल्कुल।
0: और जैसा कि हमारे साथ में जया भी हैं, तो मैं जया से भी जानूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी किरण मैम से दो लाइनें और सुनूं उस गाने की, और फिर हम ब्रेक में जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल समता, मैं वो लाइन, क्या मैं वो पूरा ही गाना सुनाना चाहूंगी।
0: हाँ, पूरा ये मेरा पूरा गाना तो मैं जाते जाते सुनूंगी, अभी आप सिर्फ दो लाइन सुनाइए उसका, इस टाइम का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लिसनर्स को थोड़ा सा ना वो टुकड़ों में सुनाऊं, ताकि उन्हें भी एक बना रहे कि हाँ भाई आज कुछ,
1: हाँ, सुनने या को इसके आगे क्या है, इसके
0: आगे क्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: हाँ, सुनाती हूँ, थोड़ा सा मौसम की मार झेल रही हूँ
0: जी,
1: क्योंकि वायरल चल रहा है गले में इन्फेक्शन टाइप का, क्योंकि मौसम ही ऐसा होगा। लेकिन फिर भी मैं सुनाऊंगी, क्योंकि गाना मुझे अच्छा लगता है और आपको यानी लिसनर्स को सुनाना तो मुझे और भी अच्छा
0: जी,
1: लगता है।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए, सावन की जो मैंने अभी लाइन शुरू की थी उसका एक अंतरा आपको सुनाती हूँ।
0: हाँ जी।
1: हमने सुनाया था

0: अब उसका अंतरा क्या है? चार महीना के बरखा पड़त है, चार महीना के बरखा पड़त है, बरखा पड़त है, बरखा पड़त है। जया
1: जी मैम,
0: तुम भी गाओ।
1: बिल्कुल।
0: चार

0: जिया।
1: वाह बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत सॉन्ग। जैसे ना मतलब जैसे ये सावन में मन करता है ना कि हम चाय पकौड़े खाएं, और उसी के साथ जब ऐसे वाले सॉन्ग्स मिल जाए ना तो और ही मजा आ जाता है, क्यों किरण मैम?
0: बिल्कुल, ये ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल सॉन्ग।
1: मतलब जैसे ना जिसे कहते हैं ना कि एक शुद्ध वातावरण में और एक बनावटी वातावरण में जो एक फर्क होता है, वो इन गानों की महक से ही पता चल जाता है कि एक शुद्धता क्या है।
0: मतलब सावन नहीं है तो भी सावन दिखने लगेगा।
1: हाँ, वो फील होने लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमारे साथ में आरोही अनोखी शर्मा एक है, हमारे लिसनर है।
0: हाँ,
1: तो उन्होंने लिखा है कि किरण मैम है क्या आज आपके साथ? तो मैं बोल रही हूँ जी हाँ बिल्कुल, किरण मैम है हमारे साथ आज।
0: बिल्कुल।
1: और उन्होंने क्लैपिंग करके लिखा है वाह मैम क्या सुनाया आपने।
0: भाई थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, सुनते रहो ऐसे ही हमको।
1: जी तो चलिए हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे, मैम से बहुत सारी बातें करनी है अभी, और भी बातें करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद सीधे आएंगे हम जया मैम से, ये बात करेंगे कि उनको क्या फील हुआ अभी तक जब वो स्टूडेंट हैं, और अब तो खैर वो टीचर हो गई हैं, लेकिन जब वो स्टूडेंट थी तो उन्हें यहाँ की टीचर्स के साथ में कैसा रिलेशन रहा, तो बहुत कुछ जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए आज हमारे ब्यूटीफुल से फ्राइडे में। मैं हूँ आपकी आज समता, आज अंशिका नहीं आई है किसी कारणवश, लेकिन आज हमारे साथ गांव की गूंज की पूरी टीम है। हम एंजॉय करेंगे आपका फेवरेट शो सुन सहेली। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: डिलीशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, और साथ में आज हमारे साथ हैं हमारे गांव की टीम, यानी कि हमारी किरण मैम और जया मैम। तो चलिए भाई, ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच का जो कॉम्बिनेशन वाला एक रिश्ता है, और आपने अभी मैम से तो जाना ही, तो सीधे रुक करेंगे। अब हम आज की टीचर्स से तो बात कर ली, लेकिन अब हम स्टूडेंट की ओर चलते हैं। तो जया का हाल जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, और अब वो हमारे ही साथ में यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में हमारे साथ कार्यरत हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या नाम है आपका? जया मैम। तो मुझे अच्छा लग रहा है जया को जया मैम कहना, एक्चुअली दिल से अच्छा लग रहा है। तो जया मैम, प्लीज़ मुझे बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस था हम लोगों के साथ में जब आप स्टूडेंट थी किरण मैम और हमारे साथ।
7: बिल्कुल मैम, पहले तो मैं स्टूडेंट थी, तो मुझे ये लगता था कि आई थिंक ये टीचर थोड़ा सा डांट देगी, ये थोड़ा सा समझाएगी।
6: अच्छा, सच्ची बताना मेरे लिए क्या सोचती थी तो?
7: आपके लिए तो ये रहा कब मैम बरस पड़े क्योंकि आप ना मुझे पकड़ करके योगशाला की तरफ ले जाती थी, और मैं वहां से चुपके से भागा थी।
6: मुझे पता है, वो मुझे पता है ना, भाग जाती है ना कुछ लड़कियां, तो इसलिए मुझे अपना,
7: मैं भागने वालों में से ही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शायद मैं इस जगह पे पहुंचूंगी और फिर मैं आप लोगों के साथ में वो जाऊंगी
6: और वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी।
7: हाँ बिल्कुल, शेयर करूंगी, और मुझे समता मैम यहाँ बुला लेंगी, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही किरण मैम के साथ में हूँ, और शुरू से ही वो मेरी फेवरेट रही है, क्योंकि अभी मैम ने आप लोगों से ये कहा कि आप दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा ही समझ के टीच करना चाहिए।
6: ये तो हाँ, ये तो
7: मैम ने शुरू से हमेशा यही समझाया कि कोई भी परिस्थिति हो जाए मैं साथ में हूँ, तो मुझे उन्होंने कभी मम्मी की तक कमी फील नहीं करवाई, इसीलिए मैं उनको गुरु तो थी, वो मेरी हमेशा रही है, बट अभी मैं उनके सामने माँ भी उनको बोल देती हूँ। क्यों? क्योंकि इतना ओपन हो चुके हैं हम लोग कि अपनी परेशानी कहने से ना कभी हिचक नहीं करते हैं।
6: एग्जैक्टली, जैसे ये होना भी चाहिए ना, कि हम अभी स्टार्टिंग में जैसे किरण मैम ने बोला, हम लोग ने भी बोला कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो एक बढ़िया वाला रिलेशन होता है ना, तो वो एक ऐसे ही जो एक बाउंड्री होती है ना, एक रिस्पेक्ट की बाउंड्री को कभी क्रॉस नहीं करना है, लेकिन अपने दिल की बाउंड्रीज को हमेशा से क्रॉस कर देना है, ताकि हम अपने मन की सारी बातों को उनके साथ में शेयर कर सकें।
7: जी, तो और यानी साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट को बना के चलती हूँ और साथ साथ मैम के टीचिंग भी कर रही हूँ। बिल्कुल, आप मेरी किरण मैम से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी वो भी हमारे साथ स्टूडियो में है।
8: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और जया को मैं बहुत बहुत थैंक्स भी बोलूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी बच्ची रही है समता, पढ़ते समय भी और आज भी, इसका जो है अब आज तो ये मुझे बिल्कुल, मैंने इसको कल यानी पढ़ते समय मैंने इसको बच्चे की तरह रखा, आज ये मुझे बच्चे की तरह रख रही है, मैम आपका ग्लास, मैम आपका पानी, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, अभी आपने खाना नहीं खाया।
6: तो वो आपने आपने सुना होगा ना कि जब हम एक पौधा लगाते हैं, उसे पानी देते हैं, सींचते हैं, लेकिन जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उसी पेड़ की छांव में हम बैठ करके एक प्यारी सी सुकून वाली राहत लेते हैं और साथ में फल भी खाते हैं, स्प्राउट्स भी खाते हैं।
8: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, अचार भी थोड़ा सा चाट लेते हैं,
6: सब खा लेते हैं ना। तो यानी कि क्या नाम है जया, आपकी नजर में मैं बहुत ही वो
8: डरावनी
6: वाली मैम थी, है ना?
7: हाँ, शायद पहले थी मैम, बट अब नहीं है
6: ना?
7: क्योंकि अब आपके साथ साथ बैठती हूँ ना, तो सबसे फनी आप ही हैं, अगर आप चुप तो लगता है हजार चुप।
6: अच्छा, ये बात है ना,
8: क्या बात, सही बात।
6: तो अभी आपकी बात को सुन करके ही अनोखी जी ने लिखा है कि सच में हम लोग भी बहुत डरते हैं, हम लोगों को भी डरा के रखती हैं चैट बॉक्स तो आपकी बात से सहमत है यहाँ हमारे सभी लिसनर्स
7: भी। नहीं, लिसनर भी आपसे डरते हैं
6: नहीं, हाँ ये तो बात फैक्ट है, क्योंकि हमारे जितने भी लिसनर्स है ना, वो वाला डरते नहीं है, वो रिस्पेक्ट वाला डरते हैं।
8: हाँ, यही होना
6: चाहिए। और हमारे ही एक ऐसा शो है जिसमें हम जितने भी लिसनर्स हमारे हैं, हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड फालतू का कोई भी मैसेज, कॉल, ऐसा कुछ भी नहीं करते, उनको पता है कि फिर समता मैम।
7: हाँ,
6: तो इसी वजह से ही
7: कहीं बरस गई तो फिर क्या होगा
6: बरस गई नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं जया, मैं दिल की बहुत सॉफ्ट हूँ, ये आप किरण मैम से पूछ लो।
8: बिल्कुल,
7: क्योंकि वैसे भी पता चल गया मैम,
8: अब साथ रह के पता नहीं चलेगा क्या?
6: मैं जैसे कहते हैं ना, वो मैं खुद के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि आप अपनी खुद की तारीफ किया करिए, क्योंकि बुराई करने के लिए जहान बैठा है।
8: बिल्कुल,
6: तो अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि जैसे नारियल होता है मैम, तो ऊपर से कितना सख्त होता है, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट होता है।
8: सॉफ्ट होता है, उसके अंदर मलाई भी होती है और पानी भी होता है,
6: दोनों चीजें हमारे अंदर, ठीक है। तो जया, अब तो कोई भी डरने की बात नहीं है, एंड मतलब अब तो मेरा बहुत इससे अच्छे से हो गया है कि कोई भी चीज होती है, खाने पीने को लेकर के, कहीं चलने घूमने को लेकर के, रील्स बनाने को लेकर के, तो फटाफट यही सबसे पहले इसका टारगेट यही मैं ही होती हूँ कि समता मैम कहाँ है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक अच्छी बार जब बाउंडिंग हो जाती है, और अब साथ में भी रहते हैं, पहले देखो जया, एक हम लोग के बीच में भी एक बाउंड्री थी,
7: क्योंकि एक आप हमारी शिक्षक थी,
6: हाँ,
7: एक तरीके से, तो वो रिस्पेक्ट आ जाती थी मैम की, हाँ, अरे मैम है, ऐसे बराबर नहीं बैठना है, बराबर नहीं बोलना है, और ये सारी चीजें आप लोगों ने मुझे शुरू से सिखाई। तो
6: अच्छा, एक चीज मैं आज रिवील करना चाहती हूँ स्पेशली किरण मैम को, कि किरण मैम, मैंने भी बहुत सारी यहाँ पर बच्चों को देखा है जो कि मतलब टीचरशिप में आ रही हैं, यही इसकी हमारे कॉलेज की, लेकिन ये मुंह की बात नहीं है जया, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ ऑन एयर बोल रही हूँ, तो ऑन एयर मैं सबको पता है कि मैं बिल्कुल सच ही बोलती हूँ कि आज तक बहुत सारे बच्चे आए, बट सबसे ज़्यादा एक रिस्पेक्ट वाला जो एक दायरा है ना, किरण मैम आप भी सच्ची बोलिएगा, वो जया में है ना
8: बिल्कुल है, बिल्कुल,
6: क्योंकि मतलब हम लोग जैसे छोटी सी बात है कि हम लोग कभी अगर दोनों साथ में जा रहे हैं, तो ये नहीं कि वो चेयर सिर्फ किरण मैम के लिए खाली कर देती है, नहीं, वो नहीं, खड़ी हो जाएगी
8: सबके लिए,
6: सबके लिए है,
8: बिल्कुल।
6: तो एक यही एक रिस्पेक्ट प्लस प्यार जो होता है वो स्टूडेंट्स की आंखों में दिखता है, और यही फिर टीचर्स के दिल में फिर वो राज करने लगते हैं।
8: बिल्कुल,
6: ऐसे ही हमारे कुछ योगा क्लासेस के बच्चे हैं, मैं उनका नाम अब क्या लूं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा मतलब मेरे दिल के करीब हैं, कि जैसे लगता ही नहीं है कि वो हमारे बच्चे अपने बच्चे नहीं हैं, लगता है कि बस वो हम जाएंगे कॉलेज और हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, ये एक कॉम्बिनेशन वाला जो रिश्ता होता है वो आज हमने आप लोग को बताया। एंड जाते जाते किरण मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतने साल से आप यहाँ पर हैं, मतलब कॉलेज में, तो बच्चों के प्रति आपको कभी गुस्सा नहीं आता है? कभी तो गलती करते होंगे ना, कभी तो गुस्सा आता होगा ना?
8: बिल्कुल, जब गलती करते हैं तो गुस्सा आता है, और फिर मैं उन्हें डांट भी लगाती हूँ, और पता है समता, डांट लगाने के बाद मैं उन्हें जैसे बहुत जोर की डांट लगा दी, फिर मैं जब थोड़ी शांत हो जाती हूँ तो मैं उनको बुलाकर बहुत प्यार से उनके सर पे हाथ रखकर बोलती हूँ कि बेटा ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, तो वो बच्चे खुद ही कहते हैं नहीं मैम आपने डांटा तो ठीक किया, मैंने गलत किया था। जब उनको अपनी गलती खुद रियलाइज हो जाएगी कि मैंने गलत किया था, तो आगे से वो गलत नहीं करेंगे। आप उनको उनकी गलती रियलाइज करो, ये गलत आप बेटा यहाँ आप गलत हो, और अगर वाकई वो बच्चा गलत है तो मानेगा गलत है। तो उस वक्त तो डांट लगाती हूँ, लेकिन बाद में फिर मैं उसको सर पे हाथ रखकर प्यार से पुचकार कर मुन्ना बच्चा कहकर समझाती भी हूँ।
6: बिल्कुल, तो एक चीज़ और मैं अभी ऑन एयर ये कहना चाहती हूँ, रिवील करना चाहती हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मेरा रूप तो किरण मैम ने देखा ही है,
8: मतलब देखा, रौद्र रूप देखा है मैंने
6: तो उससे अब मैं बहुत सॉफ्ट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा वाली सॉफ्ट हो गई हूँ। और वो भी कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ में रहते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी साथ में हम उनको भी गेन करते हैं और बुराइयों को भी गेन करते हैं। तो मैंने मतलब मैं जब से आई इस कॉलेज में और सबसे पहला जो कि मेरी फ्रेंडशिप हुई वो किरण मैम से हुई, तो उनकी काफ़ी चीज़ों को मैंने गेन किया। मतलब मुझे लगता है कि हमेशा से मेरा जो एक वो वाला रूप था, रौद्र वाला जो भी बताया, उसको सॉफ्ट करने में एक इनका और एक हमारी फ्रेंड जो अभी यहाँ पर नहीं है उनका हाथ था, शेफाली का, जो कि आप कभी कभी गांव की गुंज में उनका नाम सुनते होंगे, शेफाली, तो इन दोनों का हाथ रहा है। और वाकई में मतलब जिसे कहते हैं ना कि रौद्र से बिल्कुल सॉफ्ट लाने में अब लिसनर्स को मेरी बात हजम नहीं हो रही है, वो लिख रहे हैं कि मक्खन मलाई के जैसा तो कुछ नहीं है आपके
8: नहीं मक्खन मलाई के जैसा नहीं, मगर नारियल के अंदर सॉफ्टनेस होती है तो वो समता बहुत सॉफ्ट हुई है पहले की अपेक्षा।
6: अनोखी जी आप मुझे कल मिलिएगा, मैं बता दूं आज तो गेस्ट आए हुए हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी आज आपको, बट खुद में चेंजेस आया है और
8: नहीं जरूरी भी है, जरूरी है समय के साथ
6: ये चीजें जो हमारी बदली, वो एक जब हम लोगों के बीच में जब एक बड़ी लड़कियों के साथ में जब हम लोग बैठते हैं उठते हैं रिश्ता बनता है तो एक टीचर और स्टूडेंट का बीच में कॉम्बिनेशन हो ही जाता है।
8: बिल्कुल।
6: एंड 50% 70% में जो श्रेय जो है वो आपको देना चाहती हूँ कि आपकी वजह से हुआ, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है अब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि जो एक फीड हो जाता है बच्चों के दिमाग में कि समता मैम वही हैं गुस्से वाली, मतलब बहुत ही कम बच्चे आते हैं बात करते हैं, तो ये भी लगता है कि हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, एक बाउंड्री बनी है, बट जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ वो उनसे बहुत क्लोज हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा गुस्सा ही करती हूँ। तो आज की हमारी स्टूडेंट और टीचर की जो एक ये बातचीत थी, एक वार्तालाप थी, आई होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अभी हम मैम को जाने नहीं देंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये एक आयुर्वेदिक जैसे कहते हैं ना कि वैद्य भी हैं, तो वो वैद्य क्या है वो उनसे जानेंगे और आपको भी बहुत कुछ अभी सुनने को मिलेगा, हासिल करने को मिलेगा, क्योंकि घर बैठे ही आप अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो एक छोटू से म्यूजिकल ब्रेक की ओर चल रहे हैं, बस हम यूं गए यूं आए, तब तक के लिए सुने इस प्यारे से सॉन्ग को।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज हमारे साथ किरण मैम, यानी हमारे गांव की गूंज की गायिका। तो अभी जाते जाते मैम हम आपसे गाना भी सुन के जाएंगे, इसलिए आप गाना रेडी करके रखिएगा। लेकिन अभी हम आपको 2 मिनट के लिए वैद्य की उपाधि देते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ इनसे मिलता है, मतलब मैं पूछती रहती हूँ कि आपने आज कौन सा खाद्य पान किया है, तो ये बहुत सारी चीजें बताती हैं। तो मैम हम चाहते हैं कि आज हमारे लिसनर्स को भी कुछ फायदा कराएं।
4: बिल्कुल।
0: कि पेट से संबंधित और स्किन से संबंधित आप अगर आप सुबह कुछ भी मतलब कोई भी ऐसा उपचार बताएं ताकि हमारे साथ हमारे लिसनर्स को भी फायदा हो।
4: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं चाहती हूँ सभी जवान रहें, सभी खुश रहें, मस्त रहें। सुना होगा सहजन। सहजन जो है, कोई सहजन ऐसा होता है जो बारहमासी होता है।
0: हाँ।
4: कुछ ऐसे होते हैं जो उनका सीजन होता है, उस टाइम पे होते हैं। तो सहजन का पत्ता, मान लीजिए सीजन के समय आपको सहजन इस्तेमाल करना है तो सहजन नहीं लग रहा इसमें, तो आप उसके पत्ते को इस्तेमाल कर सकती हैं। उसका पत्ता जो है बहुत बहुत बहुत लाभकारी है
0: जी।
4: पेट के लिए भी B12 उसमें मिलेगा। कहते हैं इसमें 100 बीमारियां दूर करने की का जो है तासीर होता है उसमें। तो उसको नहीं, कुछ हम कह रहे हैं सुबह सबको जल्दी होती
0: हाँ।
4: है, तो सुबह क्या करें, थोड़े से पत्ते ले लें, उनको धुल लें और पानी में उबाल लें। पानी में उसको मुश्किल से 5 मिनट उबलने दें।
0: अच्छा।
4: 5 मिनट उबलने के बाद उसको छान लें। छानने के बाद उसको काला नमक उसमें डालें
0: हाँ।
4: और नींबू की 2-4 बूंदें डाल दें और उसको सिप करके पी जाएं। ये आपको बहुत ताकत देगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा और आपको एनर्जेटिक बनाएगा।
0: अच्छा, तो मैम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने क्वांटिटी, आपने ये तो बताया कि हाँ वो चीज लेनी
4: हाँ।
0: है, पर उसकी क्वांटिटी क्या होगी, मतलब आधा गिलास की आधा कप कैसे?
4: एक कप, जैसे आप चाय पीते हैं
0: हाँ हाँ।
4: वैसे वो एक गिलास पानी डालो और वो एक गिलास क्या, एक कप से थोड़ा सा ज्यादा।
0: अच्छा, मतलब उसको इतना बॉइल कर लिया जाए कि वो
4: हाँ।
0: एक गिलास से आधे, मतलब एक कप में आ जाए।
4: एक कप में आ जाए।
0: ओके।
4: आप उसको पी लीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। आपको किसी विटामिन की जरूरत है ही नहीं अगर उसको आप लेते हैं
0: सहजन के पत्तों से।
4: सहजन के पत्ते तो, और जब सहजन का सीजन है तो आप सहजन खूब खाइए।
0: सहजन खाइए खूब।
4: बिल्कुल। उसके फूल होते हैं
0: हाँ,
4: और फूल को भी आप इस्तेमाल, कहते हैं कि सहजन की पत्ती, जड़, तना, फूल, फल
0: हाँ।
4: सभी लाभकारी हैं।
0: अच्छा,
4: तो अगर हाँ, अगर सहजन का सीजन नहीं है, समय नहीं है
0: हाँ।
4: तो उसके पत्तों को इस्तेमाल कीजिए
0: जी।
4: आपकी किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कभी किसी को दादी वादी हमारी बताया करती थी
0: हाँ।
4: जैसे पेट में बहुत दर्द है
0: हाँ।
4: तो अब रात में बच्चा परेशान हो गया, अरे मेरे पेट में बहुत दर्द है
0: जी।
4: आप उसको थोड़ी सी अजवाइन निकालिए, उसको हाथ से रगड़िए और उसके बाद उसको बच्चे को दे दीजिए और एक आधा गिलास गुनगुना पानी।
0: अच्छा।
4: और आप देखेंगे कि मिनटों में उसको राहत मिल जाएगी।
0: अजवाइन से?
4: अजवाइन से। ऐसे ही अगर आपको बहुत ज्यादा कफ, अब इस समय देख ही रहो खांसी वगैरह से
0: हाँ।
4: हो रहा है, कोल्ड हो रहा है बहुत
0: हाँ।
4: ज्यादा, इसके लिए आप रात में सोने से पहले अगर दूध मिल जाए
0: हाँ।
4: तो बेटर है, वरना आप वाटर भी इस्तेमाल कर
0: हाँ।
4: सकते हैं। आधा कप पानी गर्म करें, उसमें आधे से कम चम्मच हल्दी डालिए।
0: हल्दी जो पीसी हल्दी होती है
4: हाँ, पीसी
0: हाँ।
4: हल्दी, हल्दी डालिए, उसको उबालना नहीं है। पानी आपका गर्म हो और वो हल्दी आपको पीसी हुई उसमें आधी चम्मच डालनी है
0: जी।
4: बस उसको एक घूंट रखना है, एक घूंट उसको पी करके और आराम से सो जाइए।
0: अच्छा, उसके बाद मतलब कुछ खाना पीना नहीं?
4: कुछ
0: है?
4: भी नहीं। आपको वो सुबह बहुत रिलैक्स करेगा क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। तो ये वैसे ही आपको
0: मतलब जैसे सर्दी जुकाम में,
4: सर्दी जुकाम में हाँ, और जिनको नसों की प्रॉब्लम है, जैसे बाई तरफ से नस में दर्द है या पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो आप सुबह उठिए, एक ग्लास गर्म पानी करिए, इतना गर्म हो कि आप पी सकें, उसमें आधी चम्मच हल्दी डालिए और दो चुटकी काली मिर्च पीसी हुई,
0: अच्छा
4: हाँ डालिए, उसको मिक्स कीजिए और उसको भी सिप सिप करके पी जाइए। तो आपको जो नसों की प्रॉब्लम है, हाँ, उससे आप देखेंगे आप एक हफ्ते में आपको फायदा हो जाएगा।
0: वाह, मतलब जिसे कहते हैं ना, अभी मैम ने बताया कि हमारे किचन में ही बहुत सारी चीजें हैं।
4: हाँ,
0: तो गीता जी आज हमारे साथ में किरण मैम हैं, आप किरण मैम से बहुत अच्छे तरीके से भली प्रकार से परिचित हैं, तो आज हमारे साथ आई हुई हैं और बहुत सारे नुस्खे भी बता रही हैं। और मैं बता दूं कि ये तो अभी आपकी हेल्थ को लेकर के हो गया, एंड मैम बहुत सारे उपचार जो हैं वो स्किन और अपनी बालों के लिए भी करती हैं, तो मैम बालों के लिए कुछ एक छोटा सा एक टिप फिर हम आपको दें इजाज़त।
4: हाँ, चलते चलते मैं आपसे फिर बताना चाहूंगी कि बालों के लिए, मेरी इतनी उम्र है लेकिन बाल अभी भी मेरे सलामत हैं, क्योंकि अगर 50 हूँ मैं तो उसका मतलब है तब तक तो बाल झड़ जाते हैं।
0: और मैम मैं सबको बता दूं कि मुझे लगता है कि मैम अभी तक कलर भी नहीं यूज करती हैं,
4: बहुत कम,
0: और बहुत ही रेयर में इनके बाल जो हैं कि वो कहीं से ग्रे हैं, बट कहते हैं ना, वही तो कहते हैं ना कि ऐसे घरेलू उपचार से ही हमें काफी कुछ फायदा मिलता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बालों के लिए आप कुछ बता दें।
4: हाँ, बालों के लिए बताएं, आप चावल बनाती हैं
0: जी,
4: चावल बनाने से पहले उसको आप धुलती हैं।
0: हाँ।
4: तो जब आप उसको धुल रही होती हैं तो उसका जो पहला पानी निकलता है,
0: हाँ हाँ,
4: वो थोड़ा डार्क होता है
0: जी,
4: उस पानी को निकाल के किसी बाउल या ग्लास में रख लीजिए
0: जी।
4: अगर मान लीजिए आपको उसी वक्त बाल धुलना है, उसी दिन धुलना है, तो आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकती हैं, बालों में इसको लगाइए और लगाने के बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए।
0: अच्छा।
4: फिर आप शैम्पू करिए और फिर अपने बालों का कंडीशन देखिए,
0: ओके,
4: कि क्या हो जाता है। बाल आपके टूट रहे हैं तो टूटेंगे नहीं, और बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो सफेद नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप थोड़ा सा आंवला,
0: हाँ,
4: थोड़ा सा प्याज का छिलका,
0: हाँ,
4: और थोड़ी सी चाय की पत्ती
0: जी,
4: थोड़ी सी कॉफी, थोड़ी सी मेथी, मेथी दाना,
0: हाँ,
4: ये डालकर आधा ग्लास पानी रखिए और हाँ, उसको घड़ी देख करके 5 मिनट पक जाने दीजिए। उसके बाद उसको निकाल के छान करके रख लीजिए। जब आप बाल धुलने के लिए जाएं तब तक पानी वो नॉर्मल हो जाए
0: जी।
4: बालों में अपने लगाएं, शैम्पू करें, फिर आपको किसी कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बताइए, और कितनी सारी चीजें इसमें जो डाली गई हैं वो सब अपने आप में एक औषधि है। बिल्कुल
4: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो गीता जी लिख रही हैं, दी मैं गीता बिसारिया हूँ।
4: हाँ, अच्छी तरह जानती हूं।
0: जानती हैं आपको गीता जी, बहुत अच्छे से
4: बहुत
0: जानती
4: अच्छे
0: हैं।
4: से।
0: और तो चलिए, अभी अनोखी जी ने लिखा है कि मैम एक गाना सुना दीजिए, वो उन्होंने गाने की फरमाइश की है, तो शायद वो गाना करम हमारा फूटा, सोनू मोरी अम्मा अम्मा,
4: ये मैंने गाया है उसमें ना, करम हमारा, अच्छा, फूटा सोनू मोरी अम्मा
0: जी।
4: तो अब ऐसा है कि हमारी छुट्टी का भी टाइम हो रहा है।
0: हाँ, लेकिन आपने जो अभी एक गाना आपने सोच के रखा है ना, आप फिलहाल वो सुना दें। तो अनोखी जी, नेक्स्ट टाइम हमारी मैम जब आएंगी ना, तो आपकी ये फरमाइश को जरूर हम पूरा करेंगे।
4: आज मैं आपको सावन ही सुनाती हूँ।
0: हाँ जी,
4: क्योंकि आज सावन के ही मूड में हूँ।
0: जी जी जी,
4: तो सावन सुनाती हूँ और अनोखी जी से कहिएगा कि मैं फिर आऊंगी और आपकी जो ये फरमाइश है
0: बिल्कुल
4: पूरा करने की पूरी कोशिश।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: गीता जी, अनोखी जी एंड बहुत सारे लिसनर्स लिख रहे हैं भाई, वाह मैम वाह, मतलब दिल ही जीत लिया। सावन में देखिए ये होती है ना कि असली सावन की खुमार और खुशबू। तो मैम आप हम लोगों से वादा करके जाइए, मतलब हमसे और हमारे लिसनर्स से,
1: हाँ
0: कि आप आएंगी और दोबारा से अनोखी जी की फरमाइश को भी पूरा करेंगी
1: बिल्कुल,
0: और फिर से हम लोगों की सावन की फुहार को एक बार और सुनाएंगी।
1: बिल्कुल, अनोखी जी को बहुत बहुत प्यार मेरा
0: जी,
1: बहुत बहुत आशीर्वाद सभी के लिए, प्यार और आशीर्वाद।
0: तो थैंक यू सो मच किरण मैम,
1: वेलकम,
0: मैं मैम को छोड़ के आती हूँ बाहर तक, तब तक आप सुनिए इस प्यार से गीत को।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार।

0: मैं सीएमओ गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो कैसे हैं आप सभी और आज के शो। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता। तो कैसे हैं आप सभी और आज के शो के बारे में हमें जरूर से फीडबैक दीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं कुछ ब्यूटी टिप्स एंड टिप ऑफ द डे। तो टिप ऑफ द डे तो हमको लास्ट में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए आप रोजाना क्लींजिंग कर सकते हैं। क्लींजिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस को धोना है। मॉइस्चराइजर और धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन अभी तो बारिश हो रही है, तो बारिश में भी अगर आप सनस्क्रीन का लोशन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भी जिसे कहते हैं ना कि बारिश में बहुत निकलो तो चिपचिपापन हो जाता है स्किन पे, तो वो आपको नहीं होगा। साथ ही घरेलू उपचार जैसे एलोवेरा जेल हो गया, दही और हल्दी का फेस पैक या फिर पपीते का पल्प का इस्तेमाल आप अपनी स्किन को प्राकृतिक रूप से आप उसको अच्छे से निखारने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप पपीता लगा रहे हैं तो अगर जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पपीते के पल्प में होता है विटामिन सी भरपूर, और विटामिन सी का मतलब है कि आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आपकी स्किन में ग्लोइंग करने के लिए ये तो आप टिप अपना सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप पपीते के पल्प को अवॉइड करें। फिर आप केवल और केवल आप हल्दी और मुल्तानी मिट्टी और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक पिंच आपने डाल देना है उसमें शहद का। तो आइए कुछ आसान से टिप्स और बता दें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी स्किन को हमेशा से जवान रखना चाहते हैं, स्किन को हाइड्रेट करना चाहते हैं, तो आपको पर्याप्त मात्रा में रोज़ 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। इससे शरीर और आपकी स्किन के जो टॉक्सिक होते हैं वो बाहर निकलते हैं और नमी हमेशा बनी रहती है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल आपको हमेशा करना है घर से बाहर निकलने से पहले। सनस्क्रीन यानी कि SPF या 30 या इससे अधिक भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे ज़रूर से लगाएं। और धूप की हानिकारक जो यूवी किरणें होती हैं उससे अपने स्किन का बचाव करें। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी आपको पानी के लिए बताया वैसे ही हम आपको बता रहे हैं कि पौष्टिक डाइट यानी कि प्रॉपर डाइट आपको लेनी है अपनी स्किन और बालों के लिए। अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा आपको फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाना है, ड्राई फ्रूट को शामिल करें एंड विटामिन सी से भरपूर जो भी आपको जिस फलों में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है जैसे संतरा होता है और आलमंड होता है, ये सब आप चीज़ों को आप खाएंगे तो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से कसाव और चमक आती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नींद आपकी स्किन के लिए सबसे रामबाण है। अगर आपको रात में 7 से 8 घंटे की नींद, अच्छी वाली नींद आ रही है, पूरी नींद लेने से आपके डार्क सर्कल्स भी नहीं होंगे, वो कम होंगे और चेहरे पर एक फ्रेशनेस आती है, तो नींद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके ग्लोइंग फेस के लिए। और जाते जाते आज का टिप ऑफ द डे हम आपको बताएंगे अभी कि आपको टिप ऑफ द डे में क्या करना है। भाई स्किन की अगर बात है तो स्किन में आज मैं आपको टिप ऑफ द डे 2 बताऊंगी, वो ये कि दही और हल्दी यानी कि 1 चम्मच आपको दही लेना है, उसमें मिलाना है चुटकी भर आपको

बेसन और एक चम्मच आपको बेसन और हल्दी और दही, इन सबको मिला करके अच्छे से पेस्ट बना ले। पेस्ट बन जाने के बाद में आपको फेस पे लगाना है 10 मिनट, और उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करके इसको साफ पानी से धुल देना है। साथ ही साथ में आपको एक और बता दूं टिप ऑफ द डे कि एलोवेरा जेल, जो सभी के घरों में होता है। एलोवेरा जेल एक ऐसा मात्र, एक अकेले मात्र एक ऐसी औषधि है जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए संपूर्ण रूप से रामबाण का काम करती है। ताज़ा एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाकर 15 मिनट छोड़ दें और उसे फिर साफ पानी से धुल दें। अगर आपके घर में एलोवेरा जेल नहीं है, उसका प्लांट नहीं है, तो मार्केट वाला भी एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं। बालों में लगाने के लिए उसको नारियल तेल में मिक्स करें और फिर अपने बालों में लगाएं एंड किसी माइल्ड शैम्पू से उसको धुल दें। तो ये था दोस्तों आज का टिप ऑफ द डे और आज के शो की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। तो आई होप सो कि आज आपको शो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमारी गेस्ट ही ऐसी आई थी। मिलेंगे हम आपसे कल, क्योंकि कल है आपका सैटरडे। सैटरडे मतलब फन, सैटरडे मतलब ऊपर से भी सुपर से भी ऊपर होने वाली मस्ती। तो कल हम दोनों मिलेंगे, यानी कि आज अंशिका एंड आरजे समता। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

हां जी, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन पर। वक्त हो चला है 3:03 बाय स्टूडियो क्लॉक, और मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। फिलहाल आइए चलते हैं आपके इस फरमाइशों के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और देखते हैं कि आज हमारे फरमाइशों के कार्यक्रम में जो पहला गाना आया है, यानी कि पहला गीत, पहला सॉन्ग जो डिमांडेड है, वो किसका है, किसने भेजा है अपना पहला गाना, और वो कौन है जो सुनना चाहते हैं। फिलहाल आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं आपके अपने कॉलिंग नंबर 6393316429 पर, जो कि आपके स्टूडियो वाला नंबर है। और हमारा सबसे पहला गाना किसी और ने नहीं भैया, महाराष्ट्र से भेजा है अमित चौधरी जी ने। और कमाल की बात यह है कि स्टार्टिंग में ही आपको गज़लें मिलने वाली हैं, यानी कि आज शुरुआत ही हम बेहद खूबसूरत गज़ल से करेंगे, जो कि जगजीत सिंह की आवाज़ में है, जिन्हें गज़लों का महाराजा भी कहा जाता है। तो आइए उनकी आवाज़ में इन्जॉय कीजिए, घर से निकले थे हौसला लेकर। स्टे ट्यून्ड।

क्या ही खूबसूरत आज की महफिल का आगाज हुआ है एक बेहतरीन गजल के साथ। और इसमें इस गजल में जो आवाज थी वो हमारे जगजीत सिंह की आवाज थी। और भैया आपने एक चीज नोटिस की है, इसकी कहानी कुछ कुछ अरिजीत सिंह के उस गाने से मिलती है जिसका नाम है जो मुझे छोड़कर तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। अमित चौधरी जी ने फरमाइश की थी महाराष्ट्र से इस खूबसूरत गाने की। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में दर्शन कर लेते हैं, यानी कि रुख कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपने क्या मैसेजेस और क्या कुछ लिख कर भेज दिया है। भैया हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र यादव जी, सबलू जी जो हमें सुन रहे हैं मुंबई से, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोना में। मुस्तफ़ा जी जो हमें सुन रहे हैं सऊदी से, आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोना में। नायला अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून टू यू। अमित जी ने लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत खूबसूरत सी गज़ल आपने फरमाइश की थी मैम। ओके, इसमें कैसे गाना सुने अपनी पसंद का। भैया आप कॉल कर सकते हैं 6339331649 पर, यानी कि 6393316429 पर आप कॉल करके अपने गाने को बता सकते हैं और हम आपका गाना प्ले ज़रूर करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, यानी हमारा अगला सॉन्ग जो डिमांडेड है वो है सुनील कुशवाहा जी का। और उन्होंने फरमाइश की है पहली बार सलाम लिखा। 90s का बेहद ही प्यारा बेहद ही खूबसूरत गाना हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं आपके अपने कॉलर ट्यून गोना में। और आपने ट्यून किया हुआ है 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। तो एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा विद योर फेवरेट आरजे उन्नति। और आज है फ्राइडे स्पेशल, यानी 2 घंटे का, तो अपनी फरमाइशों को लगातार भेजते रहिए।

92 जिगर से आप सुन रहे हैं प्यार के कागज पर पहली बार सलाम लिखा। अभिजीत और साधना सरगम की आवाज में आनंद मिलन का गाना और समीर के इस खूबसूरत बोल को आपने इंजॉय किया, जो कि हमारे सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश पर था। और हमारे साथ चैट बॉक्स में और भी लोग जुड़ गए हैं। सबसे पहले बबीता जी, आपका स्वागत करते हैं, जो लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। एंड इसके बाद कुमार टेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम गौरा चौकी, आपका भी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं सर आपके अपने वाले शो कॉल ट्यून गोंडा में। सौरभ मिश्रा फ्रॉम गोंडा हमारे साथ जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। एंड इसके बाद हमने कॉल किया था, जी हाँ मुझे आपकी कॉल मिल गई है और आपने 3:11 पर कॉल किया है, तो आपकी फरमाइश को बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ओके मुस्तफा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने हमें लिंक भेज दी है फ्रॉम दुबई, यानी कि सऊदी, सॉरी दुबई नहीं। हाँ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और आप इंजॉय करने जा रहे हैं बैरी, और ये गाना आया है हमारी सबिहा जी की फरमाइश पर, तो इंजॉय करें और इस गाने को सिर्फ इंजॉय करें, इससे इंस्पायर्ड ना हो यही मैं आपसे कहना चाहूंगी। सुन रहे हैं आप कॉल ट्यून गोना अपनी आरजोती के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो गाना 89.6 एफएम पर। स्टे ट्यून्ड।

सविया जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं बैरी, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारी सबलू जी की आई है, तो आइए सबलू जी की फरमाइश पे आप एंजॉय करें प्यार तुझे है मुझसे, और इस गाने को आप एंजॉय करते रहिए। राहुल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंचाई विभाग कॉलोनी गोंडा से, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड सबलू जी लिख रहे हैं, कलम में जोर जितना है जुदाई की बदौलत है, मिलन के बाद लिखने वाले लिखना छोड़ देते हैं। क्या बात है भाई साहब, बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप। फिलहाल आप एंजॉय करें और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

उदित नारायण की आवाज में आप इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन भूले तो नहीं है आपको कॉल करना है 6393316429 पर अपनी फरमाइशों को भेजने के लिए, क्योंकि ये है आपका कॉलर ट्यून गोंडा।

और इसी के साथ अपनी अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और हम चलेंगे हमारी अगली फरमाइश जो कि है राजेश मीना जी की, जो हम सुन रहे हैं बैंगलोर से। और उन्होंने बैंगलोर से फरमाइश की है, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, गुमनाम फिल्म से। तो आइए एंजॉय कीजिए 90s के बेहतरीन गाने, हमारे लिसनर्स बखूबी ढूंढ के लेकर आते हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारे, बेहद ही रोमांटिक सॉन्ग आप एंजॉय करने जा रहे हैं। और हमारे साथ महेंद्र दीपन जी जुड़े हैं फ्रॉम राजस्थान, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोना में। फ्राइडे स्पेशल कॉलर ट्यून आज आप सुन रहे हैं, दो घंटे के लिए आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा मेरे साथ यानी आरज्योति के साथ। अपनी फरमाइशें करना मत भूलिए, 6393316429 पर लगातार आपकी फरमाइशें भेजते रहिए।

मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, गुमनाम फिल्म से आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज में। नदीम श्रवण कंपोजर हैं और ऑफ कोर्स बोल लिखे हैं समीर साहब ने। इतने खूबसूरत बोल अक्सर वही लिखा करते हैं। और ये फरमाइश थी राजेश मीना जी की फ्रॉम बैंगलोर। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और आपका जो अगला सॉन्ग है वो अमित कुमार जी का है और डेडिकेट किया है आज आकांक्षा को। ऑलराइट, मैंने ये मैसेज उन तक आपका ये मैसेज पहुंचा दिया है जो आपने उन्हें गाने की डेडिकेशन दिया है, जो गाना आपने डेडिकेट किया है वो हमने पहुंचा दिया है आज आकांक्षा तक। बहुत बहुत शुक्रिया है उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। एंड धर्मेंद्र मोहन जी जो हमें सुन रहे हैं आवाज़ विकास से, आपका स्वागत करते हैं। धर्मेंद्र जी कैसे हैं आप? और आपने लिखा है उन्नति मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू मैम। हमने खुद लगा लिया, हालांकि लिखा तो उन्हें सिर्फ उन्नति ही था। एंड इसके बाद लिखा है कांच के टुकड़े बनकर बिखर गए हम, किसी ने समेटा भी तो बस अपने फायदे के लिए। ओहो हो, क्या हो गया भाई महेंद्र जी। एंड तुझसे कोई शिकायत नहीं है जिंदगी, हम खुद ही दूर हो गए तेरी खुशी के लिए। ओ माय गॉड, लगता है भाई महेंद्र जी का दिल किसी ने तोड़ दिया है और वो कौन है फिलहाल। ओके, तो इसके बाद सॉन्ग्स आ रहे हैं आपके लगातार। थैंक यू सो मच, आप कॉल करते रहिए 6393316429 पर, लेकिन व्हाट्सएप कॉल नहीं भैया, नॉर्मल कॉल कीजिएगा। और आइए चलते हैं हमारे इस गाने को एंजॉय करते हैं। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, पायल देव और स्टीवन मैन की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं इस खूबसूरत से नगमे को। और हम मिलेंगे इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, और ये गाना डेडिकेट किया गया था आरजी आकांक्षा जी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गाना था हमारी अमित कुमार जी की फरमाइश पर। आइए चलते अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हम लेकर आए हैं आपके लिए आरती जी की पसंदीदा गाने भीगी पलकों में। और आई थिंक आप ये सुनना चाह रही हैं किशोर दा की आवाज़ में, जहाँ तक मैंने सही गेस किया है। तो आप एंजॉय करते रहिए इस खूबसूरत से नगमे को, और 90s या फिर कहें तो उससे पुराना सॉन्ग है अनामिका फिल्म से। हम मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और आप सुन रहे हैं मेरी भीगी भीगी पलकों पर किशोरदा की आवाज़ में। इस गाने की फरमाइश की थी हमारी आरती जी ने, और अगली फरमाइश आई है सौरभ मिश्रा जी की, जिन्होंने हमें पहली बार अपने डिमांडेड गाने को भेजा है। तो उनकी फरमाइश पर एक बेहद ही रोमांटिक गाना हम आपके लिए पेश करते हैं। स्काई फोर से अक्षय पर फिल्माया गया सॉन्ग, अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर है ऑफकोर्स, और उनकी फिल्म से गाना है तू है तो मैं हूँ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गुना अपनी आरजी के साथ आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली पर।

हां जी, तो आप सुन रहे थे सौरभ जी की फरमाइश पर तू है तो मैं हूं। और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। श्याम सुंदर जी की फरमाइश आई है, एक खूबसूरत सा दर्द भरा नगमा जो आप एंजॉय करने जा रहे हैं। उम्र कैद होगी मुझको, फैसला अदालत का। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

श्याम सुंदर जी की फरमाइश पे आप एंजॉय कर रहे थे उम्र कैद होगी क्या फैसला अदालत का, और हमारे साथ कमल नयन जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं कमल जी। अनिल वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया सभी सुनने और सुनाने वालों को, शुभ दोपहरिया आपको भी, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। और अगली फरमाइश आई है हमारी बबिता जी की, डेडिकेट किया है अनुष्का जी को, और उन्होंने फरमाइश की है एक सोहर गीत की, तो आइए एंजॉय करें आप, क्योंकि मुझे एक ही पता है तो मैं आपके लिए यही वाला गाना प्ले कर रही हूँ, और एंजॉय करते रहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनुष्का जी जिनके घर में एक छोटा सा बेबी आया है। स्टे ट्यून्ड।

बबीता जी की फरमाइश में आप सुन रहे थे अनुष्का जी को डेडिकेटेड एक बढ़िया सा सोहर गीत, और हम चलेंगे हमारी अगली गाने की तरफ। हमारी ओके, हमारे साथ एक और नए लिसनर जुड़े हैं जिन्होंने पहली दफ़ा अपनी फरमाइश भेजी है, और बहुत ही खूबसूरत फरमाइश भी आई है, और इतनी प्यारी फरमाइश है जो कि इस तरह से है कि कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे मरना। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो आइए इंजॉय करें इस खूबसूरत से 90s के सॉन्ग को, जो कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित पे फिल्माया गया तेजा फिल्म का गाना है तेजाब एक्चुअली। और आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा अपनी आशमती के साथ 89.6 FM पर।

तो भाई अजय जी ने अपनी फरमाइश भेजी थी, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित पे फिल्माया गया गाना। अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाज में आपने इस गाने को एंजॉय किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस गाने के कंपोजर थे, यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर थे। और आइए चलते हैं हमारे अगली गाने की तरफ। एंड अनिल जी लिख रहे हैं, महंगे कैफे की वो कॉफी हमें कभी रास नहीं आई, तुम्हारे साथ टपरी पर गई वो कुल्हड़ की चाय याद आई, धुएं में उड़ती हैं परेशानियां जब तुम सामने बैठती हो, शायद इसी सादगी को दुनिया ने सच्ची मोहब्बत है बतलाई। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और सच में अगर आपसे कोई चाय के लिए पूछता है ना, तो कभी इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय एक बहाना होता है, एक मुलाकात का बहाना, किसी के कुछ पल चुराने का बहाना, किसी से कुछ लम्हे ले लेने का बहाना, कुछ बातें करने का, कुछ दिल की कह देने का बहाना। और इसीलिए चाय की प्याली को ना कभी भी इनकार नहीं करते। ये नहीं कहते कि ओ नो ये तो चाय है, इसमें तो बस चीनी है, बस शुगर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आपको कोई कहता है कि भैया चलो किसी दिन चाय पर मिलते हैं, तो ऑफकोर्स हाँ कहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको नहीं पता जिंदगी आपको कितने खूबसूरत लम्हे तोहफे में देने वाली है। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और एंजॉय करते हैं अनन्या जी की फरमाइश पर, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा। एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा फ्राइडे का स्पेशल, दो घंटे का आपकी फरमाइशों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा आपकी अपनी आशियों के साथ। अपनी फरमाइशें आप भेज सकते हैं 6393316429 पर। स्टे ट्यून्ड।

प्यार हो जाएगा। और ये गाना था हमारी अनन्या जी की फरमाइश पर, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। और इसके साथ के जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फ्रॉम तिरंगा कॉम्प्लेक्स, लिख रहे हैं स्पीड वाली मैम जी नमस्कार, आपके लिए चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय चाय खूब पियो। इतनी चाय भी नहीं पीते हैं हम, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए इतनी सारी चाय भेजी। वो अलग बात है कि शकल का बुम बुम बनकर हम उस पेंसिल का इस्तेमाल करके चैट बॉक्स से चाय बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ आपकी चाय के लिए दिल से शुक्रिया। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और अगला गाना हमारे कुमार टेलर्स जी का है, और ये गाना आपने अपने बचपन में जरूर सुना होगा, क्योंकि हमने सुना है अपने बचपन में। और कहाँ सुना है, जब डीजे वाले भैया इस गाने को कहीं दूर बजा रहे थे और हम दूर से सुन रहे थे, गाने में कुछ तो है, कुछ तो अलग है। अब आप भी सुनिए और आप बताइए कि आपको ये गाना आपने कब सुना था। नायल अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और हम आपको बता दें भाई आपका गाना भी है मेरे पास, बस थोड़ा इंतजार कीजिएगा। अगली फरमाइश है धर्मेंद्र मोहन जी की, निशा जी की, आरती सैनी जी की, प्रेम मौर्य जी की, समरीन की, रईस की, राम सागर मौर्य जी की और नायल अंसारी जी की। आपकी फरमाइशें हमारे पास लगातार बनी हुई हैं, बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉलेज यूनकोंडा।

हां जी, तो आपने एंजॉय किया कुमार जी की फरमाइश, और अब बारी है हमारी अगली फरमाइश की। अगली फरमाइश गेस कीजिए किसकी थी। वैसे हमने आपको नाम बताया था। जी हाँ, आपका नाम है धर्मेंद्र मोहन जी और आवास विकास से उन्होंने भी फरमाइश भेजी हुई है। एंड थैंक यू सो मच नैल अंसारी जी बताने के लिए। हम थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी कुछ नाम ऐसे मिल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एंजॉय करते रहिए। मितवा भूल ना जाना, आवास विकास से आपके लिए फरमाइश पेश करते हैं, जो कि हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की है। सुनते रहिए कॉलर ट्यून गुना अपनी आरजीओटी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

भैया, तो धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पे आप एंजॉय कर रहे थे मितवा भूल ना जाना, और बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम आपको धर्मेंद्र जी, क्योंकि आपका नाम इतना बढ़िया है और आप हमें धर्मेंद्र पाजी की याद दिलाते हैं, तो कैसे भूल जाएंगे। इवन हम धर्मेंद्र पाजी के ऊपर, यानी जब हेमा मालिनी के ऊपर और धर्मेंद्र पाजी की लव स्टोरी के ऊपर रील बना रहे थे, तो पता नहीं क्यों, लेकिन धर्मेंद्र जी फ्रॉम आवाज विकास ही मेरे मुँह से निकल रहा था, रट चुका है आपका नाम। और अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चल रहे हैं। हाय हाय मैम, हाय टू यू, कैसे हैं आप मैम? मुझे आप ओके जमाल ने जोड़ा है, आपका स्वागत करते हैं जी, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी जिन्होंने आपको हमसे जोड़ दिया। तो आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और आप एंजॉय करने जा रहे हैं निशा जी की फरमाइश पर हम प्यार करने वाले धुरंधर फिल्म से। और हम प्यार करने वाले किसी से भी डरते नहीं हैं, इस बात का ऐलान हमारी निशा जी सरेआम कर रही हैं कॉल ट्यून गुंडा में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते इस गाने के उस बात, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

एक्चुअली तो हम प्यार करने वाले किसी से भी डरते नहीं हैं, इस बात का ऐलान किया है हमारी निशा जी ने। और जमाल जी नहीं है, वो कमाल जी हैं, और जिन्होंने आपको जोड़ा है कमल नयन जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाम सही करने के लिए। एंड इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना है आरती जी का, और वो सुनना चाहती हैं इस खूबसूरत से नगमे को, थोड़ा सा दर्द भरा नगमा। आप एंजॉय करने जा रहे हैं कॉल ऑफ गोंडा में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन विद योर फेवरेट आरजे उन्नति।

ऑल राइट, और मुझे लगता है आज मेरे लिसनर्स का मूड बिल्कुल मौसम की तरह हो रखा है, यानी कि जिस तरह सूरज नहीं दिख रहा है ना, इस तरह इन लोगों का भी दिलो दिमाग का सूरज नहीं खिला है, और आज हर कोई सैड सॉन्ग सुन रहा है। ऐसा क्यों, क्यों भाई क्यों? और हम, मुझे लगता है ना, मेरे लिसनर्स को पार्टी सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद होगा, रोमांटिक गाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, रोमांटिक सॉन्ग पसंद हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो सैड सॉन्ग आप लोग सुना करते हैं, मैं आपको बता दूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड के लिए बिल्कुल भी सैड सॉन्ग अच्छे नहीं होते हैं। जी हाँ, मैं आपकी सेहत का बहुत ख्याल भी रखती हूँ ना। एंड ओके, धर्मेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं हाय एवरीवन, भाई लोग कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में, और आप इन्जॉय करने जा रहे हैं अगली फरमाइश, प्रेम मौर्या जी की, सांसों को जीने का सहारा मिल गया, अरिजीत सिंह की आवाज़ में तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और आप सुन रहे हैं आशुरती के साथ कॉलर ट्यून गोंडा। हम आपको बता दें, अरिजीत सिंह की आवाज़ है, शकील आज़मी के बोल हैं और जिद फिल्म से है गाना।

ओह माय गुडनेस, अरिजीत सिंह की आवाज में कितना बेहतरीन और खूबसूरत गाना आपने एंजॉय किया। और आइए चलते हैं हमारे 90s की तरफ, और आप एंजॉय करने जा रहे हैं तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मुझे ऐसा किसी और ने तो ना कहा, लेकिन हाँ मैं अपने गली के कुत्तों से ज़रूर इस बात पे बिल्कुल राज़ी होती हूँ, और मैं कहीं भी रहती हूँ वो ढूंढ ढांढ के मुझे पहुँच ही जाते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें ये फरमाइश आई है नायला अंसारी जी की, जो सुनने जा रही हैं। खूबसूरत सा गाना आपके लिए पेश करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में।

कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आपने इस गाने को एंजॉय किया। और भाई अलका जी क्या ही गाना गाती है, और कुमार सानू उदित नारायण के साथ उनकी जोड़ी सुपर सुपर हिट रही है। नदीम श्रवण का संगीत है और बोल लिखे हैं समीर साहब ने। सनी देवल और करिश्मा, जो अपने नाम को करिश्मा बताती हैं, उन पर फिल्माया गया गाना जीत फिल्म से है। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो आपके लिए पेश करते हैं वो है समरीन जी की फरमाइश, जो तू मेरा हमदर्द है। अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुनेंगे एक विलन फिल्म से ये बेहतरीन सा रोमांटिक सा नगमा आपके लिए पेश है। और ओके, काफ़ी सारे इमोजीज आ रहे हैं चैट बॉक्स में नायला जी की तरफ से, धर्मेंद्र जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।

जो तू मेरा हमदर्द है। और इसी के साथ आइए अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे पर आधा घंटा और बाकी है आज के फ्राइडे स्पेशल शो में। अगला सॉन्ग जो आपके लिए पेश कर रहे हैं हम रईस जी की फरमाइश पर, और वो सुनना चाहते हैं बेबी तुझे पाप लगेगा। जी हाँ, एंजॉय करते रहिए सुपर डुपर हिट गाना, और ऑफकोर्स बहुत हाई बीट सॉन्ग आपके लिए पेश कर रहे हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में, अभी तक का सबसे ज्यादा हाई बीट सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

प्रेयस जी की फरमाइश पे आपने सुना बेबी तुझे पाप लगेगा। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश जो आई है वो है ओके तो हमारे पास अगली फरमाइश जो है वो है रामसागर मौर्य जी की, और उन्होंने एक सैड सॉन्ग की फरमाइश कर दी है दोस्तों। और आप सुनने जा रहे हैं प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जाए। और कमाल की बात यह है कि बचपन में इस गाने को सुन के हम सैड तो हो जाते थे, लेकिन लिरिक्स मुझे अभी तक याद नहीं हुई है, हो सकता है आज याद हो जाए। इसके बाद जो हमारी अगली फरमाइशेज हैं वो हैं देवी प्रसाद जी की, महेंद्र जी की, चांद बाबू जी की, दुर्गा जी की और सुरेश कुमार जी की, जो हमें चौक से सुन रहे हैं, और उस्मान खान की। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ ट्यून गोंडा विद योर आरजे उन्नति।

भाई कहीं पर आंसुओं की बारिश है और कहीं भैया सच में बारिश होने लगी है। जी हाँ, कुमार जी के मैसेज के अनुसार अगर देखा जाए तो कुमार जी के वहां पर बारिश शुरू हो चुकी है। मुबारक हो आपको। और क्या मैं बाहर देखूं कहीं, हमारे यहाँ भी तो बारिश नहीं हो रही है फिलहाल। गोंडा वाले आप बताएं, बारिश हो रही है बाहर की नहीं हो रही, क्योंकि हम बाहर नहीं है। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना आया है देवी प्रसाद जी की फरमाइश, और देवी प्रसाद जी सुनना चाहते हैं सारा जहां हाँ दूध ला के माटी में मिला दो। आइए एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन से नगमे को। और ये महाशिवरात्रि का स्पेशल सॉन्ग है आपके लिए, भजन है एक्चुअली, पेश कर रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे महेंद्र जी की तरफ, और महेंद्र जी सुनना चाहते हैं जो गाना वो हम पेश करते हैं। लेकिन उससे पहले एंजॉय करते रहे देवी प्रसाद जी की फरमाइश को।

देवी प्रसाद जी की फरमाइश को आप एंजॉय कर रहे थे और अब बारी है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने की। जोड़ी नंबर वन से आप सुनने जा रहे हैं लाल चुनरिया। जोड़ी नंबर वन किसकी आज किसकी फिल्म है आपको पता है ना? जी हाँ, अगली फरमाइश है हमारे महेंद्र जी की और सबके घर में हो रही है बारिश, यानी सबके शहरों में हो रही है बारिश। और शहर घर होता है क्योंकि कहीं भी चले जाओ मजा तो अपने ही घर में आता है। और हमारे अनिल जी भी कह रहे हैं कि उनके यहाँ भी बारिश हो रही है। महेंद्र जी कह रहे हैं हम तो मैम जी सूरत में है, चार दिन बहुत बारिश हो रही थी, अगर दो दिन और हो जाती तो बाढ़ के हालात आ जाते। ओ माई गॉड, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, ट्रेन सब बंद हो चुकी है और आज रुकी है बारिश। चलिए आपके लिए बारिश रुक जाने की मुबारकबाद, और हमारे वो लोग जिनकी यहाँ पर बारिश अभी अभी स्टार्ट हुई है उनको भी मुबारकबाद कि आप बारिश एंजॉय करें। और जिनके यहाँ पे बाढ़ की हालत हो रही है वो तो यही दुआ कर रहे होंगे आई थिंक, और आपने आपकी दुआ कबूल हुई, इसलिए खुश हो जाइए, एंजॉय करिए। और हम चलेंगे अगले गाने की तरफ, एंजॉय करते रहिए लाल चुनरिया वाली पे दिल ला गया। दिल ही आया था ना एक्चुअली मुझे, मैं और गानों में बहुत ख़राब इंसान हूँ। गाने मुझे जितने ही पसंद है उतनी ही उल्टी मैं सबकी लिरिक्स गाती रहती हूँ।

महेंद्र जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं लाल चुनरिया वाली पे दिला। मुझे तो सवाल है आप लोगों से, ख्यालों के लड्डू और ख्याली पुलाव ही क्यों होते हैं? ख्यालों की बर्फी और ख्याली बिरयानी क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम तो वही पसंद करते हैं ना, हालांकि हम बर्फी पसंद नहीं करते, बट स्टिल वाई ऑलवेज ख्यालों के लड्डू, नॉट ख्यालों की बर्फी और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कुछ भी हो सकता था। इस मुहावरे के पीछे की असल वजह क्या है मुझे जाननी है, और खाने पीने वाले जो मुहावरे बनते हैं वो मेरे सामने तो कोई कहे भी ना, पता नहीं क्यों भूख लगाती है। एंजॉय करते रहिए क्वालिटी उन गुड, आप सुन रहे हैं चांद बाबू की अगली फरमाइश, और आप एंजॉय करेंगे इसके बाद हमारी दुर्गा जी की फरमाइश को, सुरेश जी की फरमाइश को, उस्मान खान जी की फरमाइश को, और हमारी आखिरी फरमाइश अनिल कुमार जी की। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। और हमारी अगली फरमाइश आई है दुर्गा जी की, और वो सुनना चाहती है नेहा कक्कर की आवाज में, तुमको बारिश पसंद है मुझे बारिश में तुम। आई है क्या खूबसूरत रोमांटिक गाना नहीं पेश किया आपके लिए हमने। एंजॉय करते रहिए, बहुत ही प्यारी फरमाइश है आपकी, और सुनते रहिए कॉलर ट्यून गुंडा। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और महेंद्र जी लिख रहे हैं, इंतजार का मीठा फल आपने आखिरकार दिला ही दिया। उन्नति मैम, गाना बजा कर आपने हमारा पूरा दिन बना ही दिया। कुछ लाइन अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपकी इस अदा और प्यारे शो से हमें है बेहद प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी लिख रहे हैं, मिट्टी की वो सौंधी खुशबू आज फिर गवाह बनी है कि आसमां की जमी से मोहब्बत आज भी वही है। क्या बात है भाई। भैया शायर अगर कोई चीज़ देखने बैठ जाए ना तो हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं खूबसूरती ढूंढ लेते हैं, वहीं साइंस अगर किसी चीज़ को देखने बैठ जाए तो वो हर जगह पर केमिकल रिएक्शन ढूंढ लेती है। साइंस एंड शायरी वेरी डिफरेंट थिंग, और सोचो अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए तो कितनी खूबसूरत शायरी बन के आएगी। इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन पर दुनिया कायम है। और हम चलेंगे हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि हमारे सुरेश जी की है, और वो सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, क्या बात है, ओजी सिंगर की आवाज़ में ये वाला गाना। जी हम आपके लिए पेश करते हैं दिस सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड।

अनजाना फिल्म से आप सुन रहे हैं मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, चार दिनों की है ये कहानी और ये फरमाइश आई थी सुरेश कुमार जी की, जो हमें चौक से सुनते हैं। और आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे उस्मान खान जी की है और वो सुनना चाहते हैं, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश आपके लिए पेश करते हैं कॉलर ट्यून गुंडा में।

0: और इसी के साथ अब बढ़ेंगे हम अपनी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश अनिल जी की आई है, अनिल कुमार जी की, और वो सुनना चाहते हैं। बारिश की जाए, मेरा यार हंस रहा है। और कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है, जब बहुत बारिश हुई है और आपके गलियों में पानी भर चुका है और आप अब नाव से निकलने का ज़माना आ चुका है कि भैया तैर के जाएं, कि स्विमिंग नहीं आती तो नाव से निकलें, तब आपने सोचा होगा कि किसका यार इतना हंस रहा है जो इतनी बारिश हो रही है। फिलहाल ये बस एक मजाक था, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन हाँ इन्जॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गुंडा, और आप इन्जॉय करने जा रहे हैं बारिश का एक बेहतरीन लाजवाब सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।
1: ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

चलिए भाई, ये तो थी हमारे शो की आज आखिरी फरमाइश जो कि हमारे अनिल कुमार जी की थी। लेकिन जाने से पहले हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने अपनी फरमाइशें हम तक नहीं भेजी है, तो उनके लिए मेरी तरफ से आपको पेश करती हूँ साजन फिल्म से माधुरी दीक्षित पे फिल्माया गया अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आई थिंक ये गाना इस मौसम में जहाँ बारिश हो रही है, बादल हैं, हवाएं हैं, और इस मौसम में सबसे खूबसूरत अगर कोई नगमा आपके लिए मैं पेश कर सकती थी, सबसे रोमांटिक गाना जो मैं पेश कर सकती थी, वो मैंने आपके लिए कर दिया है। आज का शो बस इतना ही। घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। ज़रूर बताइएगा आज का शो आपको कैसा लगा, आज की फरमाइशें आपको कैसी लगी और आपका फीडबैक क्या कुछ कहता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। आप रखिए अपना ख्याल, आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे थे रेडियो 89.6 FM पर आपका अपना शो चल रहा था कॉल ट्यून गोंडा फ्राइडे स्पेशल विद योर आरजे रति। Stay tuned. And of course, bye-bye. Take care.

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।
4: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव।
5: और मैं हूं आयुषी।
4: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए आयोजित कलेक्ट्रेट जनता दर्शन में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन द्वारा प्राप्त शिकायतों पर संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम बगलही तहसील सदर जनपद गोंडा निवासी हजारीलाल पुत्र जोखू ने जनता दर्शन में उपस्थित होकर अपने हिस्से की भूमिका अंश निर्धारण न होने संबंधी समस्या जिलाधिकारी के समक्ष रखी। शिकायतकर्ता ने बताया कि अंश निर्धारण न होने के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा आवश्यक राजस्व अभिलेख भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने तत्काल संबंधित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए अंश निर्धारण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तथा शिकायतकर्ता को अद्यतन खतौनी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए।
5: गोंडा के 100 से भी ज्यादा कोचिंग लाइब्रेरी मानक विहीन। बता दें कि लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद गोंडा में 500 से ज्यादा कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी का निरीक्षण हुआ था। इनमें 100 से भी अधिक संस्थानों को मानक विहीन पाया गया है। जांच में पता चला है कि इनमें आग बुझाने का इंतजाम नहीं है, आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठकर वहां पे पढ़ते हैं। एक हफ्ते में सुधार के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक किसी ने नियम का पालन नहीं किया है। बड़ी संख्या के छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
4: अयोध्या के तर्ज पर जनपद गोंडा में पर्यटन को नई दिशा देने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जनपद के विकासखंड उजीरगंज निवासी श्री विनोद कुमार मौर्या को मौर्या होम स्टे उजीरगंज गोंडा के नाम से होम स्टे संचालन हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यह जनपद गोंडा का पहला आधिकारिक होम स्टे प्रमाण पत्र है, जो जनपद के पर्यटन एवं ग्रामीण अतिथि को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने कलेक्ट्रेट जनता दर्शन के दौरान विनोद कुमार मौर्या को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही जनपद की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक धरोहर से देश विदेश के पर्यटक भी परिचित हो सकेंगे। उन्होंने यह इच्छुक नागरिकों से भी पर्यटन विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर होम स्टे स्थापित करने का आह्वान किया है। जनपद गोंडा में निःशुल्क टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। बता दें कि जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित खुरपका मुंहपका FMD रोग की रोकथाम हेतु निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत विशेष टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पशुपालन किसानों एवं पशुपालकों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। पशुओं को संक्रमण बीमारियों से सुरक्षित रखना न केवल उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा संचालित यह विशेष वाहन जनपद के प्रत्येक गांव तक पहुंचकर पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण करेगा। उन्होंने कहा कि खुरपका मुंहपका एक अत्यंत संक्रामक रोग है जो पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। समय पर टीकाकरण के माध्यम से इस बीमारी की प्रभावी रोकथाम संभव है। उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील किया है कि इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाए तथा अपने सभी पात्र पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं।
5: गोंडा में मूसलाधार बारिश, किसानों को मिली राहत। बता दें कि गोंडा जिले में बुधवार दोपहर 12 से 3 तक मन्नीपुर, पांडेपुर, खुरहासा, जमुनियाबाग समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से धान की रोपाई कर रहे किसानों को सबसे ज्यादा बारिश का फायदा हुआ है। लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना भी है।
4: जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्य एकता सिंह व ऋतु शाही द्वारा जनपद में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण की समीक्षा की जाएगी तथा पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण के उद्देश्य से महिला जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 जुलाई को प्रातः 11 बजे आयोजित होने वाली महिला जनसुनवाई में महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह व ऋतु शाही स्वयं उपस्थित रहकर महिलाओं की शिकायतें सुनेंगी। जनसुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी विवाद, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, बाल विवाह, महिला सुरक्षा तथा महिलाओं के अधिकार से जुड़े अन्य मामलों पर प्राप्त शिकायतों की जनसुनवाई की जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जनपद की सभी पीड़ित एवं जरूरतमंद महिलाओं से अपील किया है कि वह 24 जुलाई को प्रातः 11 बजे निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करें।
5: नकली दवा कारोबारी अमन कसौधन फरार, पुलिस ने 10 जगह की छापेमारी। बता दें कि नकली और नशीली दवाई के कारोबार में मास्टरमाइंड अमन कसौधन की तलाश में पुलिस जुटी है। अमन फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस रद्द होने और भाई की गिरफ्तारी के बाद 16 जुलाई से वो फरार है। पिछले 7 दिनों में पुलिस ने 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। बुधवार सुबह भी कई जगह दबिश की गई, लेकिन अमन का कहीं भी पता नहीं चला और उसका फोन बंद आ रहा है। इस कारोबार में 1,13,00,000 की नकली दवाइयां जब्त हुई हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है।
4: जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत राज रॉयल पैराडाइज मैरिज हॉल गोंडा में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक सुचतापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद के विकास खंड व नगर पालिका परिषद, जनपद के नगर पंचायत को मिलाकर कुल 526 जोड़े पंजीकृत थे, जिसमें से 443 जोड़ों का विवाह पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया है, जिसमें 405 जोड़े का हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ है तथा 28 जोड़ों को इस्लामिक पद्धति से मौलवी साहिबे आलम द्वारा निकाह कराया गया है। इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को रॉयल पैराडाइज मैरिज हॉल गोंडा में 2 शिफ्टों में आयोजित किया गया, जिसमें 3 तहसील तथा 13 विकास खंडों के लाभार्थी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसी भी गरीब की बेटी के हाथ पीले होने से नहीं बचेंगे, वो चाहे किसी भी जाति व धर्म के हों। सामूहिक विवाहित हमारी सरकार करीब 64,000 रुपए प्रति जोड़े के कन्या के खाते में दिया जाता है। शेष उपहार सामग्री दी जाती है, स्टील का डिनर सेट, प्रेशर कुकर, कढ़ाई आदि सामान भी दिए जा रहे हैं।
5: घाघरा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर, 10 बीघा जमीन कटी। बता दें कि घाघरा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह 8:30 बजे ब्रिज पर नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। गिरजा, शारदा और सरयू बैराज से लगभग 3,00,000 क्यूसेस पानी छोड़ा गया है। इससे तरबगंज और करनैलगंज के 1 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा है। नवाबगंज में दत्तनगर में नदी कटान में 10 बीघा जमीन, एक अस्थायी और एक फूस का मकान नदी में समा गया।
4: खरगोपुर क्षेत्र के गोकर्ण शिवालय के पास रात दुकान में रखे दिए से पर्दे में लगी आग कुछ ही मिनटों में बेकाबू हो गई। लपटों ने पास में रखे डीजल से भरे ड्रम को चपेट में लिया। बताया जा रहा है कि पूरा 3 मंजिला का मकान धधक उठा। चपेट में आकर 2 सिलेंडर भी फट गए। गए हैं, जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल है।
5: झंझरी में जल भराव से परेशान मोहल्ला, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। बता दें कि झंझरी ब्लॉक में बड़गांव पुलिस चौकी के पास हाइडल कॉलोनी के पीछे का मोहल्ला जल भराव और गंदगी से परेशान है। 20 घर और 100 लोगों की आबादी वाले इस मोहल्ले में थोड़ी बारिश में ही पानी भर जाता है। बच्चे बुजुर्ग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, कई गाड़ियां भी उसमें पलट चुकी हैं। ग्रामीणों ने कई बार डीएम को पत्र दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अब उन्होंने ऐलान किया है कि अगर पंचायत और विधानसभा चुनाव तक नाली का सफाई नहीं हुई तो वो वोट भी नहीं डालेंगे।
4: जनपद में स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली गई रैली। विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार को स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैलियां निकाली गई। छात्र एवं छात्राओं ने गाँव में भ्रमण कर शिक्षा का संदेश दिया। कंपोजिट विद्यालय करणपुर में प्रधाना अध्यापिका उषा सिंह के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई।
5: गोंडा में मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतरे, बड़ा हादसा होते होते टला। बता दें कि गोंडा रेलवे स्टेशन के पास बुधवार देर रात गाजियाबाद से मोतिहारी जा रही मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसा बड़गांव ओवरब्रिज के नीचे लाइन नंबर 7 पर रात 12 बजे हुआ। 42 डिब्बे की ट्रेन में 29वां डिब्बा पूरी तरीके से और 30वां डिब्बा आंशिक रूप से उतर गया था। लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन समय पर रोक दी गई। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई और यात्री ट्रेनें भी प्रभावित नहीं हुई। रेलवे की टीम ने देर रात ट्रैक ठीक कर उसका काम शुरू किया।
4: बदलते समय के साथ तकनीकी के अनुरूप खुद को बदलेंगे अब गोंडा के युवा। विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष में पस्का क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। परीक्षार्थियों ने तकनीकी एवं कौशल आधारित मॉडल प्रदर्शनी लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पंचायत परसपुर के अध्यक्ष वासुदेव सिंह ने दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इस दौरान संस्थान के परीक्षार्थियों और अनुदेशकों की तरफ से तकनीकी मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में विभिन्न ट्रेडों से जुड़े मॉडल और नवाचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें उपस्थित लोगों ने सराहा। प्रभारी प्रधानाचार्य राम इंद्र यादव ने कहा कि विश्व युवा कौशल दिवस का उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी दक्षता के प्रति जागरूक करना है।
5: मुठभेड़ में गौ तस्कर मुफीद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। बता दें कि नवाबगंज पुलिस और SOG ने मंगलवार देर रात को मुठभेड़ के बाद फरार गौ तस्कर मुफीद को गिरफ्तार कर लिया है। नगवा मोड़ से करबला जाने वाली सड़क पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोका। भागने की कोशिश में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। उसे गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मुफीद 10 बैल चोरी के मामले में फरार चल रहा था। उसके पास तमंचा और बिना नंबर की बाइक भी बरामद हुई है।
4: गोंडा में महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर एवं ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जिला पंचायत सभागार गोंडा में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने की। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं, विशेष रूप से विद्युत सखियां, उनके कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से थर्मल प्रिंटर वितरित किए गए हैं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मिशन शक्ति केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और समाज में सम्मानजनक पहचान दिलाने का एक सशक्त अभियान है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के साथ साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विद्युत सखियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल संग्रह, उपभोक्ता सेवाओं तथा जन जागरूकता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि थर्मल प्रिंटर उपलब्ध होने की उनकी कार्यक्षमता में और अधिक वृद्धि होगी तथा आमजन को बेहतर एवं त्वरित सेवाएं प्राप्त होंगी।
5: गोंडा में एक हफ्ते में 100 से भी ज्यादा सांप रेस्क्यू, 5 की मौत। बता दें कि गोंडा में सांपों का खतरा बढ़ चुका है। पिछले एक महीने में सर्पदंश से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच सर्प मित्रों की टीम लोगों के लिए मददगार रही। पिछले एक हफ्ते में जिले के अलग अलग इलाके से 100 से भी ज्यादा सांप को रेस्क्यू किया गया है। इसमें 10 अजगर, 40 भारतीय कोबरा, 50 रसल वाइपर जैसे जहरीले सांप शामिल हैं। सर्पमित अरुण बाबा और जयनाथ बंगाली ने सांप को रिहायशी इलाके से निकाल कर जंगल में छोड़ दिया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है।
4: जनपद में 1,13,00,000 रुपए की नकली व नशीली दवाएं की गयी सीज, 3 अवैध गोदामों पर लगातार छापे। बता दें कि प्रदेश में नकली और नशीली दवाओं के अवैध कारोबारी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जनपद गोंडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस संचालित 3 अवैध औषधि गोदामों में लगभग 1,13,00,000 रुपए की मूल्य की नार्कोटिक्स, कोडीन, सिरप एवं अन्य एलोपैथिक औषधियां बरामद कर सीज कर दी है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किए गए हैं, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन मुख्यालय लखनऊ के निर्देशन में प्राप्त गोपनीय अधिसूचना के आधार पर जनपद गोंडा के बरियारपुरवा, सोनार गली, बड़गांव क्षेत्र में 16, 17 एवं 18 गली में लगातार 3 दिनों तक विशेष सघन छापामारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में प्रदेश के 9 जनपदों के औषध निरीक्षक तथा स्थानीय पुलिस बल के संयुक्त टीम ने भाग लिया था।
5: करकरा तालाब में डूबने से 12 साल के छात्र सुमित की मौत। बता दें कि उमरी बेगमगंज के पूरे डाल करकरा गांव में बुधवार को करकरा तालाब में डूबने से 12 वर्षीय छात्र सुमित की मौत हो गई। सुमित कक्षा 5 का छात्र था और 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी माँ रोशनी खेत में धान रोपण कर रही थी, बच्चे को घर पर भेज दिया था। घर लौटते समय वो तालाब में डूब गया। गुरुवार सुबह उसका शव बरामद हुआ। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। ग्रामीणों ने बताया कि 84 कोसी मार्ग के लिए तालाब से मिट्टी की खुदाई की गई थी। लेखपाल ने 2 बार रोका था, फिर भी खुदाई जारी रही।
4: जनपद में शासकीय कार्य में लापरवाही एवं कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन पर लेखपाल को किया गया प्रभाव से निलंबित। बता दें कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दौरान राजकीय कार्यों में लापरवाही तथा कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए तहसील तरबगंज के लेखपाल श्री संदीप कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तहसीलदार तरबगंज की जांच आख्या के आधार पर की गई है। जांच के अनुसार संदीप कुमार यादव लेखपाल क्षेत्र दौलतपुर परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज की ड्यूटी राजस्व ग्राम दुर्जनपुर में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर में लगाई गई थी। अभियान के दौरान पंचायत विभाग के कर्मचारी द्वारा दूरभाष के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री के अद्यतन प्रगति संबंधी सूचना मांगी गई, लेकिन संबंधित लेखपाल ने अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका।
5: मथुरा चौबे गांव में जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। बता दें कि लक्ष्मणपुर जाट की ग्राम सभा मथुरा चौबे गांव में हर बरसात में सड़कों पर जलभराव हो जाता है और इससे ग्रामीणों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। इससे स्कूली बच्चों को आने जाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कई बार जलभराव के कारण दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन जल निकासी का कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं की गई। उनका कहना है कि अगर नाली बना दी जाए तो समस्या खत्म हो सकती है।
4: जनपद गोंडा में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जनपद स्तरीय बैठक चौधरी चरण सिंह ऑफिसर्स फील्ड हॉस्टल सभागार में प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन विस्तार, शिक्षकों की लंबी समस्याओं और आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले 30 दिनों में जनपद के सभी 16 ब्लॉक और नगर क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाकर ही शिक्षकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान कराया जा सकता है। जिला मंत्री उमाशंकर सिंह, कोषा अध्यक्ष अखिलेश शुक्ल आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे।
5: इटिया थोक में नहर कटने से स्कूल जलमग्न, पढ़ाई हुई प्रभावित। बता दें कि इटिया थोक के महनौन के पास नहर अचानक से कट गई। उच्च प्राथमिक विद्यालय में पानी भी भर गया। तेज बहाव के कारण स्कूल परिसर जलमग्न हो गया। शिक्षकों को छात्रों को छुट्टी देनी पड़ी। सूचना पर नहर विभाग ने जेसीबी भेजी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी काम नहीं आ सका। करीब 15 फुट की कटान से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों में बाढ़ की दहशत फैली हुई है। प्रधान पति राम सिंह ने कहा है कि पहले ही सूचना दी थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीर रूप से नहीं लिया, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी निदान नहीं किया गया है।
4: गोंडा में सर्वाइकल गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन सभागार में वामा सारथी की तरफ से HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं का समय पर निःशुल्क टीकाकरण कराने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है। समय पर टीकाकरण कराने से इस गंभीर बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं अभिभावक से अपील किया है कि पात्र बालिकाओं को निःशुल्क टीकाकरण अवश्य कराएं और समाज में भी इसके प्रति जागरूकता फैलाएं। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। इंद्रेश को दे इजाजत, नमस्कार।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

हाँ, नाम लिख लिया। बिन पूछे ये कौन?

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: नमस्कार, सांझे विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी फेवरेट RJ मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सांझे विरासत के माध्यम से हम भारत और भारतीय संस्कृति की लुप्त होती कलाओं को सहेजने का एक प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि आपकी भागीदारी इसमें जरूर होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कला का जो धीरे धीरे धीरे धीरे नई पीढ़ी के आने की वजह से लुप्त होती जा रही है, और उस कला का नाम है कठपुतली कला, यानी The Art of Puppetry। कठपुतली कला किसी परिचय का मोहताज नहीं है, यह हमारे बचपन की यादों का हिस्सा है। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे छोटे थे तो कैसे TV के सामने बैठ जाते थे बस ये देखने के लिए कि वो धागों से किस तरह से कठपुतलियाँ धीरे धीरे बात करती हैं, किस तरह से एक्शंस करती हैं, और ये देखकर बहुत अच्छा लगता था। परंतु अब इधर कई दशकों से हमने इसे भुला सा दिया है। हम सिनेमा और TV के चकाचौंध में इतने ज्यादा मोहित हो चुके हैं कि अब हम कठपुतली की कला को भूल चुके हैं। कठपुतली का खेल अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेलों में से एक है, जो समस्त सभ्य संसार में प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक व्यापक रूप में प्रचलित रहा है। ये खेल गुड़ियों अथवा पुतलियों द्वारा खेला जाता है। गुड़ियों को नर मादा रूपों द्वारा जीवन की अनेक प्रसंगों की विभिन्न विधियों से इसमें अभिव्यक्त की जाती है, और जीवन को नाटकीय विधि से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। कठपुतलियाँ या तो लकड़ी की होती हैं, या प्लास्टर ऑफ पेरिस की, या कागज की लुगदी की बनी होती हैं। उनके शरीर के भाग इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनसे बंधी डोर खींचने पर वे अलग अलग तरीके से हिल सके और एक्शन दिखा सके। एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं जो कि कहते हैं, आई कुड नेवर बी ऑन स्टेज ऑन माई ओन, बट पपेट्स कैन से थिंग्स दैट ह्यूमंस कांट से। और बचपन से मुझे भी यही लगता था कि अभिव्यक्ति का एक बेहद मनोरंजक और सशक्त माध्यम है ये कठपुतलियाँ। कठपुतली का इतिहास बहुत पुराना है। ईसा पूर्व 4th शताब्दी में पाणिनी की अष्टाध्यायी में नट सूत्र में पुतला नाटक का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग कठपुतली के जन्म को लेकर पौराणिक आख्यान का जिक्र भी करते हैं कि शिव जी ने काठ की मूर्ति में प्रवेश कर पार्वती का मन बहलाकर इस कला की शुरुआत की थी। कहानी सिंहासन 32 में भी विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों का उल्लेख करती है। सतवर्धन काल में भारत से पूर्वी एशिया के देशों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, जावा, श्रीलंका आदि में इसका विस्तार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज ये कला चीन, रूस, रोमानिया, इंग्लैंड, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका, जापान आदि अनेक देशों में पहुंच चुकी है। इन देशों में इस सुविधा का समसामयिक प्रयोग कर इसे बहुयामी रूप प्रदान किया गया है। वहाँ कठपुतली मनोरंजन के अलावा शिक्षा, विज्ञापन आदि अनेक क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है। कठपुतली नृत्य को लोक नाट्य की एक शैली माना गया है। कठपुतली अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल है, जिसमें लकड़ी, धागे, प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की गुड़ियों द्वारा जीवन के प्रसंगों की अभिव्यक्ति और उसका मंचन किया जाता है। कठपुतली शब्द कहाँ से आया, आप ये सोच रहे होंगे। कठपुतली शब्द लैटिन शब्द प्यूपा से लिया गया है, जिसका अर्थ है गुड़िया। हालांकि भारत को कठपुतलियों का घर कहा जाता है, फिर भी कला के इस क्षेत्र में इसकी असीमित संभावनाओं का एहसास होना अभी बाकी है। तमिल क्लासिक सिलप्पाधिकारम में कठपुतली की कला का सबसे पहला संदर्भ हमें मिलता है, जो पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि कठपुतली का जन्म ईसा से 500 साल पहले भारत में हुआ था, और इसने भारत में महत्वपूर्ण पारंपरिक महत्व प्राप्त कर लिया। ईसा पूर्व 4th शताब्दी में पाणिनी के अष्टाध्यायी में नट सूत्र में पुतला नामक नायक का उल्लेख मिलता है। पुतला कला यानी कि कठपुतली की प्राचीनता के संबंध में तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम जो कि 2 BC में लिखा गया था उसमें भी इसकी जानकारी हमें मिलती है। चर्चित कथा सिंहासन 32 में विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों का उल्लेख भी मिलता है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को अपनी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रेरित करने में कठपुतली कला की सफलता बहुत ही ज्यादा माननीय है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कठपुतली कला परंपरा जो है वो हजारों वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इसका संदर्भ कई लोक कथा गाथा और कभी कभी लोक गीतों में भी मिलता है। भारत में लगभग सभी प्रकार की कठपुतलियाँ पाई जाती हैं। कठपुतली कला का सदियों से पारंपरिक मनोरंजन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पारंपरिक रंगमंच की तरह कठपुतली रंगमंच के विषय ज्यादातर महाकाव्य और पुरानी कहानियों पर आधारित होते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की कठपुतलियों की अपनी अपनी पहचान है। चित्रकला और मूर्तिकला की क्षेत्रीय शैलियाँ भी उनमें परिलक्षित होती हैं। कठपुतली कला कई कलाओं का मिश्रण है, यथा लेखन, नाट्यकला, चित्रकला, वेशभूषा, मूर्तिकला, काष्ठकला, वस्त्र निर्माण कला, रूप सज्जा, संगीत, नृत्य आदि। पहले अमर सिंह राठौर, पृथ्वीराज, हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फरहाद की कथाएं ही कठपुतली खेल में दिखाई जाती थी, लेकिन अब सामाजिक विषयों के साथ साथ हास्य व्यंग तथा ज्ञान संबंधी और भी अनेक अन्य मनोरंजक कार्यक्रम भी इसमें दिखाए जाने लगे हैं। कठपुतली शो के लिए विषयों के चयन का आधार ज्यादातर महाकाव्य और पुराने लोक कथाएं ही माना जाता है। पौराणिक कहानियाँ, स्थानीय मिथक आमतौर पर भारत में पारंपरिक कठपुतली थिएटर की सामग्री बनते हैं। कठपुतली शो एक साथ काम करने वाले कई कलाकारों के लिए एक अच्छा रचनात्मक प्रयास है। कठपुतलियों की बात करें तो कोई देश इनके जादू से अछूता नहीं है। इंडोनेशिया और श्रीलंका की छाया कठपुतलियाँ जिनमें रामायण की गाथा दिखाई जाती है। कठपुतलियों का इतिहास बहुत ज्यादा ही पुराना है। ये 4000 साल पहले ही अस्तित्व में आ गई थी। मिस्र में इसे ईसा पूर्व 2000 साल में अपने होने का सबूत देती है। तार से नाचने वाली ये कठपुतलियाँ मिट्टी और हाथी के दांत से बनाई जाती थी। ये मिस्र के पिरामिड में आज भी मिलती हैं। इन्हें इजिप्ट के धार्मिक नाटकों में इस्तेमाल किया जाता है। पुरानी ग्रीस सभ्यता में भी इसका लिखित इतिहास है। ये कठपुतलियाँ हेरोडोटस के समय में मिलती थी। अफ्रीका के सहारा में आदिवासी कबीलों में कठपुतलियों की परंपरा अभी भी मिलती है। भारत में भी महाभारत काल में कठपुतलियों का जिक्र मिलता है। अफगानिस्तान में जो कठपुतली कला है उसे बजबाज कहते हैं। तुर्की में भी कठपुतली कला का एक अपना नया आयाम है। अब अगर हम यूरोप की बात करें तो रूसी फ्रेंच कठपुतलियों का अपना एक अलग सा संसार है। आजकल तो गोद में बैठकर बोलने वाली कठपुतलियाँ बहुत चर्चित हैं, जिनमें बातचीत के दौरान आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कलाकार कब अपनी आवाज में सवाल करता है और कब मुंह बंद किए किए कठपुतली की आवाज में जवाब भी दे रहा होता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि कठपुतलियाँ सारे संसार भर में प्रचलित हैं। इनका जादू कभी नहीं टूटने वाला है। कठपुतलियों के निर्माण तथा उनके माध्यम से विचारों के जो संप्रेषण में आनंद मिलता है वो बच्चों के व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास में बहुत सहायक होता है। भारत में सभी प्रकार की कठपुतलियाँ पाई जाती हैं, यथा धागा पुतली, छाया पुतली, छड़ पुतली, दास्ताना पुतली। भारत में सभी प्रकार की पुतलियाँ पाई जाती हैं, यथा धागा पुतली, छाया पुतली, छड़ पुतली, दस्ताना पुतली इत्यादि। कठपुतलियों का इस्तेमाल संप्रेषण के लिए काफी पहले से हो रहा है। हमारे देश में तो ये कला लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। पहले नाटकों को प्रस्तुत करने का एकमात्र माध्यम ये कठपुतलियाँ ही थी। आज तो हमारे पास कई आधुनिक माध्यम हो गए हैं, जैसे रेडियो, टीवी, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं वाली रंगशालाएं, मंच, इंटरनेट, ये सभी कुछ हैं। लेकिन पहले या तो लोक परंपराओं की नाट्य शैलियाँ थी या फिर ये कठपुतलियाँ। भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब लोक कलाओं में झलकता है। इन्हीं लोक कलाओं में कठपुतली कला भी शामिल है। ये देश की सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ प्रचार प्रसार का सशक्त भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब लोक कलाओं में झलकता है। इन्हीं लोक कलाओं में कठपुतली कला भी शामिल है। ये देश की सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ प्रचार प्रसार का एक सशक्त माध्यम भी है। लेकिन आधुनिक सभ्यता के चलते मनोरंजन के नित नए साधन आने से सदियों पुरानी ये कला अब धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है। शायद आप हम में से जो नई पीढ़ी के हैं उन्हें कठपुतली कला के बारे में जरा भी पता ना हो। बस हम इंटरनेट तक ही सीमित रहते हैं। कठपुतली नाच की हर किस्म में पार्श्व से उस इलाके का संगीत बजता है जहाँ का वो नाच होता है। कठपुतली नचाने वाला गीत गाता है और संवाद बोलता है। जाहिर है इन्हें न केवल हस्त कौशल दिखाना पड़ता है बल्कि अच्छा गायक व संवाद अदाकार भी बनना पड़ता है। भारत में कठपुतली नचाने की परंपरा बेहद पुरानी रही है। धागे से दस्ताने द्वारा छाया वाली कठपुतलियाँ काफी प्रसिद्ध हैं और परंपरागत कठपुतली नर्तक स्थान स्थान जाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। इनके विषय भी ऐतिहासिक प्रेम प्रसंग जनश्रुति के लिए जाने जाते हैं। इन कठपुतलियों से उस स्थान की चित्रकला, वस्तुकला, वेशभूषा और अलंकारी कलाओं का पता चलता है जहाँ से वे आती हैं। रीति रिवाजों पर आधारित कठपुतली के प्रदर्शन में भी काफी बदलाव आ गया है। अब यह खेल सड़कों गली कूचों में ना होकर फ्लड लाइट्स की चकाचौंध में बड़े बड़े मंच पर होने लगा है। राजस्थान की कठपुतली काफी प्रसिद्ध है। यहाँ धागे से बांधकर कठपुतली नचाई जाती है। लकड़ी और कपड़े से बनी ये मध्यकालीन राजस्थानी पोशाक पहने इन कठपुतलियों द्वारा इतिहास के प्रेम प्रसंग दर्शाए जाते हैं। अमर सिंह राठौर का चरित्र काफी लोकप्रिय है क्योंकि इसमें युद्ध और नृत्य दिखाने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। इसके साथ एक सीटी जिसे बोली कहते हैं, जिसे तेज धुन बजाई जाती है, बहुत ही ज्यादा प्रयोग की जाती है। कठपुतली की सबसे खास बात यह है कि इसमें कई कलाओं का सम्मिश्रण है। इसमें लेखन कला, नाट्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, काष्ठ कला, वस्त्र निर्माण, रूप सज्जा, संगीत, नृत्य जैसी कई कलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए संभवतः बेजान होने के बाद भी ये कठपुतलियाँ जिस समय अपनी पूरी साज सज्जा के साथ मंच पर उपस्थित होती हैं, तो दर्शक पूरी तरह उनके साथ बंध जाता है, मनीषा कुलश्रेष्ठ और उनके साथ हो लेता है। हिंदी की लोकप्रिय कथाकार है और बहुत ही ज्यादा उन्हें दिलचस्पी है कठपुतलियों में। वो क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। वो कहती हैं कि गांव की वे पगडंडियां ही क्या जहां से कठपुतली वाला ना गुजरा हो, जिन पर से कठपुतली का खेल देखने बच्चे ना दौड़े हो। बच्चे ही क्यों, घर का काम निपटा गृहणियां खेत ज्वार से निकल कर आदमी ना चले हो देखने कठपुतलियों का नाच। गाँव के बड़े बूढ़े भी पोपली हंसी हंसते हुए जब सारे कठपुतली राजा एक दूसरे पर धमाधम गिरते हैं, वो मेला ही क्या जिसमें कठपुतली वाला ना आया हो। किसे नहीं लुभाता ये सब। आप सब की तरह कठपुतलियों से मेरा भी खास लगाव है। ये लगाव बचपन का है, बचपन वाला कठपुतलियों वाला लगाव। काठ की ये पुतलियाँ होती ही ऐसी हैं कि बचपन के मन पर जो धागा बांधती हैं, वो बड़े होने तक नहीं छूटता। मनीषा कहती है कि उनका जन्म राजस्थान में हुआ जहाँ की कठपुतली कला ने विश्व में अपनी जगह बनाई है। राजस्थान के कठपुतली वालों का सिर्फ खेल ही नहीं लोकप्रिय है, ये कठपुतलियाँ सजावट के लिए भी संसार भर में जानी जाती हैं। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। तभी तो ये गीत कठपुतलियों के खेल में खूब प्रचलित है क्योंकि राजस्थानी कठपुतलियों में मालन का खास रोल होता है। सर पर टोकरा लिए मटक कर नाचती हस्ती खेलती मालन जब चूचियों के साथ मंच पर आती है, सब दिल थाम लेते हैं। मंच पर उपस्थित कठपुतली राजाओं में तलवारें चल जाती हैं। नहीं, मुझे याद है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में कठपुतली कला के संरक्षक पद्मश्री देवीलाल सामर जी आए थे, जिन्होंने उदयपुर के लोक कला मंडल का निर्माण किया था। उनके तत्वाधान में हमारे स्कूल सहित जिले के कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में कठपुतली कला का शिविर लगा था। मैं उस शिविर को लेकर इतनी उत्साहित थी कि उस वर्ष हमारे स्कूल से एक ग्रुप जो कठपुतली कला के प्रशिक्षण के लिए लोक कला मंडल भेजा गया था, उसमें मैं भी थी। वह प्रशिक्षण मुझे कठपुतलियों के और करीब ले आया। वहाँ मैंने पेपर मैशे और कपड़े से ग्लव्स पॉपेट यानी कि दस्तानों की तरह पहने जाने वाली कठपुतलियाँ बनाना सीखा। गत्तों से इन हस्त कठपुतलियों का खेल मंच पर भी बनाना सीखा। सबसे मजेदार मुझे लगी उसी शिविर के दौरान अपनी कठपुतलियों के लिए 15 मिनट की स्क्रिप्ट लिखना। मेरी कल्पना को तभी पंख लग गए, एक कहानीकार होने की नींव तभी पड़ी। शायद इसीलिए मेरी प्रतिनिधि कहानी का शीर्षक भी कठपुतलियां है। आप कभी उदयपुर जाएं तो मेरा आपसे आग्रह है कि लोक कला मंडल जरूर जाएं। पहले तो वहां राजस्थानी कठपुतलियों का खेल और उसके साथ रूसी कठपुतलियों का सर्कस भी हुआ करता था, मगर वहाँ आपको कठपुतली कला के दर्शक जरूर मिलने वाले हैं और साथ ही साथ कठपुतली से आपका दीदार भी होने वाला है। वह सर्कस देखकर मैंने जाना कि रूसी कठपुतली कला हमारी भारतीय कठपुतली कला से कितना आगे है। वे पूरा का पूरा एक सर्कस शो कठपुतलियों के जरिए ही दिखाते थे। शेर, रिंग मास्टर, ट्रेपीज आर्टिस्ट, झूले, हाथी, जोकर, वो मेरे बचपन की यादों का दीवार आज भी हूबहू वैसे ही है। तो मनीषा जी के अल्फाज में हमने सुना ये एक अनोखी सी, अतरंगी सी मनोरंजक कहानी कठपुतलियों की। अब आइए जानते हैं कि कठपुतलियाँ ही जो आप सुनते हैं ना, कठपुतली कला ये कौन है, कहाँ से आई है, और साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कठपुतलियों के कितने रूप होते हैं। भारत में लगभग सभी प्रकार की पुतलियाँ पाई जाती हैं तथा पारंपरिक मनोरंजन में सदियों से कठपुतली कला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पारंपरिक नाटक की भांति ही कठपुतली नाट्य महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं और देश के विभिन्न प्रांत की पुतलियों की अपनी एक खास पहचान होती है। उनमें चित्रकला और मूर्तिकला की क्षेत्रीय शैली झलकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है ये। अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यक्रम काफी सहायक साबित हुए हैं, अगर हम माध्यम लें कठपुतली कलाओं का। साथ ही इन कार्यक्रमों का लक्ष्य छात्रों में शब्द, आकार, रंग और गति के सौंदर्य के प्रति संवेदना जागृत करना भी होता है। पुतलियों के निर्माण तथा उनके माध्यम से संप्रेषण करने में जो सौंदर्य आनंद मिलता है वो बच्चों के व्यक्तित्व के चौमुखी विकास में बेहद सहायक माना जाता है। भारत में पारंपरिक कठपुतली नाटक की कथा वस्तु पौराणिक साहित्य और लोक कथाओं से ली जाती है तथा बदले में उनमें चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और नाटक आदि को रचनात्मक अनुभूतियों का समावेश होता रहा है। कठपुतली कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में एक साथ अनेक लोगों का सृजनात्मक व रचनात्मक प्रयास जरूर लगता है। आज के आधुनिक समय में सारे विश्व के शिक्षाविदों ने संचार माध्यम रूप में कठपुतलियों की उपयोगिता के महत्व को अनुभव किया है। भारत में आज अनेक व्यक्ति तथा संस्थाएं शैक्षणिक संकल्पनाओं के संप्रेषण में पुतलियों के इस्तेमाल करने में छात्रों और अध्यापकों को सम्मिलित कर रही हैं। भारत में कई सारे रूप की कठपुतलियाँ प्रचलन में रही हैं। धागा पुतली। भारत में धागा पुतलियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन तो है ही, साथ ही समृद्ध भी। अनेक जोड़ युक्त अंग तथा धागों द्वारा संचालन इन्हें अत्यंत लचीला पल प्रदान करता है, जिस कारण ये पुतलियाँ काफी लचीली होती हैं। राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे प्रांत हैं जहाँ ये कठपुतली कला पल्लवित हुई। कठपुतली राजस्थान की परंपरागत पुतलियों की कठपुतली काट के एक टुकड़े से तराश कर बनाई जाती है। ये पुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे में बड़ी गुड़ियों के समान लगती हैं। उनकी वेशभूषा और मुकुट मध्यकालीन राजस्थानी शैली में होते हैं जो आज तक बेहद प्रचलित है। अत्यंत नाटकीय क्षेत्रीय संगीत कठपुतली नृत्य की संगत करता है। इनके अंडाकार मुख, मछलियों जैसी बड़ी बड़ी आँखें, कमानी जैसी भौं और बड़े बड़े होंठ आदि कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। इसके साथ ही ये पुतलियाँ

अवधि होते हैं। परंपरागत जात्रा नाटक के अभिनेताओं की भांति कुंडेई की वेशभूषा होती है। क्षेत्र के प्रसिद्ध धुनों से ही संगीत लिया जाता है और कभी कभी उड़ीसी नृत्य के संगीत का गहरा प्रभाव हमें दिखता है। अब आती है कर्नाटक की धागा पुतली, जिसे कहा जाता है गोम्बेयट्टा। गोम्बेयट्टा का संबंध कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान से है, इसी कारण ये उससे काफी साम्यता रखता है। गोम्बेयट्टा पुतलियों की आकृतियां अत्यंत सुसज्जित होती हैं और पैर, कंधे, कोहनी, कोले और घुटनों में जोड़ होते हैं। इनका संचालन फ्रेम से बंधे हुए 5 से 7 धागों से किया जाता है। 2-3 संचालकों को एक साथ संचालन द्वारा पुतली की कुछ जटिल क्रियाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है। गोम्बेयट्टा में यक्षगान के प्रसंग को प्रदर्शित किया जाता है। साथ में बजने वाला संगीत नाटकीय होने के साथ साथ लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत का सुंदर समन्वित रूप होता है। अब आती है तमिलनाडु की बोम्मालट्टा। छड़ और धागा पुतली की तकनीक तमिलनाडु की बोम्मालट्टा पुतली में एक साथ देखने को मिलती है। ये लकड़ी से बनी होती है और संचालन करने के धागे एक लोहे की रिंग से बंधे रहते हैं, जैसे कि पुतली संचालक मुकुट की तरह अपने सिर पर धारण किए रहते हैं। कुछ पुतलियों की हथेली और हाथों में जोड़ होते हैं, जिनका संचालन छड़ से किया जाता है। बोम्मालट्टा पुतली आकार में बड़ी और भारी होती है और भारतीय परंपरागत कठपुतलियों में सबसे सुस्पष्ट होती है। एक पुतली लगभग 4.5 फीट ऊंची होती है तथा उसका वजन 10 किलो के आसपास करीब करीब माना जाता है। इस नाट्य विधा की प्रारंभिक कार्य विनायक पूजा, कोमली, अमनाट्टम तथा पुसेक नाट्टम आदि 4 भागों में विभक्त रहते हैं। भारत में अनेक प्रकार की छाया पुतलियों का प्रचलन है और विभिन्न प्रांतों में उसकी अनेक शैलियां विद्यमान हैं। छाया पुतलियां चपटी होती हैं, अधिकांशतः वे चमड़े से बनाई जाती हैं। इन्हें पारभासी बनाने के लिए संशोधित किया जाता है, पर्दे को पीछे से प्रदीप्त किया जाता है और पुतली का संचालन प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच से किया जाता है। दर्शक पर्दे के दूसरी तरफ से छायाकृतियों को देखते हैं। ये छायाकृतियां रंगीन भी हो सकती हैं। छाया पुतली की ये परंपरा उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में काफी प्रचलित है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का तोलो बोम्मालट्टा। आंध्र प्रदेश की छाया नाटक को तोलो बोम्मालट्टा कहते हैं तथा इनकी परंपरा अत्यंत समृद्ध है। पुतलियां आकृति में बड़ी होती हैं और उनकी कमर, गर्दन, कंधा और घुटनों में जोड़ होते हैं। पुतलियां दोनों तरफ से रंगी जाती हैं, जिससे पर्दे पर रंगीन छाया पड़ती है। पुतली नाटकों का संगीत मुख्यतः इस क्षेत्र का शास्त्रीय संगीत होता है तथा उनकी कथाएं रामायण, महाभारत और पुराणों की होती हैं। उड़ीसा की रावण छाया सभी में अत्यंत नाटकीय होती है। पुतलियां इकहरी होती हैं तथा इनमें कोई संधि नहीं होती। साथ ही चूंकि वे रंगीन भी नहीं होती, इस कारण पर्दे पर उनकी छाया श्वेत श्याम होती है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट। पुतलियों में जोड़ ना होने के कारण उनका संचालन दक्षता से करना पड़ता है। ये पुतलियां मृग चर्म की बनी होती हैं तथा इनका रूप अत्यंत नाटकीय होता है। मानव एवं पशु चरित्रों के साथ साथ वृक्ष, पर्वत तथा रथ आदि भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। यद्यपि रावण छाया पुतलियां अपने आकार में 2 फीट बड़ी नहीं होती और उनके घुटनों में भी जोड़ युक्त नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी छाया एकदम लयात्मक और संवेदनशील दिखती है। अब आता है छाया पुतली के बाद दूसरा रूप कठपुतलियों का, जिन्हें हम कहते हैं छड़ पुतली। छड़ पुतली वैसे तो दस्ताना पुतली का अगला चरण है, लेकिन यह उससे काफी बड़ी होती है तथा नीचे स्थित छड़ों पर आधारित रहती है। उसी से इसे संचालित किया जाता है। पुतली कला का ये रूप आज पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल की छड़ पुतली कला परंपरा को पुतल नाच के नाम से जाना जाता है। वे काष्ठ से बनाई जाती हैं और क्षेत्र विशेष के विभिन्न कला शैलियों का अनुसरण किया जाता है। संचालन की विधि रोचक होने के साथ साथ अत्यंत रंगमंचीय होती है। संचालक की कमर से बांस की टोपी बंधी रहती है तथा उस पर पुतलियां उससे जोड़ी जाती हैं। छड़ से आधारित होते हुए प्रत्येक पुतली का संचालक आदमकद पर्दे के पीछे खड़ा रहकर स्वयं हलचल और नृत्य करता है, जिससे उसके क्रियाकलाप पुतलियों में हस्तांतरित होते रहते हैं। इनके साथ ही संचालक गीत गाता हुआ गद्यात्मक संवादों को भी बोलता रहता है। मंच के साथ बैठे हुए 3-4 संगीतकार ढोलक, हारमोनियम तथा झांझ बजाते हुए संगीत करते हैं। लोक नाट्य जात्रा से ये सब काफी साम्यता रखता है।
उड़ीसा की छड़पुतलियां आकार में छोटी होती।

होती हैं, लगभग 12 से 18 इंच लंबी। इनमें भी जोड़ 2-3 ही होते हैं, लेकिन उनके साथ छड़ों के बजाय धागों से बंधे होते हैं। इस प्रकार वहाँ पर छड़ पुतलियाँ धागा तथा छड़ पुतलियों का समन्वित रूप होती हैं। पुतली संचालक पर्दे के पीछे जमीन पर बैठकर उनका संचालन करते हैं। गद्यात्मक संवाद कभी कभार ही इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर संवाद किए गए होते हैं। संगीत लोक धुनों तथा शास्त्रीय उड़ीसी धुनों का समन्वित रूप होता है। संगीत का आरंभ स्तुति से होता है तथा बाद में नाटक प्रस्तुत किया जाता है। पश्चिमी बंगाल तथा आंध्र प्रदेश की पुतलियों की तुलना में उड़ीसा की पुतलियां काफी छोटी होती हैं तथा पुतली नाटकों में गद्यात्मक संवाद जरा भी नहीं होते। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में आदमकद पुतलियां होती हैं, जैसे कि जापान की बनराको, लेकिन पुतलियों का ये रूप अब विलुप्त हो गया है। पश्चिम बंगाल की शेष प्रचलित पुतलियां 3-4 फुट लंबी होती हैं तथा वहां के लोक नाटक यात्रा के पात्रों की भांति उनके भी परिधान होते हैं। प्रायः इनमें 3 जोड़े होते हैं। मुख्य छड़ पर आधारित मस्तक गर्दन से जुड़ा होता है तथा 2 छड़ों से जुड़े हाथ कंधे से मिले होते हैं। अब आती है बिहार की यमपुरी। बिहार की पारंपरिक छड़ पुतलियों को यमपुरी के नाम से जाना जाता है। ये पुतलियां काष्ठ की बनी होती हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की छड़ पुतलियों के समान ये पुतलियां एक टुकड़े में होती हैं और उनमें कई जोड़ होता है। चूंकि इनमें कोई जोड़ नहीं होता, इसलिए इन्हें चलाना अन्य छड़ पुतलियों से भिन्न होता है, अतः इन्हें चलाने में अति निपुणता की आवश्यकता होती है। अब आती है छड़ और छाया कठपुतली के बाद दस्ताना कठपुतली। दस्ताना पुतली को भुजा कर या हथेली पुतली भी कहा जाता है। इन पुतलियों का मस्तक पेपर मैशे कपड़े या लकड़ी का बना होता है तथा गर्दन के नीचे से दोनों हाथ बाहर निकलते हैं। शेष शरीर के नाम पर केवल एक लहराता घाघरा होता है। ये पुतलियां वैसे तो निर्जीव गुड़ियों जैसी होती हैं, तब पर निपुण संचालक के हाथों में ही पहुंचते अनेक गतिविधियों को सक्षमता से प्रस्तुत करती रहती हैं। इनके परिचालन की विधि अत्यंत सरल है। हाथों से गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है। पहली उंगली मस्तक में जाती है और मध्यमा और अंगूठा पुतली के दोनों भुजाओं में। इस प्रकार अंगूठे और 2 उंगलियों की सहायता से दस्ताना उंगली सजीव हो उठती है। भारत में दस्ताना पुतली की परंपरा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल में बेहद लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश के दस्ताना पुतली नाटक सामाजिक विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं, तो उड़ीसा में राधा कृष्ण की कहानियों पर ये नाटक आधारित होते हैं। उड़ीसा में संचालक एक हाथ में ढोलक बजाता है और दूसरे हाथ से पुतले का संचालन करता है। संवाद बोलना, पुतले का संचालन और ढोलक की थाप सुंदर रूप से क्रमानुसार होता रहता है और एक नाटकीय वातावरण की सृष्टि होती है जो बेहद मनोरंजक दिखता है। इन सब के अलावा अब आती है केरल में पारंपरिक पुतली नाटकों को पावाकुथु कहा जाता है। इसे प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में वहां के प्रसिद्ध शास्त्रीय नाटक कथकली की पुतली नाटकों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण माना जाता है। पावाकुथु में पुतली की लंबाई 1-2 फीट के बीच होती है। मस्तक तथा दोनों हाथ लकड़ी से बनाकर एक मोटे कपड़े से जोड़े जाते हैं, फिर एक छोटे से थैले के रूप में सिए जाते हैं। पुतले के चेहरे के अंकरण में रंग, चमकीले टीन के टुकड़े तथा मोर पंखों का उपयोग किया जाता है। परिचालक उस थैले में अपनी हाथ डालकर पुतली के मस्तक और दोनों भुजाओं का संचालन करता है। इस प्रस्तुति के समय चेंडा, चेंगिल, इलाथलम वाद्य यंत्रों तथा शंख का उपयोग किया जाता है। केरल के ये पुतली नाटक रामायण तथा महाभारत कथाओं पर आधारित होते हैं। हालांकि कठपुतली कला किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये हमारी बचपन की यादों का हिस्सा है, ऐसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था। और इसी प्रयास को संजोने के लिए, यानी कठपुतली की कला को सहेजने की एक छोटी सी पहल के रूप में, हम प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाते हैं विश्व कठपुतली दिवस। विश्व कठपुतली दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसकी कल्पना ईरान के प्रसिद्ध पपेटियर जावद जोल्फा घरी ने सन 2000 में कांग्रेस यूनियन इंटरनेशनल डे ला मैरियनेट मैग्डेबर्ग में रखी थी। 2 वर्ष इस पर विचार विमर्श हुआ और पहली बार 21 मार्च 2003 को विश्व कठपुतली दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 21 मार्च को
हम कठपुतली दिवस के रूप में मनाते हैं। कठपुतली का खेल अत्यंत प्राचीन नाटकीय खेल है, ये हम सभी जानते हैं। ये समस्त विश्व में व्यापक रूप से प्रचलित रहा है। ये खेल गुड़ियों और पुतलियों द्वारा खेला जाता है। हड़प्पा कालीन खुदाई में भी मिट्टी से निर्मित गुड़िया मिली थी, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी प्राचीन लोक कला रही है। हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता, देशभक्ति और अन्य पौराणिक कथाओं के साथ साथ राष्ट्रीय नायकों के जीवन चरित्र को हम कठपुतलियों के माध्यम से सभी तक पहुंचा पाते हैं। अब ये भारत में सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि जन जन तक पहुंच रही है। हालांकि ये कला धीरे धीरे लुप्त होती जरूर जा रही है, मगर हम आज नई पीढ़ी के लोग मिलकर इसको सहेज सकते हैं। इंटरनेट पर कई सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं कठपुतली कला से संबंधित, और कठपुतली को बनाने के लिए भी बहुत सारे स्कूल्स और फाइन आर्ट्स के कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। ये सब महज एक प्रयास है, एक पहल है भारत की सांस्कृतिक कला को लुप्त होने से बचाने का। तो हम सब की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। इसी के साथ आपके आरजे मोनिका आपसे इजाजत चाहती है। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, और भारत की विरासत को बचाने में अपना सक्षम योगदान दें।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

जिंदगी की राहों में नई सुबह के इंतज़ार में जो लोग बैठे हैं भाई, वो शाम के बारे में भी सोच लिया करें, क्योंकि शाम के बाद ही तो सुबह का आगाज़ किया जाता है, शाम के बाद ही सुबह की तैयारी की जाती है और शाम की प्लानिंग भी कहीं ना कहीं सुबह काम आती है। तो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आप सभी का स्वागत है आपकी वाली शाम गोंडा मैसेज मसाला वाली शाम में। आरजे बीना के साथ आप लाइव हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन 89.6 एफएम पर, यह है गोंडा शहर की धड़कन। तो चलिए, धड़कने तो इसे ही जो बरकरार रहेंगी, लेकिन आज आते एक मूवी के बारे में पहले ही मैं बता देती हूँ कि जैसे आज की लेटेस्ट मूवीज है उनको तो रिव्यू करूँगी, लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी जिसने मुझे कर दिया वाओ वाओ वाओ। यानी कि फिल्म में कुछ ऐसा हो जाता है कि सारे लोग गाना गाने लगते हैं। जी हाँ, मतलब वो डायलॉग बोलने की बजाय डायलॉग को सुरीले तरीके से गा गा के बोलते हैं। जैसे ये शाम हो गई है आप आ जाइए, हम लाइव हो चुके हैं, कुछ देर में सुनेंगे नई मूवीज का रिव्यू, कुछ इस करे मतलब इस तरीके से। मतलब ये सुनने के बाद तो मैंने कहा यार ये फिल्म तो लोगों को बतानी चाहिए, तो मैं बताऊंगी। अगर आपको पता है कि आजकल में नहीं, काफ़ी दिन पहले ही एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसमें ये सारे डायलॉग सुरीले तरीके से बोले जा रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या है, वो गा रहे हैं एक्चुअली। तो आप मुझे बताइएगा, तब तक के लिए म्यूजिकल ब्रेक एंजॉय करिए और आज की नई सुपर हिट मूवीज़ के बारे में बात करने के लिए तैयार रहिए। गुड इवनिंग सबलू सावंत मुंबई से, कैसे हैं सबलू जी? सोनिया तिवारी, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? अजय ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? सभी का स्वागत है और आज कुछ ही देर में हम लोग करेंगे बहुत सारी बात रिगार्डिंग योर फेवरेट मूवीज़, फेवरेट एक्ट्रेस एंड एक्टर्स एंड, और हम खेलेंगे कुछ गेम्स जिनको खेल के दिल कहेगा वाह क्या हो गया है।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

करा। सो लिसनर्स, जब भी हम लोग छोड़ के जाने का सोचते हैं, दिमाग में यही ख्याल आता है कि रेडियो के बिना तो जी नहीं पाएंगे। मैं तो यही सोचती हूँ कि लिसनर्स के बिना शाम कैसे बीतेगी, एंड इट शुड बी वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव विदाउट यू ऑल। सो वेलकम बैक धर्मेंद्र मोहन, कैसे हैं आप? और फिल्म की बात मैंने शुरू की थी कि एक ऐसी फिल्म जिसमें डायलॉग गा गा के कहे जाते हैं। अच्छा, एक गाना आपने सुना होगा, किस किस को सुनाऊं, कैसे कैसे मैं सुनाऊं, कौन सा गाना है, मुझे लिरिक्स याद करनी पड़ेगी।

हाय शर्मा। हाँ भाई अब याद आया, देखो आरजीबी ना को याद आ जाता है। और गाना कुछ ऐसे था कि हाय शर्माओ किस किस को सुनाऊं, कैसे कैसे मैं सुनाऊं सबको,

बताऊं, किस किस को बताऊं, कैसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। भाई पहला जो स्टैंजा था उसमें भाई मतलब इनडायरेक्टली वो जो लड़की होती है वो होती है उनकी ग्रुप की, मतलब जो विलेन होते हैं, और मदद करना चाहती हीरो की क्योंकि वो हीरो को थोड़ा बहुत पसंद करती है। एंड भाई पहले स्टैंजा में कैसे बताती, पहली निशानी जिसकी मैं हूँ दीवानी, रुत जैसे तूफानी उसकी जवानी है मस्तानी, और उसके आगे फीके हाय सबकी जवानियाँ हाय शर्म, कुर्ता है नीला पग रंग पगड़ी का पीला, रूप उसका कटीला ऐसा है वो छबीला, ऐसे करके मतलब पूरे गाने में बताती है। तो ये तो गाना एक था, लेकिन मूवी में कुछ ऐसा हो जाता है कि सारे डायलॉग्स जो हैं जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो गाह गाह के सुनाने लगते हैं। तो चलिए आज मैं आपको उस फिल्म के बारे में बता भी देती हूँ, आप लोग सोचेंगे ना कि आज जमीना ना सस्पेंस डालने में बिल्कुल पीछे नहीं रहती हैं। तो बिल्कुल मैं आपको उस मूवी के बारे में ज़रूर बताना चाहती हूँ जिसके बारे में मैं अभी पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ और आप लोग को मज़ा आएगा सुनने के बाद उस फिल्म के बारे में। एक साउथ की फिल्म है पर देखने लगेंगे आप तो आपको मज़ा आएगा। मैंने साउथ की दो मूवीज़ भी रिव्यू की क्योंकि मेरे बहुत सारे लिसनर्स ने मुझे ये कहा कि अर्जुबीना आप एक काम क्या करिए, आप थोड़ा सा हमें साउथ की मूवीज़ के बारे में बताया करिए क्योंकि हम लोग साउथ की मूवीज़ देखना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको एक मूवी जिसका मतलब नाम ही है सिंह गीतम, ठीक है। ये साउथ की मूवी है और बहुत अच्छी तेलुगु भाषा में रिकॉर्ड हुई है, फ़िलहाल हिंदी में भी अवेलेबल है। तो मैं आपको इस मूवी के बारे में पूरी जो कहानी है जो समीक्षा है जो रिव्यू है वो कर देती हूँ, क्या क्या चीज़ें खास हैं, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। सबसे पहले तो सिंह गीतम मूवी का नाम है जिसका नाम है संगीतमय फैंटेसी से बनी हुई फिल्म, एक अलग सा नाम है और एक साहित्यिक प्रयोग है, मतलब इतना तो कोई कैसे ही सोच सकता है। सोचने का मतलब ये कि इमेजिनेशन जैसी चीज़ें जो रियलिटी में तो हो ही नहीं सकती पर उनको सच करना फिल्म में, तो ये फिल्म की बात है खास। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो कहानी है वो कुबेरपुरम की है। कहानी में एक लड़का होता है प्रताप नाम का, ठीक है, जो हीरो मेनली, वो जेल से छूटकर कुबेरपुरम नामक गांव में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली मतलब वो शहर में रहता है तो उसको ये पता होता है कि मैं महागरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक टका नहीं है, एक पैसा नहीं है। लेकिन एक वकील उसको बताता है जाके कि भाई तेरी तो बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है कुबेरपुरम में, जा वहाँ पे जाके तू राज कर। तो वो जेल से छूटता है, वो सोचता है अरे यार मैं तो करोड़पति हो गया। फिर वो अपने गांव जाता है, वहाँ जाने के बाद वहाँ देखता है कि लोग सोने की खदानों में से सोना निकाल रहे होते हैं और वहाँ पे कुबेरनाथ की पूजा होती है, ठीक है। तो पूजा के समय मतलब एक लड़की होती है जो वहाँ के पेड़ों को बचाना चाहती है क्योंकि माइनिंग करने के लिए खुदाई करने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। वो पहले हरा भरा जंगल की तरह था इलाका, लेकिन अब उसको एकदम वो बना दिया गया होता है, मतलब खुदाई वगैरह करने के बाद वो जगह पूरी बंजर हो जाती है। एक पेड़ बचा होता है, एकमात्र पेड़ जो कि उस गाँव को पूरी ऑक्सीजन दे रहा होता है, लेकिन लोग सोने के लालच में उस पेड़ को भी काट देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुबेरनाथ जो वहाँ के देवता होते हैं उनका श्राप पड़ जाता है लोगों के ऊपर, वो लोग जिस भी चीज़ को छूते हैं वो सोने की हो जाती है, और फाइनली उन लोग के मुंह से सच निकलता है वो भी गाने के रूप में, तो फिलहाल उनको श्राप मिल जाता है। फिल्म जो है बहुत ही अच्छी है, इसमें कलाकार है अयान, अहिल्या बामरू, शालिनी कांडेपुड़ी और साथ में बहुत सारे हेल्पर्स भी हैं, और बहुत अच्छी मूवी है। एक मतलब ऐसे कॉमिक टाइप की लगती है मुझे, और अगर आपको कुछ देखने का मन है अच्छा तो आप मेरे हिसाब से इस मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिल्म मेकर ने ना सिर्फ फिल्म बनाई है बल्कि एक ऐसी फिल्म बना के हमारे सामने रख दी है जिसके बारे में हम सोचें तो हमारी ज़िंदगी एकदम एक नई दुनिया में चली जाएगी, ठीक है। तो इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखिए, मेरे तरफ से 10/10 इस फिल्म को मैं दूंगी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी ऐसी फिल्म तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको लगेगा कि कुछ बहुत अच्छा सा देख लिया, ठीक है। और हाल ही में यानी कि जून महीने में ये रिलीज़ भी हुई है, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने कुछ अच्छा नहीं देखा इस वीक तो आपके लिए ये फिल्म बिल्कुल तैयार है, एकदम तड़कती भड़कती फिल्म है।
ठीक है, अब मैं अगली फिल्म के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन थोड़ी ही देर में हैंगओवर कराने के बाद आप लोग को। फिलहाल हैंगओवर करेंगे, एक और फिल्म के बारे में बात कर ले फिर ही करेंगे, ठीक है। तो फिल्म का नाम मैं बताना चाहूँगी, जो कि आपकी यानी कि आज की तारीख कितनी है, 24 जुलाई, कौन कौन सी रिलीज़ हुई है इनके बारे में बात करूँगी। तो मूवी का नाम है द इंडिया स्टोरी, श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल के ऊपर बनी फिल्म, ड्रामा है बिल्कुल, और आप लोग वन टाइम मूवी के तौर पे अगर देखना चाहते हैं ये फिल्म देख सकते हैं। इसके बाद फिल्म आ जाती है रफ्तार, राजकुमार राव, कीर्ति सुरेश, कीर्ति और आप लोग के लिए ये भी एक ड्रामा फिल्म है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरी तरफ से इस मूवी को भी देख सकते हैं। अगली फिल्म है इंद्रजाल, इंद्रजाल भी अगर आपने कुछ अलग नहीं देखा, थोड़ी सी अलग लेवल की फिल्म है, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा थ्रिलर, मिस्ट्री, मतलब मिस्ट्रेस, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो पौराणिक कथाओं से ली गई हैं, हिस्ट्री से ली गई हैं, और कुछ अंधविश्वास भी है। अगला है दुल्हनिया ले जाएंगे, फिल्म आ चुकी है, खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा, ये एक कॉमेडी फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद धमाल 4 के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अगर कुछ नया देखने का मन है तो ये कुछ फिल्में हैं जो आज रिलीज़ हुई हैं। इधर बीच कोई बड़ी फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस पे नहीं आई है, हाँ बेबी डू और डाई के बारे में मैंने आपको बताया था, वो मूवी अच्छी थी। आपने अगर कुछ ड्रामा, हंसने वाली फिल्म या कुछ अलग नहीं देखा है तो आप हुमा कुरैशी की ये फिल्म एंजॉय कर सकते हैं, वन टाइम मूवी आई है, ठीक है। तो कुछ ही देर में मैं इस वीक की कुछ वेब सीरीज़ के बारे में भी बताऊँगी, कौन कौन सी ऐसी वेब सीरीज़ हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं और रिलीज़ हो चुकी हैं नेटफ्लिक्स पे और आपके लिए ही सिर्फ बनी है, ठीक है। मुसाफिर कैफे, दिव्या प्रकाश दुबे की उपन्यास बेस्ड ये मूवी है, रोमांटिक ड्रामा सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। कलाकारों की बात करूँ, विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना है इसमें, तो एक बार आप ये इंजॉय कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये मूवी आपके लिए बनी है, ये वेब सीरीज़ आपके लिए, ठीक है। और भी वेब सीरीज़ की बात करना चाहूँगी इस वीक, जो जो जो जो जो जो भी रिलीज़ हुई हैं, ठीक है। आदर्श बाल विद्यालय ये भी अच्छी है, आयुष तिवारी, नवीन कस्तूरिया, के मेनन, इनकी वेब सीरीज़ अच्छी है, वन टाइम देख सकते हैं। 17 जुलाई को रिलीज़ हुई द ईस्ट पैलेस, ठीक है, ये आपकी इधर की नहीं है, यानी कि ये चाइनीज़ है, और इसमें आपको एक्शन, फैंटेसी, हॉरर सब मिल जाएगा। जो लोग बाहर की फिल्में देखना, वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं उनके लिए प्रीतम पेड्रो के बारे में ऑलरेडी आपको लास्ट वीक ही बता चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी है वो अभी भी प्रीतम पेड्रो को एंजॉय कर सकता है। एक ऐसी वेब सीरीज़ जो आपके दिमाग को हिला के रख देगी और आपको पहुँचा देगी ऐसी दुनिया में कि यार सच और झूठ का पीछा ऐसा हो तो यार ज़िंदगी में कभी झूठ ना बोलो और कभी कोई गलत काम ना करो, क्योंकि गलत काम करने के बाद वो गलती आपके सामने आपकी लाइफ में कब आ जाए, अगर आपने उसका रिग्रेट नहीं किया तो आपको कभी भी रिग्रेट करना पड़ सकता है। ये फिल्म ये तो सीधे तौर पर बताती है कि अगर आपने रिग्रेट अपनी गलती का नहीं किया भाई तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कहते नहीं जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, तो भाई निश्चित कल वाला सीन ना रहे, तो आप लोग तैयार हो जाइए इसके लिए और मुझे अब अगला गाना प्ले करने का मौका दीजिए। तो मैं बिना किसी देरी के आपके लिए प्ले करना चाहती हूँ एक धमाकेदार सॉन्ग, जिसको सुन के मजा आएगा।

सो वापस से आरजुबीना आपके साथ लाइव हैं और करने जा रहे हैं बहुत सारी बातें आप लोगों से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गुड इवनिंग अगेन सभी को, सबका स्वागत है सेलेक्ट योर प्रेफर्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और डेस्टिनेशन। ओके, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि आपके साथ आरजुबीना लाइव हैं और आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक इमोशनल मूवी मैंने भी जल्दी देखी। अगेन वो बॉलीवुड से जुड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी इमोशनल है कि जिसके बारे में बात करूँ तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। हाँ, अगर हम लोग भी अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, और मैंने बहुत दिन देखा, न्यूज़ में भी देखा और लोगों ने बताया कि ये फिल्म देखो यार मज़ा आ जाएगा, तो मैंने सोचा आप लोग को भी बताऊँ, आप लोग भी देख लें। एक फिल्म है मामा, जो कि एक साउथ की मूवी है, जिसको देखने के बाद मुझे ये लगा कि यार क्या आजकल के मामा भांजे का रिलेशन ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया, बच्चे सोचते हैं मामा बुलाएंगे, मामा जाएंगे मामा के, लेकिन पहले जो मामा और भांजे का रिलेशनशिप होता था वो अब नहीं है। वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो कहते हैं ना कि लोगों के लिए एक दूसरे का जो अटेंशन था वो कम हो गया। तो ये फिल्म आप लोग के लिए है, साउथ में हिंदी में अवेलेबल है, मामा फिल्म, जिसमें इतना इमोशंस, इतने इमोशंस, ऐसे लगता है कि किसी ने इमोशन की बरसात कर दी है। ये फिल्म नहीं है, ये भावनाओं का एक वो है, और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर आप भी अपनी रिलेशनशिप अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं। देखिए, रिश्तेदारों का मतलब ये नहीं कि उनसे फ़ोन पे बात करें या ना करें, पर हाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर है कि हमें सबके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कभी कभी टाइम देना चाहिए, महीने में एक बार या दो बार बात तो फ़ोन पे एटलीस्ट करनी चाहिए। तो ये फिल्म मुझे ये याद दिलाती है कि हम जो अपने खोते हुए रिश्तों को दूर कर रहे हैं अपने से, उन सबके नज़दीक आने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए और फिल्मों के बारे में बात करते हैं जो कि आज रिलीज़ हुई हैं। तो इंडिया स्टोरी की बात करते हैं, जो आज की एक जानी मानी फिल्म मानी जा रही है, और क्या खास है दोनों ही बताऊंगी इनके बारे में। तो चलिए, आर यू रेडी? तो फटाफट से आ जाइए लाइव मेरे साथ, जानकारी आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ आरजुबीना के तौर पर, आपकी आरजुबीना द इंडिया स्टोरी। इंडिया स्टोरी यानी कि इंडिया की कहानी क्या कहेगी ये तो मूवी ही बताएगी। मैंने तो ये फिल्म नहीं देखी द इंडिया स्टोरी, लेकिन अगर आपने देखी है तो ज़रा मुझे ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के तौर पे मेरे पास जो जानकारी है, जो मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए, वो मैं बता देती हूँ कि आखिर ये फिल्म कहना क्या चाहती है। तो समझिए, कहनी के तौर पर फिल्म जो है वो एक एडल्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत खतरे से जुड़ी जानकारी हमें देती है। कौन सा खतरा? वही जो हमें आसपास नशे के रूप में या कहें तो एक जहरीले पदार्थ के तौर पे हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। तो कहानी जो है वो है जहरीले कीटनाशकों से उत्पन्न गंभीर बीमारियों के खतरों को बताती है। खास तौर पे इन फिल्मों को लोग ज़्यादा इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि ये कॉमन मुद्दे हैं जिनके बारे में जानकारी सबको होती है, लेकिन हो के भी आप क्या कर रहे हैं? क्या हम उन कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर रहे हैं? नहीं। इसीलिए ये फिल्में ना सिर्फ फिल्में होती बल्कि ये अवेयरनेस के तौर पे हमारे बीच में आती हैं, हमें जागरूक करती हैं, लेकिन फिर भी हम जागरूक होते नहीं हैं। तो चलिए फिल्म के बारे में जानते हैं। इसमें आपको श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल दोनों की, कहते हैं ना कि एक असमान पटकथा के तौर पर दिखेगी। कहानी का आधार जो है वो है मेजर योगेश पाटिल, जो कि श्रेयस तलपड़े हैं, अपनी युवा बेटी की रासायनिक प्रदूषण से संबंधित कैंसर से मृत्यु के बाद कॉरपोरेटिव फार्मों और जो सरकार और किसानों के खिलाफ अदालत के मुकदमे हैं उनको दायर करते हैं। ठीक है, कानूनी सहायता के तौर पे पहली बार वकील बनी अर्चना यानी कि काजल अग्रवाल एक चुनौतीपूर्ण और बहुचर्चित राष्ट्रीय मामले को अपने हाथ में लेती हैं। वास्तविक दुनिया के संदर्भ की अगर बात करें तो ये पुस्तक हरित क्रांति में रसायनों के उपयोग और कासरगोड के में कीटनाशक संकट और पंजाब से बीकानेर जाने वाली कैंसर ट्रेन जैसे वास्तविक मुद्दों पर प्रकाश डालती है, और वाकई में इन पे बात होनी चाहिए। ऐसे ऐसे कीटनाशक यूज़ किए जा रहे हैं जो गेहूं और दाल और चावलों के तौर पे हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं और हमारे अंदर से ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं अरे अचानक से हार्ट स्ट्रोक आ गया, अरे अचानक से लीवर फेल हो गया, अरे इनका तो किडनी ऐसे ख़राब हो गया, शराब नहीं पीते थे तब भी, क्यों, आखिर क्यों, ऐसा हमने क्या कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह हम लोगों ने कर दिया? जी हाँ, हम ऐसे प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे कीटनाशक, ऐसे ऑर्गेनिक या कहें ऑर्गेनिक के नाम पे
इनऑर्गेनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि हमारे फसलों के साथ हमारे भोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर जा रही है। तो ये फिल्म मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, मैंने तो इस फिल्म को देखना है। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखें, द इंडिया स्टोरी। मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं दूंगी 5 में से 4 स्टार। थोड़ा सा अगर म्यूज़िक वगैरह इसमें और अच्छा होता तो लोग और पसंद करते, लेकिन देखिए हर इन्फॉर्मेटिव चीज़ को ज़रूरी नहीं कि इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए, जो रियलिटी है उसी में हमें खुश हो जाना चाहिए। गुड इवनिंग नागेश्वर। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी इस वीक तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ आपसे मिस हो जाएगी, क्या बोलते हैं, आर यू रेडी? तो ठीक है, रेडी स्टडी रहिए और आगे हम लोग बात करेंगे कुछ ही देर में आप लोग के साथ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर सुनेंगे और उन आंसर्स के साथ आपके लिए आपकी पसंद के गाने सुनने को मिलेंगे। थोड़ा फट से लाइव हो जाइए, हाय हेलो लिख दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कौन कौन है जो हमारे साथ इस शाम में करना चाहता है शुरुआत उन गानों की जो वो काफ़ी दिनों से सुनना चाह रहा था। तो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक हमारे साथ और थोड़ा सा मस्ती करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन आपके साथ लाइव रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड, आपके साथ लाइव है आपकी अपनी आरजे बीना, आपके वाले शो गोंडा मसाला आरजे बीना वाला के साथ। स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल, मेरे दिल का करार कौन है वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी, क्योंकि मेरे दिल का करार बनने के लिए आपको सवालों के जवाब देने हैं। फिलहाल हमारे साथ धर्मेश आ चुके हैं, लिखते हैं, मुस्कानों की सौगात लेकर फिर महफिल में आई हैं, अपनी प्यारी आवाज से दिलों को महकाने आई हैं, हर गीत में अपनापन, हर बात में प्यार छलकता है। स्वागत है आरजेबीना आपका, हर श्रोता आपका इंतजार करता है, आपका श्रोता धर्मेश त्रिपाठी। वाओ क्या बात है, आप भी शायर बन गए हैं, बहुत खूबसूरत शायरी आपकी। मैं भी आपके लिए भी शायरी लिख के बताती हूँ। आरजेबीना जी के स्वागत में शायरी मुस्कानों की सौगात लेकर फिर महफिल में आई हैं, अपनी आवाज़ से दिलों को महकाने आई हैं। क्या बात है, एक ही शायरी को दो बार आपने लिख दिया, क्या बात। फिलहाल मेरे लिए आपकी ये शायरी बहुत ही स्पेशल है, बहुत खूबसूरत आपने लिखा है। तो चलिए पहला सवाल आपके खेमे में देते हुए, सवाल ये है कि जॉन इब्राहिम की पहली फिल्म कौन सी है। चलिए, जॉन इब्राहिम की पहली फिल्म कौन सी है। आपको पता है जॉन इब्राहिम से जुड़ी कुछ खास बातें बताती हूँ। इन्होंने पहली बार एक एल्बम सॉन्ग में मतलब अपने आप को दिखाया था, और वो एल्बम सॉन्ग जो था वो एक गज़ल थी, और वो गाना भी सुनाऊंगी मैं आपको। आपको हैरानी होगी, यार ये गाना मैंने आज तक सुना ही नहीं सच्चे। मतलब आप लोग के प्लेलिस्ट अभी बहुत अधूरी है, और मेरे कहने से इस गाने का आप वीडियो भी देखिएगा। इसमें आपको जॉन इब्राहिम का वो लुक दिखेगा जो आपने कभी देखा ही नहीं। जी हाँ, भूपेंद्र और मिताली की आवाज़ में एक गज़ल है जिसका ना मतलब जिसके अल्फाज हैं कि शम्मा जलाए रखना जब तक कि मैं ना आऊँ, शम्मा जलाए रखना जब तक कि मैं ना आऊँ। ठीक है, तो ये गज़ल मैं प्ले करती हूँ, आप लोग सुन के बताइए। तो ये एल्बम सॉन्ग है जिसको सुन के आपको मज़ा आएगा। आप लोग ये बताइए कि जॉन इब्राहिम की पहली फिल्म कौन सी है, सोचिए ध्यान से। तब तक के लिए जॉन इब्राहिम का ये पहला गाना एल्बम सॉन्ग जिसमें इन्होंने अपनी अदाकारी दिखाई थी, जिसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बताइए कैसा लग रहा है। ये गज़ल है एक,

बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की जो श्रृंखला है उसमें 3 लोग 7/18 पे जिन्होंने आंसर दिया वो हैं सबलू जी, धर्मेंद्र जी एंड प्रीति। बिल्कुल सही आंसर, जिस्म फिल्म इनकी पहली फिल्म है और इसी में इन्होंने डेब्यू किया था। और ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये पहला गाना है जिसमें इन्होंने खुद को एज अ मॉडल रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने पहले मॉडलिंग स्टार्ट की थी, मॉडलिंग के बाद इनको लोगों ने बहुत पसंद किया और अच्छी खासी मॉडलिंग के बाद इनका करियर काफ़ी अच्छा इनका करियर बन गया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जॉन अब्राहम से कुछ सीखें और आप भी अगर लगता है कि किसी चीज़ में करियर बनाना चाहते हैं तो सोचिए मत, मौका है तो उसको यूटिलाइज करिए। तो चलिए अगला जो मैं क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछना चाहती हूँ, आपने मूवी सुनी होगी नाम तुम बिन, एक फिल्म आई थी काफ़ी अच्छी सी फिल्म थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था, लव ट्रायंगल था। तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, जो तुम बिन 2 आई यानी कि नई जो तुम बिन आई उसमें आपकी जो कहते हैं ना कि एक्टर्स हैं, मुझे तीनों एक्टर्स का नाम चाहिए। तुम बिन 2 में जो नए एक्टर्स हैं तीनों एक्टर्स का नाम बताइए, जो सबसे पहले बताएगा वो अपने नाम इस शाम के पसंदीदा गाने कर लेगा। थैंक यू सो मच धर्मेश। और फटाफट से सबलू जी, धर्मेंद्र जी एंड प्रीति जी अपनी फरमाइश भेजिए जिससे आप अपना गाना सुन सकें और बाकी भी अपना गाना सुन सकें। तो सवाल है कि तुम बिन 2 में जो एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं उनके नाम आपको बताने। गुड इवनिंग बबीता, कैसी हैं आप, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच धर्मेश। और चलिए सुनते हैं अगला गाना आप लोग के साथ एंजॉय करते हुए, और शाम कैसी भी हो अधूरी है, बात कैसी भी हो अधूरी है, तेरा साथ मिल जाए तो मुकम्मल हो हर वो बात, तू ना हो तो बातों की शुरुआत अधूरी है। दिस इज़ फॉर माई ऑल द लिसनर्स जो कि मुझे सुन रहे हैं और मेरे साथ लाइव हैं चैट रूम में या कहीं से भी फ्रिक्वेंसी पे भी सुन रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ ही हैं, बस महसूस नहीं कर पा रही हूँ पर हाँ ये जान रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बजाते रहिए। और सबसे पहले जो गाना आ गया है वो है धर्मेंद्र जी का, याद सताए तेरी नींद चुराए अब दिल ना लगे दिलबर, याद सताए तेरी दिल ना लगे, यही वाला गाना है ना। कुछ गाने ऐसे हैं ना जिसकी लिरिक्स तो नहीं याद रहती लेकिन हाँ दिमाग में इनका जो कहते हैं ना कि वो इंटैक्ट जो रहता है वो हमेशा रहता है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, धर्मेंद्र की फरमाइश वाला गाना, तो बिल्कुल देरी नहीं करेंगे लेकिन आप लोग के साथ इस गाने को इंजॉय ज़रूर करेंगे। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ब्रेक, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान 69.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

तो बिल्कुल सही गाना आप लोग सुन रहे थे, और अब बारी है हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होते, और इस गाने को तो हम रिलेट कर सकते। तो फिलहाल आंसर दिया है सबसे पहले धर्मेश ने, धर्मेश त्रिपाठी ने, नेहा शर्मा, आदित्य शील एंड आसिम गुलाटी, बिल्कुल सही आंसर है। और इसके लिए आपको अपनी पसंद का गाना सुनने का ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले प्रीति जी का गाना सुन लेते हैं, मुस्कुराहट वाला, क्योंकि ये गाना यार हम लोग की लाइफ से जुड़ा गाना है, तो ऐसे गानों को तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर नेवर नेवर नेवर नेवर। तो चलिए अगला सवाल थोड़ा सा म्यूज़िकल हो जाए, और म्यूज़िक की दुनिया से तो हम लोग एकदम जुड़े हुए हैं, क्योंकि संगीत ने हमारे जीवन को क्या कहें सुरीला बना दिया है। तो भाई सवाल है आपसे कि अरिजीत सिंह का पहला गाना कौन सा है, अरिजीत सिंह ने कौन सा पहला बॉलीवुड सॉन्ग गाया है, जरा लिरिक्स बताइए। और इसी के साथ फरमाइश सुनिए प्रीति जी की।

क्या बात है, और इस गाने को सुन के तो आंखों में आंसू आ गए। और चलिए सुनते हैं हम लोग सबलू की फरमाइश का गाना, जिन्होंने काफ़ी पहले ही आंसर दिया था, और इसके बाद हम सुनेंगे धर्मेश की फरमाइश का गाना, जाना ना नैन मिला के। ओए होए क्या बात है, बड़ा बढ़िया सा गाना है। तो चलिए देखते हैं क्या फरमाइश की है हमारे सबलू जी ने। आंसर्स भी देखती हूँ किसका आंसर सबसे पहले आया है।

चलिए अगला सवाल ऋषि कपूर और दिव्या भारती की कोई एक फिल्म का नाम बताइए। दिव्या भारती और ऋषि कपूर की किसी एक फिल्म का नाम बताइए। और चलिए आंसर देखते, शुभ संध्या, कैसे हैं अनिल जी, क्या हाल है, सभी का स्वागत है। और आंसर देखते हैं किसने सबसे पहले दिया। आंसर देने वालों का नाम तो पहले मैं बताती हूँ, लेकिन अब अगला जो गाना है वो प्ले होगा धर्मेश का। और जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए सुनने के लिए ये गाना भी, लेकिन उससे पहले आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर किसने दिया है सबसे पहले, तो आंसर देने वालों में नाम किसका है, फिर मोहब्बत बिल्कुल सही आंसर है। और फिर से धर्मेश त्रिपाठी और प्रीति जी ने आंसर दिया है, अरिजीत सिंह का पहला गाना फिर मोहब्बत, और आंसर दोनों का ही सही है। तो प्रीति और धर्मेश आप फरमाइश कर सकते हैं, और सेम टाइमिंग है तो इसलिए मैं दोनों की फरमाइश लूँगी। और देखते हैं सबलू, जब जब तेरे पास मैं आया इस सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला, जब आए मौसम गम के और फिर मोहब्बत करने चला। बिल्कुल सही गैस किया आप लोगों ने, लेकिन आंसर सबसे पहले किया धर्मेश ने गैस और हमारी प्रीति जी ने, तो दोनों अपनी पसंद के गाने सुन लेंगे। एंड सबसे पहले तो हम धर्मेश का पसंद का गाना सुनते हैं जो कि पहले ही पेंडिंग पड़ी हुई है फरमाइश। और अगला सवाल आप लोग के लिए मैंने बता दिया है, आंसर दिया है किसने, आंसर दिया है अनिल जी ने सबसे पहले और आशु जी ने, तो दोनों की फरमाइश का गाना प्ले होगा। धर्मेश जी एंड प्रीति जी आप लोग की पेंडिंग फरमाइश है, तो आप लोग अपनी अपनी फरमाइश भेज दीजिएगा, लेकिन अभी इसके बाद हम लोग सुनेंगे प्रीति जी की फरमाइश का गाना एंड फिर हम सुनेंगे अनिल और आशु जी की फरमाइश का गाना। तो बने रही हमारे साथ, अभी चल रही है फरमाइश धर्मेश त्रिपाठी की।

सो वही आखिरी सवाल था आप लोगों के लिए, और आखिरी सवाल में बहुत सारे लोग अपनी मतलब पसंद का गाना सुन सकते हैं। एंड यस, अब प्रीति जी की गाना सुनने का टाइम है और गाना काफ़ी अच्छा है, तो चलिए सुनते हैं। उसके बाद हम सुनेंगे अनिल जी और आशु जी की फरमाइश का गाना। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए अपने अपने पसंद के गाने। और धर्मेश जी, आपका भी एक पेंडिंग है तो आप भी फरमाइश कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गाना, बिना देर के, जिंदगी की राहों में गम के मेले हैं। आए हाय, क्या बात है, उन मेलों में हम लोग भी कुछ खरीद लेते हैं। चलिए अगर मेले हैं तो मेलों को एंजॉय करना चाहिए, ना कि गम को महसूस करना चाहिए। गुड इवनिंग जुगल जी, कैसे हैं? शुभ संध्या। मध्य प्रदेश का कैसा मौसम है जरा ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील दैट मैं इसी जन्म तक रहूँगी। कहाँ, यहीं रहिए, बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोनिया आपको ऐसी हंसती रही, मुस्कुराते रही।

अनिल जी ने उसी फिल्म की फरमाइश भी कर दी, उसी फिल्म के गाने की जिस फिल्म का नाम लिया। बिल्कुल सही आंसर था। और आंसर के साथ ये फिल्म दिव्या भारती की यादों की एक हमारे पास निशानी के तौर पे, जब भी हमें उनकी याद आती है तो मैं ये फिल्म देखती हूँ। और ये फिल्म ना सिर्फ फिल्म है बल्कि उनकी यादों की एक छोटी सी, एक कह सकते हैं पैकेट है, जिसको खोल के हम उनको महसूस कर पाते हैं। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

चलिए अगली फरमाइश आशू जी की सुन लेते हैं, और शुक्रिया आप लोगों ने सवालों के जवाब दिए, और एक गाना जिसकी फरमाइश अनिल जी ने की है तो मैं बिल्कुल सुना के जाऊंगी, और इस गाने को सुनिए और एक फरमाइश वो भी सुन के फिर आप लोग जाइएगा। तो मैं अभी हूँ आप लोग के साथ लाइव, कुछ मिनटों तक और रहूँगी। ये गाना सुनाना है जिसकी फरमाइश आप लोगों ने की, कोई भी गाना सुनूंगी जो कि आप लोग के लिए स्पेशल हो। मैं किसी की फरमाइश नकारती नहीं, तो इसलिए गाना सुना के जाऊंगी, आप लोग बस इंतजार करें।

ऐसी दीवानगी सुनने के बाद फिलहाल आरजे बीना की दीवानगी इतनी है कि आप लोग के साथ ही मैं हूँ और एक गाना सुना के जाने का सोचा है आप लोग को, और बहुत पुराना सा गाना है, नया तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा फिलहाल कोई, तो गाना जो है मैं आप लोग को सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। फरमाइशें तो आप लोग की लगी ही रहेंगी लेकिन मैं आपको गाना सुनाऊँगी, थोड़ा सा शाम से ही जुड़ा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, मज़ा आएगा आपको, गौर फरमाइए।

तो एक छोटी सी कोशिश आप लोग के लिए, और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। और भाई आखिरी फरमाइश बची थी मेरे शो की, तो मैं प्ले करके ही जा रही हूँ। गाना है मस्त नज़रों से, तो चलिए सुन लेते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बिना वाला, लेकिन काफ़ी देर से मैं अपने जो कहते हैं ना कि गानों के साथ आप लोग की शाम इंजॉय कर रही थी, लेकिन अब चलते चलते मुझे अब इजाज़त चाहिए आप लोगों से, और आपका थोड़ा सा टाइम लिया तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोग माफ़ कर देंगे कि दिल काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपका और दिल आपका गलती करेगा नहीं। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 9.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल का कहना है कि इश्क करना है तो फिर आग पे चलना सीखो, इश्क करना है तो फिर आग पे चलना सीखो, सिर्फ कागज की नुमाइश से घर नहीं चलता। इश्क करना है तो फिर आग पे चलना सीखो, सिर्फ कागज की नुमाइश से घर नहीं चलता। लोग डरते हैं जमाने की निगाहों से यहाँ, लोग डरते हैं जमाने की निगाहों से यहाँ, हर किसी के बस का ये दर्दे सफर नहीं होता। So, कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बात और जज्बात, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। इस्तकबाल है आपका मुस्तफा जी सऊदी से, आशा मिश्रा लखनऊ से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, महेंद्र राजस्थान से और सोनिया तिवारी गोंडा से, बबीता गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सबलू सामंत मुंबई से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, मालवीय नगर से, राजेश सिंह जी, शशि सिंह, नायला अंसारी, राजेश कुमार, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल यो आहा। सो एंजॉय करेंगे बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन कैसा लगा आप सभी को ये वाला गाना, कितना प्यारा है वो चेहरा जिसपे हम मरते हैं, और ये ना पूछो कि उससे कितना प्यार करते हैं। वैसे जिसको हम प्यार करते हैं उसका चेहरा दुनिया में सबसे प्यारा अपने आप लगने लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, और पहली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की सऊदी से। मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है गाना तुरु तुरु रु रु। पता नहीं कहां से करूं मैं प्यार शुरू। सो वैसे एंजॉय करते हैं अक्की का, अक्षय कुमार का ये सुपर डुपर हिट रोमांटिक गाना कुमार सानू पूर्णिमा की आवाज में, ऐलान पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल खट्टी मीठी कड़वी और तल्ख बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। सबका दिल कैसे रोज रोमांटिक हो सकता है, मेरा दिल तो हफ्ते में एक ही बार शायद मुश्किल से

सब एक मतलब सब एक तरफ से कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, लेकिन आपको ये कहाँ से रोमांटिक गाना लगा मुझे चैट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताना। सो एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा आए हाय। सो एंजॉय करते एक बार फिर से हाउ रोमांटिक वाला नगमा, लेकिन इस बार हमारी आशु जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

साल लगा। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सहा रोमांटिक लव स्टोरी वाला नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़, आपका स्वागत है। अरमान पटेल नगर गोंडा से, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से और जिशान आपका भी स्वागत है। नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि हर शाम सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी जिंदगी का एक दिन भी ढलता है। गुड इवनिंग आरजे सिंपल मैम, नमस्कार। जी हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन शाम मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। सूरज से शायद डर लगता है लेकिन शाम से बहुत प्यार है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की, उनको सुनना है गाना मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा सुरेश जी और लता मंगेशकर जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। वैसे हिना पिक्चर किस किस को पसंद है? मेरे मम्मी का तो फेवरेट पिक्चर है भाई हिना पिक्चर। अगर उनको हजार बार देखने को मिले ना, वो तब भी नहीं मना करने वाली और हजारों बार रोने वाली।

क्योंकि मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती हूँ और बहुत देर हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद में अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वाला कहावत याद करती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। क्योंकि पछताना नहीं चाहिए जिंदगी में, जो हो गया सो हो गया, एक ही तो जिंदगी है भाई, एकदम लाभचिक तरीके से जीना चाहिए। दुखियां आए तो उनको भी सलाम और खुशियां आए तो उनको भी सलाम, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय हाय, और जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय बाय बाय। कितना सिंपल है ना, एकदम आपके आरजू सिंपल, नॉट सो सिंपल की तरह। हाँ, सो एंजॉय करेंगे हमारी अगली फरमाइश। ये तो फरमाइश थी धर्मेश त्रिपाठी की, और इनका कहना है कि आरजू सिंपल जी, दिल से शुक्रिया, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। जब आपकी आवाज में ये गीत सुनाई देता है तो हर इंतजार भी खूबसूरत लगने लगता है। शुक्रिया इस प्यारे गीत को हमारी फरमाइश पर सुनाने के लिए। आपकी आवाज और आपकी मुस्कान रेडियो की पहचान है। जाने कैसा जादू है आपकी आवाज में, थका हुआ दिल भी मुस्कुराने लगता है। हर गीत एक नई कहानी बन जाता है और हर श्रोता आपका दीवाना बन जाता है। सो दिल से आभार है आपका श्रोता धर्मेश त्रिपाठी, लव यू धर्मेश त्रिपाठी जी। और आप लोग के बिना ये आरजू सिंपल नॉट सो सिंपल कुछ भी नहीं है, ये माइक भी कुछ नहीं है, ये स्टेशन भी कुछ नहीं है, और ये आरजेस भी कुछ नहीं है। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। महेंद्र को राजस्थान से सुनना है गाना, दिल की सुर्ख दीवारों पे, दीवारों पे नाम है तेरा तेरा। ओहो, मेरे बचपन वाला गाना हम फिर से सुनेंगे एक बार बहुत दिनों बाद। थैंक यू सो मच महेंद्र राजस्थान से, ये गाना सच में मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे हिमेश के पुराने सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे बचपन वाले, अभी के भी कुछ गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन पहले वाले तो

के पास में एक क्या हिमेश के हर एक एल्बम का हम लोग के पास में सीडी होता था, भले वो मेरे दद्दा लेके आते थे लेकिन फिर भी दिन भर में वही सुना करती थी, दिन भर में वही सुना करती थी। शायद ये गॉड गिफ्टेड है या फिर बचपन से ही, या फिर ये मम्मी पापा का असर है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे म्यूजिक से बचपन से प्रेम है। म्यूजिक है तभी शायद मैं हूँ, म्यूजिक से मेरा कनेक्शन है तभी मेरा दिन अच्छा है, म्यूजिक से मेरा कनेक्शन नहीं है तो दिन में कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर लगता है दोस्तों। सो हमने एंजॉय किया है ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की फरमाइश पे। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर है, उनका कहना है कि सूखे फूल को तोड़ने वाला कोई नहीं, सूखे फूल को तोड़ने वाला कोई नहीं, टूटे दिल को जोड़ने वाला कोई नहीं, कितनी मोहब्बत है उनसे काश वो जान ले, अफसोस यही बात की है कि उसको बताने वाला कोई नहीं। अच्छा जी, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सूखे फूल को तोड़ने की अब जरूरत क्या है, सूखे फूल को तोड़ने की अब जरूरत क्या है, और टूटे दिल को जोड़ने की कोई मूरत क्या है, जज्बात खुद ब खुद रूह तक उतर जाएंगे, बस आंखें पढ़ ले वो जुबां की जरूरत क्या है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है सोनिया तिवारी की, उनको सुनना है गाना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, दिल का क्या करें साहिब। ओहो, ये गाने भले ही एकदम मतलब बेबाक बातों वाले हैं, दिल टूटे आशिकों वाले हैं, बेवफाइयों वाले हैं, लेकिन ऐसे गाने पता नहीं क्यों आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल को बहुत पसंद है दोस्तों। क्यों, आखिर क्यों? आई रियली लव दिस सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड। सारे फ्लैशबैक आने चाहिए, हर एक इंसान याद आना चाहिए जिसने दिल के साथ में खेला है।

साहिब, हमने एंजॉय किया है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये वाला नगमा सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, चलेंगे अगली फरमाइश गीत की तरफ। लेकिन मेरे लिसनर का कहना है कि दिल की बात आंखों में पढ़ ले वो नजर कहाँ से लाऊं, दिल की बात आंखों में पढ़ ले वो नजर कहाँ से लाऊं, सूखे फूल ही मिलते हैं अब किताबों में, दिल की धड़कन को महसूस कर ले वो दिलबर कहाँ से लाऊं। सो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि फासले और मजबूरियों के पहरे चाहे जितने हो, तलाशे दिलबर में उम्मीद कभी कम नहीं होती, जो रूह को छू जाए वो साया भी पास आ जाता है, बस शिद्दत से पुकारने वाला कोई अपना होना चाहिए। सो अगर आप दिल से पुकारेंगे तो एक दिलबर नहीं हजार दिलबर आ जाएंगे। बस पुकार के तो देखिए, दिल साफ करके तो देखिए। तो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है सौरभ की गुड़ाघाट गोंडा से, उनको सुनना है गाना आपकी खातिर। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा सौरभ की फरमाइश पर जो की है गुड़वाघाट गोंडा से। स्टे ट्यून्ड है अभी।

के ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये बहुत ही रोमांटिक सी फरमाइश थी। अगली फरमाइश हमारे पास में है बबीता की गोंडा से। बबीता को गोंडा से सुनना है सोहर, क्योंकि आज है उनकी, आज उनकी अनुष्का दीदी को बेटा हुआ है। सो बेटा होने के उपलक्ष्य में हम इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ये वाली फरमाइश है सिर्फ सिर्फ बबीता की गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और ढेर सारी बधाइयां आपको और आपकी दीदी को भी। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। चलो दोस्तों, आज सोहर भी बजेगा आपकी अपनी फरमाइशी महफिल में।

रमेश भाई भी थे हमारे पास, मैं बबीता की तरफ से, और बबीता जी हैं गोंडा से, और बबीता जी की दीदी अनुष्का दीदी की तरफ वाह लल्ला बहुत ही प्यारा सा बबुआ। तो सिर्फ और सिर्फ सोहर से काम नहीं चलेगा, फरमाइशी गीत से काम नहीं चलेगा, यहाँ सेलिब्रेशन से काम नहीं चलेगा, एक बहुत ही मीठी सी मिठाई तो आपकी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल को तो चाहिए ही चाहिए। सो मिठाई का इंतजार करेंगे दोस्तों और इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। सो लता जी की मुकेश कुमार की आवाज में इंजॉय करेंगे इस सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड।

किया है। फर्ज पिक्चर का ये गाना हमारे जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर, जग्गू दादा जी की फरमाइश पर चुकी है। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ। कार्तिक कश्यप को सुनना है गाना, मेरे महबूब कयामत होगी और आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। एंजॉय करते हैं किशोर कुमार की आवाज में एकदम दिल को छू जाने वाला नगमा, दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला नगमा, दिल को चकना चूर कर देने वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है।

कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये जो एक लाइन है ना कि न तुझ पे भी इनायत है, कर्मा घूम फिर के आ ही जाता है दोस्तों कहीं ना कहीं से। कितना कितनी प्यारी लाइन है ना, सच में जो बोओगे एट लास्ट आके वही काटोगे कहीं ना कहीं से। और ये अगले जन्म की बातें सिर्फ अगले जन्म की बातें होती हैं दोस्तों। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ इतना एक्टिव हो चुका है, ऊपर वाला भी ऑनलाइन हो चुका है और ऊपर वाला भी एक्टिव हो चुका है। सो जो इस जन्म में बोओगे ना वो इसी जन्म में काट के जाओगे। फिर आप चाहे कितने भी बड़े तुर्रम खां क्यों ना हो, से एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, उनको सुनना है गाना बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना। एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा इसी फरमाइशी गीत की, उस तरफ हम चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। स्वदेश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा करना, और 9 बजे विश्राम के साथ में एंटरटेनमेंट की महफिल में जरूर वापस आना। स्टे ट्यून्ड।

0: नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री

0: में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
1: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
3: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने

0: की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं आपके अपने आर्टिस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल, आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि इश्क के नाम पे जो रोज सियासत करते हैं, इश्क के नाम पे जो रोज सियासत करते हैं, उनको मालूम नहीं कि दर्द की गहराइयां क्या हैं। हम तो सूली पे भी हंसते हुए चढ़ जाएंगे, हम तो सूली पे भी हंसते हुए चढ़ जाएंगे, इन सस्ते दिलों को क्या पता कि सच्चाइयां क्या है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है नायला अंसारी की, उनको सुनना है गाना अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं और अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं क्योंकि वो अनजाने से बहुत कुछ बन जाते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। सो ये है नायला की फरमाइश और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन का बहुत ही खास सा सेगमेंट फरमाइशी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून। ये रियलिटी चेक कराता है ना गाना, हा? हा?

वो याद आते हैं। हमने एंजॉय किया स्ट्रेंजर्स द्वारा लेकिन सुपर डुपर डुपर हिट गाना अलका याग्निक की आवाज में नाइल अंसारी की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सबलू सामंत की मुंबई से। सबलू सामंत को मुंबई से सुनना है गाना ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। सो एंजॉय करते हैं वेरी वेरी सैड सॉन्ग, ओ माय गॉड। ये फरमाइश है हमारे सबलू सामंत की, जो कि कभी रहते हैं बिहार के, कभी रहते हैं मुंबई के, मीन्स हमारे इंडिया के सबलू सामंत।

लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ये फरमाइश थी सबरूस सावंत की मुंबई से। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। उनको सुनना है छम्मक छल्लो जरा धीरे चलो। तो एंजॉय करते हैं सुपर डुपर हिट नगमा कुमार सानू की आवाज में सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर। सो दोस्तों, ये है सदा बहार नगमा हाई एनर्जी हाई बीट्स के साथ।

0: चल लो, जरा धीरे चल लो, लचक जाएगी पतली कमर। चमक छल्लो के धीरे चलने के लिए आपको बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। उनकी कमर लचक जाएगी तो आपका क्या जाएगा? उनकी कमर लचकेगी तो दर्द आपको होगा क्या? आहां, तीर उधर लगा, दर्द इधर हुआ, ओ माय गॉड। हम एंजॉय के कुमार सानू की आवाज में ये वाला नगमा एंजॉय करते हैं। अगली फरमाइश हमारे पास में है पंजाबी की, और पंजाबी को सुनना है बी प्राक का गाना। सो एंजॉय करते हैं। तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, लेकिन कोई न चाहेगा तुमको मेरी तरह। क्या है कसूर मेरा जो दिल से उतर गया, मुड़के भी ना देखा मुझे तुमने एक दफा। तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा बी प्राक की आवाज में, बी प्राक की दर्द भरी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ पंजाबी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। I really love this song.
1: छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें, किताबों की तरह जो याद कर ली।

आवाज, उनका दर्द, उनके शब्द, सब कुछ। आई रियली लव दिस बिप्राग, लव यू सो मच। हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सनंग में एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। एंजॉय करेंगे इनके फरमाइशी गीत को और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। ओहो दोस्तों, ओ माई गॉड। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल, एंजॉय करते हैं धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। लग रहा है धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश नाराज हो चुकी है और वो कह रही है कि अब मैं प्ले ही नहीं होंगी। सो फाइनली स्टार्ट हो चुका है इनका फरमाइश नंबर, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल, बाय बाय, सो मच लव, सो मच केयर टू यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।

मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है। वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेर व शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

ढल रही है शाम और आसमान पर रंगों की चादर सिमट रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, जहां आज एक हसीन मुलाकात और आपका पसंदीदा शो बहारे गजल में मैं आपका दोस्त आरजे अदनान। आज की इस हमारी महफिल की रूह, हमारी बातचीत का मरकज एक ऐसा लफ्ज है जो सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी रूह का आईना है, और वो है चेहरा। जरा सोच कर देखिए ना, दिन भर हजारों चेहरे हमारी दुनिया आंखों के सामने से गुजरते हैं। भागदौड़ भरी इस दुनिया में हम न जाने कितने मुखौटे पहन कर जीते हैं, लेकिन जब रात की तन्हाई में हम अपने कमरे में लौटते हैं, और कभी कभी जब हमारा अपना ही चेहरा हमें गैर लगता है, तब उस एक अक्स का जहन में आना हमें हमारे असली वजूद से मिला देता है। हमारा चेहरा तो बस एक जरिया है, हमारा असली अक्स तो उस ना दिखने वाले एहसास के अंदर है जो कहीं धड़कता है। तो आइए इसी चेहरे की परतों को टटोलते हैं, कुछ चुनिंदा गजलों और शेरों को आपको सुनाते हैं, जैसे कि नईम अख्तर साहब चेहरे को लेकर ही लिखते हैं। नईम साहब आखिर क्या लिखते हैं, आइए आपको बताते हैं। नईम साहब कहते हैं, कहा ये किसने कि चेहरा नया लगाओ मत, इसे लगा के मगर आईनों में आओ मत। लगा दिए हैं किसी ने जो पंख कागज के, तो अपने आप को इतना मियां उड़ाओ मत। कहीं ये दायराए तंज में ना आ जाए, हमारे सामने इस तरह मुस्कुराओ मत। अजब नहीं कि ये दुनिया गले आ जाए, बहुत ज्यादा गले से इसे लगाओ मत। निकाले और ही मतलब वो खाकसारी का, अब उसके सामने इतना भी सर झुकाओ मत। अभी अभी तो वो कुछ बोलने पे आया है, नईम अभी से उसे आईना दिखाओ मत। नईम अभी से उसे आईना दिखाओ मत। ये नईम साहब का लिखा शेर और शेरों का एक गुलदस्ता, जिसे हमने गजल कहा, वो पेश किया। और आइए इसी तरह हम सुनते रहेंगे कुछ खूबसूरत गजलों को आपके रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर।

व्हाट यू हैव इनसाइड रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड। वापस से लौट आए हैं बहारे गजल में। कहते हैं ना कि जो अंदर होता है वो बाहर दिखता है, और तभी तो एक चेहरा आईने में दिखता है, और एक चेहरा वो होता है जो आईने में नहीं पर हमारे जहन की स्क्रीन पर 24 घंटे सातों दिन चलता रहता है। वो चेहरा जिसे याद नहीं करना होता, अब वो याद हो गया है। वो चेहरा जो हर वक्त हमारे साथ रहता है। दिन भर की इस भागदौड़ में और शोरगुल में कभी कभी कोई एक चेहरा ऐसा होता है जो हमारे अंदर किसी कोने में खामोश बैठा रहता है, और जब जिंदगी के रास्ते थोड़े धुंधले लगने लगते हैं, जब अंधेरा सा छा जाता है, तो उस एक चेहरे की याद जहन में किसी जलते हुए चराग की तरह रोशन हो जाती है। और ये जरूरी नहीं कि वो चेहरा किसी महबूब का ही हो, वो किसी भी ऐसे अजीज का हो सकता है जिससे आपकी रूह जुड़ी हो। अगर हम बात करें, शायद आपके वालिद, आपकी वालदा, उनका चेहरा हो सकता है। इसी बात पे मुझे एक खूबसूरत सी गजल याद आ रही है। गजल कुछ यूं है कि बहाना ढूंढते रहते हैं कोई रोने का, हमें ये शौक है क्या आस्ती भिगोने का, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफी, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का, जो फसल ख्वाब की तैयार है तो ये जानो कि वक्त आ गया है फिर दर्द कोई बोने का, ये जिंदगी भी अजब कारोबार है कि मुझे खुशी है पाने की कोई न रंज खोने का, है पाश पाश मगर फिर भी मुस्कुराता है वो चेहरा हो जैसे टूटे हुए खिलौने का, वो चेहरा हो जैसे टूटे हुए खिलौने का।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: जी हाँ।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM और महफिल सजी है बहारे गजल की। इंग्लिश में एक बात किसी ने कही थी, That one face has all the geography of memories। जरा सोच कर देखिए ना, कैसे उस एक चेहरे की हर एक छोटी छोटी बात हमें याद रहती है। हमें शायद अपने चेहरे का जर्द होना या बदलना ना मालूम पड़े, मगर उस एक चेहरे की हर एक तब्दीली, बल्कि यूं कहें कि उसकी शिद्दत हमें उम्र भर याद रहती है। वो मुस्कुराते हुए उनकी आंखों की चमक, कभी उदास होने पर नजरें चुरा लेना, या किसी गहरी बात पर माथे पर आने वाली वो हल्की सी शिकन, ये सब हमारी यादों की किताब के वो पन्ने हैं जिन्हें हम चाह कर भी कभी नहीं भुला सकते। जैसा कि असद बदायूनी साहब ने बड़ा खूब लिखा है, देखने के लिए सारा आलम भी कम, चाहने के लिए एक चेहरा बहुत। सच में जब वो बेसाख्ता सी हंसी चेहरे पर आती है तो आसपास की पूरी दुनिया खूबसूरत हो जाती है। ये चेहरा महज नक्शा नहीं, हमारी तमाम यादों का मुकम्मल जहां है। तभी तो कैफ साहब लिखते हैं, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, आग क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है, पाँव न बांधा पंछी का आज का बच्चा कितना सयाना लगता है, सच तो ये है कि फूल का दिल भी छलनी है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है, सुनने वाले घंटों सुनते रहते हैं, मेरा फसाना सबका फसाना लगता है, कैफ बता क्या तेरी गजल में जादू है, बच्चा बच्चा तेरा दीवाना लगता है, बच्चा बच्चा तेरा दीवाना लगता है। और इसीलिए तो कहा कि यादों का एक मुकम्मल जहां है।

जिंदगी और चेहरे का ताल्लुक जितना जाहिर है उतना ही गहरा नाता इसका हमारी किस्मत और हमारे नसीब से भी है। ये नसीब शब्द भी बड़ा कमाल का है ना, कभी हमारे साथ हंसता है तो कभी हम पर सवाल खड़ा करता है। जब जिंदगी मन मुताबिक चल रही है तो हमें नसीब बहुत अच्छा लगता है, और जरा सी बात इधर से उधर हो जाए तो हम तकदीर को कोसना शुरू करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये एक महज तयशुदा स्क्रिप्ट है या फिर हमारे अपने ही फैसलों का रिफ्लेक्शन? मुझे तो लगता है किस्मत कोई संदूक या तिजोरी नहीं है, ये उस चाय की तरह है जिसे कितनी मीठी रखनी है इसकी थोड़ी बहुत चाबी हमेशा हमारे हाथ में होती है। हाथों की लकीरों के आगे भी उंगलियां होती हैं जो ये बताती हैं कि अगर आप मेहनत करें तो कुदरत भी आपके साथ आ ही जाती है। कभी कभी जब हम टूटते हैं तो यही नसीब मरहम बनकर बन जाता है। हम खुद को तसल्ली देते हैं जो हुआ वो मंजूर खुदा था और आगे बढ़ जाते हैं। सो चलने का हौसला आखिर किस तरह मिलता है, ये हमारे अहमद फराज साहब बड़ी ही खूबसूरती से अपनी इस गज़ल में आपको बताते हैं। गज़ल कुछ यूं है कि जिस समत भी मैं देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो, ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो, इस दीद की साथ में कई रंग है लर्जा, मैं हूं कोई और दुनिया है कि तुम हो, देखो ये किसी और की आंखें है कि मेरी, देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो, ये उम्रे गुरेजा कहीं ठहरे तो ये जानूं, हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो, हर बज्म में मौजुए सुखन दिल जदगा है, अब कौन है शीरी है कि लैला है कि तुम हो, एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूं, एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो, वो वक्त ना आए कि दिल एजार भी सोचे, इस शहर में तन्हा कोई हम सहे कि तुम हो, आबाद हम आशुफसा सरों से नहीं मक्तल, ये रस्म अभी शहर में जिंदा है कि तुम हो, ऐ जाने फराज इतनी भी तौफीक किसे थी, हमको गमे हस्ती भी गवारा है कि तुम हो। और ये देखिए ना, जिंदगी का फलसफा फराज साहब हमेशा की तरह बहुत आसानी से बता देते हैं।

खूबसूरत शामों का सफर का वक्त आ पहुंचा है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर बहारे गजल को समेटने का। लेकिन जाते जाते आज इस पूरी बातचीत के धागे समेट लेते हैं। जब आप इत्मीनान में हो और यूं ही वो एक चेहरा आपके जहन में आए तो जहन में तैरते उस खास चेहरे को थाम लेना बेहतर है। बस आंखें बंद करके मन ही मन उनसे ये कहने के लिए कि शुक्रिया मेरी मुश्किलों में मेरी ढाल बनने के लिए। क्योंकि दोस्त आखिर में सच यही है कि उस एक चेहरे की चमक हमारी आंखों में उतर आती है और जब पूरी कायनात के शोर में हम थक कर बैठते हैं तो वही चेहरा ठंडी हवा के झोंके की तरह हमारे वजूद को ठंडक दे जाता है। देखिए ना निदा फाजली साहब क्या खूब लिखते हैं, इनकी गजल भी हम जाने से पहले आप तक पहुंचा देते हैं कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता, वो ख्वाब जो बरसों से ना चेहरा ना बदन है, वो ख्वाब जो बरसों से ना चेहरा ना बदन है, वो ख्वाब हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाता। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों के उन चेहरों की मुस्कान को सलामत रखिएगा। और हाँ अगर मेरा चेहरा जहन में आ जाए तो बस मुस्कुरा दीजिएगा।

नमस्कार प्यारे श्रोतागण, मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे। आप सुन रहे हैं लेट नाइट हॉरर शो फ्राइडे स्पेशल 89.6 एफएम पर। रात गहरी हो चुकी है, घड़ी की सुइयां धीमी पड़ गई हैं और बाहर इतना गहरा अंधेरा है कि जैसे दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हो। अगर आप इस वक्त अकेले बैठे हैं और थोड़ा सा ध्यान से सुने तो शायद आपको भी उन दीवारों की सिसकियां सुनाई देंगी जो सदियों से खामोश खड़ी हैं। आज की कहानी हम ले जाएंगे फ्रांस के एक ऐसे किले में जिसका नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती है। दिन में ये किला किसी राजसी सपने जैसा लगता है। ऊंची ऊंची मीनारें, पत्थर की विशाल दीवारें और शांत। लेकिन रात होते ही ये महल एक रहस्य में बदल जाता है। कहते हैं यहाँ की हवाओं में सिर्फ ठंडक नहीं बहती, यहाँ बहती है एक अधूरी कहानी, एक ऐसा प्रेम जो विश्वासघात में बदला और एक ऐसी आत्मा जो 500 साल बाद भी इस किले को छोड़ नहीं पाई। स्थानीय लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, हरी औरत। आज की रात हम उसी कहानी का दरवाजा खोलने जा रहे हैं, तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए मेरे साथ ब्रिसाक किले के अंधेरे गलियारों में। किले का पत्थर ठंडा है, इतना ठंडा जैसे किसी पुरानी कब्र की दीवार है। जब भी मैं इस दीवार को छूता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे सदियों पुरानी यादें इन पत्थरों के भीतर अभी भी सांस ले रही हूँ। यहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध है, सड़ी हुई गुलाबों की। हाँ, गुलाबों की, लेकिन वह खुशबू नहीं जो किसी बाग में सुबह सुबह महकती है। ये खुशबू है जैसे किसी पुराने प्रेम की टूटी हुई याद हो जो बहुत पहले मर चुकी है, लेकिन उसकी गंध अभी भी इस किले की दीवारों में फंसी हुई है। रुकिए, क्या आपने सुना वो पच्चाप ठक ठक ठक ठक की आवाज? यह आवाज बिल्कुल साफ है, कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, बहुत धीरे। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा। और ये अंधेरा इस किले का सबसे पुराना निवासी है। लेकिन इस किले में कभी कभी वहम भी सच बन जाते हैं, और कभी कभी जो परछाई दिखाई देती है वो परछाई नहीं होती। ये वही किला है जहाँ कभी रहती थी शार्लेट, ब्रिसाक के शक्तिशाली ड्यूक की पत्नी। लोग कहते थे जब शार्लेट इस किले की बालकनी में खड़ी होती थी तो पूरा आंगन रोशनी से भर जाता था। उसकी सुंदरता सिर्फ सुंदरता नहीं थी, वो तो एक जादू थी। उसके बाल रात के आकाश जैसे गहरे और लंबे थे जो हवा चलने पर काले रेशम की तरह लहराते थे। उसकी आंखें पन्ने जैसी हरी, इतनी गहरी कि जो भी उनमें देखता कुछ पल के लिए दुनिया ही भूल जाता। उसका चेहरा इतना कोमल था कि लोग कहते थे अगर चांद कभी धरती पर उतर आए तो शायद वो शार्लेट जैसा ही दिखे। और जब वो मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे पूरे किले में वसंत आ गया हो। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक अंधेरा भी होता है, और शार्लेट की मुस्कान के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा था। हाँ, वो इस किले की रानी थी, उसके पास महंगे वस्त्र थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, सैकड़ों नौकर थे और एक बेहद विशाल महल था। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी, साथ।
ड्यूक अक्सर महीनों तक युद्ध में रहता था और इस विशाल किले में सैकड़ों कमरों के बीच, लंबे सुनसान गलियारों के बीच शार्लेट बिल्कुल अकेली रह जाती थी। रात के समय जब पूरा किला सो जाता था तो कभी कभी वो अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर दूर अंधेरे जंगल को देखती रहती, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, किसी ऐसे इंसान का जो उसे सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखे, जो उसके दिल की खामोशी को समझ सके। मगर इस किले की दीवारों ने उसकी मुस्कान भी देखी और उसके चुपचाप बहते आंसू भी। शार्लेट सब कुछ होते हुए भी बेहद अकेली थी और शायद यही अकेलापन उस कहानी की शुरुआत बना जिसने इस किले को हमेशा के लिए शापित कर दिया। दोस्तों, कहानी अभी शुरू हुई है और जो आगे होने वाला है वो इस किले के इतिहास का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। तो जरा ठहरिए, घबराइए मत, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रिसाक के किले की ये कहानी अभी और गहरी होने वाली है। हम अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद खुलने वाला है इस किले का सबसे बड़ा रहस्य। डर अभी बाकी है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: ड्यूक अक्सर युद्धों में रहता था महीनों तक, कभी कभी तो आधा साल गुजर जाता था, और वो इस किले में वापस ही नहीं आता था। इस विशाल किले में सैकड़ों कमरों के बीच, लंबे और ठंडे गलियारों के बीच शार्लेट बिल्कुल अकेली रह जाती थी। दिन में नौकरों की हलचल होती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती पूरा किला फिर से खामोश हो जाता। इतना खामोश कि कभी कभी उसे लगता जैसे ये दीवारें भी उसके साथ अकेलापन महसूस कर रही हों। कई रातों तक शार्लेट अपनी खिड़की के पास खड़ी रही, दूर जंगलों की तरफ देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, किसी ऐसे इंसान का जो उसे समझ सके, उससे बात कर सके, जो उसकी खामोशी सुन सके। और फिर एक दिन इस किले के आंगन में एक नया चेहरा दिखाई दिया, एक युवा सैनिक। वो ड्यूक की सेना का हिस्सा था, लेकिन वो बाकी सैनिकों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गर्माहट थी, और उसकी मुस्कुराहट इतनी सच्ची कि उसे देखकर कोई भी मुस्कुरा दे। पहली बार शार्लेट ने उसे किले के बगीचे में देखा। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था और किसी घायल पक्षी को अपने हाथों से संभाल रहा था। वो बहुत साधारण था, ना कोई शाही ठाट, ना कोई घमंड, बस एक सीधा साधा इंसान जिसकी आंखों में दया थी। शार्लेट ने आश्चर्य से पूछा, सिपाही तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुरा के जवाब दिए, ये छोटा सा पंछी घायल हो गया है रानी साहिबा, सोचा शायद इसे थोड़ी सी मदद की जरूरत है। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, और शायद यही नरमी शार्लेट के दिल को छू गई। उस दिन के बाद कभी बगीचे में, कभी किले के आंगन में, कभी गलियारों में दोनों की मुलाकातें होने लगी। पहले सिर्फ छोटी छोटी बातें होती थी, मौसम के बारे में, किले के बारे में, या उस दूर के शहर के बारे में जहां से वो सैनिक आया था। धीरे धीरे शार्लेट की मुस्कान लौटने लगी। कई महीनों बाद किसी ने उसे सचमुच हंसाया था, और उस सैनिक के लिए वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक इंसान थी, एक अकेली औरत जिसे बस किसी के साथ की जरूरत थी। लेकिन हर मुलाकात के बाद शार्लेट के दिल में एक अजीब सा बोझ भी आता। उसे महसूस होता कि शायद वो कुछ गलत कर रही है, क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत थी, और ड्यूक भले ही दूर रहता था लेकिन वो उसका पति था। एक दिन उसने अपराध बोध में भरकर सैनिक से कहा, हमें शायद इतनी मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। सिपाही बोला, रानी साहिबा अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, शार्लेट ने कहा, मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती। उसी पल दोनों समझ चुके थे ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, कुछ और जन्म ले चुका था, एक ऐसा एहसास जिसे दोनों रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पा रहे थे। अब उनकी मुलाकातें और भी गुप्त होने लगी, कभी चांदनी रात में, किले के बीच में, कभी पुराने गलियारों में जहां कोई नहीं आता था। शार्लेट उसके साथ बैठकर घंटों बातें करती, अपने बचपन के बारे में, अपने सपनों के बारे में, और अपने अकेलेपन के बारे में। शार्लेट ने उससे कहा, इस किले में मेरे पास सब कुछ है, पर कभी कभी लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। सिपाही धीरे से बोला, अब आप अकेली नहीं है रानी साहिबा। उसकी ये बात सीधे शार्लेट के दिल में उतर गई, और शायद उसी पल दोनों के बीच का फासला पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन ब्रिसाक के इस किले की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं थी। वे सब देखती थी, सब सुनती थी और सबसे बड़ा राज भी कभी हमेशा के लिए छिपा नहीं रहता। एक रात जब किले में बारिश हो रही थी और आकाश में बिजली कड़क रही थी, ड्यूक अचानक युद्ध से लौट आया और जैसे ही वो लंबे गलियारों से गुजरा, उसे एक आवाज सुनाई दी, हंसी की आवाज, उसकी पत्नी की हंसी। लेकिन वो हंसी उसके लिए नहीं थी। ड्यूक धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसके बाद इस किले में कभी शांति नहीं रही। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना संभव नहीं। अगर आपके दिल की धड़कन तेज हो गई है तो घबराइए मत, थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रिसाक किले का सबसे डरावना सच अभी सामने आना बाकी है। हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद आप सुनेंगे उस रात की कहानी जिसने इस किले को हमेशा के लिए शापित कर दिया। डर अभी बाकी है।

प्यारे श्रोतागण, अब इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा आने वाला है। ड्यूक का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक तूफान था। ऐसा तूफान जो सामने आने वाली हर चीज को तोड़ देता है। कहते हैं उस रात उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ आग थी, जलती हुई आग। जब उसने अपनी पत्नी शार्लट को उस सैनिक के साथ देखा तो एक पल के लिए पूरा कमरा जम गया। कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ तीन लोगों की सांसें और बाहर गिरती बारिश की आवाज। ड्यूक ने धीरे धीरे अपनी तलवार निकाली, लेकिन फिर वो रुक गया। उसने तलवार वापस म्यान में डाल दी, क्योंकि उसके मन में तलवार से भी ज्यादा क्रूर सजा आ चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, तो ये वफादारी है तुम्हारी शार्लेट? ये है तुम्हारा सच? शार्लेट रोने लग गई। डर से कांपते हुए उसने कहा, नहीं सुनिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ड्यूक चिल्ला के बोला, एक शब्द नहीं, बिल्कुल चुप। मैंने तुम्हें इस किले की रानी बनाया और तुमने मुझे राज्य में हंसी का पात्र बना दिया। शार्लेट ने रोते हुए कहा, मैं अकेली थी, आप महीनों दूर रहते थे। ड्यूक ने कहा, अकेली तो इसलिए तुमने इस किले को पाप का अड्डा बना दिया। कहते हैं ड्यूक ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और जो आदेश उसने दिया वो इतना भयानक था कि सैनिक भी एक पल के लिए कांप गए। इस औरत को यहीं इस कमरे में जिंदा दीवार पर चुनवा दो। सैनिकों ने डरते हुए कहा, महाराज। लेकिन ड्यूक ने गुस्से में बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैंने कहा इसे दीवारों पे चुना दो। शार्लेट ने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैंने आपको प्यार किया है। ड्यूक ने कहा, प्यार? तुम्हारा प्यार सिर्फ एक धोखा है। और फिर किले की दीवार के पास पत्थर जमा किए जाने लगे। शार्लेट को जबरदस्ती उस कोने में खड़ा कर दिया। शार्लेट चीखती रही, नहीं मुझे मत बंद करो, कृपया करके मुझे बाहर जाने दो, मुझे छोड़ दो। पर पहला पत्थर लगा। शार्लेट फिर चिल्लाई, रहम करो, मैं मर जाऊंगी। दूसरा पत्थर लगा, वो और चिल्लाई, कोई तो दया करो, मुझे बचाओ। और धीरे धीरे दीवारें ऊंची होती गई। शार्लेट चीखती रही, ड्यूक मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, भगवान के

0: लिए मुझे माफ कर दीजिए।
1: ड्यूक ने कहा, तुम्हें माफी नहीं सजा मिलेगी। कहते हैं 3 दिन तक इस किले में एक ही आवाज गूंजती रही, शार्लेट की चीखें। पहले वो मदद के लिए पुकारती रही, फिर रोती रही, और आखिर में उसकी आवाज एक फुसफुसाहट बन गई।
0: कोई है, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, प्लीज बाहर निकालो।
1: और फिर सब कुछ शांत हो गया। जल्दी ही मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

प्यारे श्रोतागण, अगर आप अब तक इस कहानी के साथ बने हुए हैं तो शायद आप बहुत बहादुर हैं, क्योंकि ब्रिसाक किले की ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक श्राप है, एक ऐसी सच्चाई जो सदियों से इन पत्थरों की दीवारों में कैद है। और आज 89.6 FM की आपकी लेट नाइट RJ आपको उस सच्चाई के आखिरी हिस्से तक ले जाने वाली है। उस रात के बाद क्या हुआ, शार्लेट की मौत के बाद इस किले में क्या बदला, इन सवालों का जवाब मिलने वाला है कुछ पलों में। जरा ठहरिए, डर अभी बाकी है। कहते हैं उस रात के बाद ब्रिसाक किले में सब कुछ बदल गया। दिन में सब कुछ समान दिखता था, सैनिक पहरा देते थे, नौकर अपने काम करते थे और किले के दरवाजे वैसे ही खुलते बंद होते थे जैसे हमेशा होते थे। लेकिन जैसे ही रात होती, इसका किले का माहौल बदल जाता। गलियारों में एक अजीब सी ठंड फैल जाती, इतनी ठंड कि मशाल की आग भी कांपने लगती। और फिर धीरे धीरे किले में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। पहले लोगों को लगा ये हवा की आवाज है, फिर लगा शायद पुराने पत्थरों की गूंज है। लेकिन एक रात एक सैनिक ने साफ साफ सुना एक औरत की धीमी धीमी सिसकियां। वो आवाज ठीक उसी कमरे के दीवार के पीछे से आ रही थी जहां शार्लेट को जिंदा चिनवा दिया गया था। कहते हैं उस रात के बाद किले के कई नौकरों ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने उस गलियारे में कुछ देखा था। एक औरत हरी पोशाक में धीरे धीरे चलती हुई, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसका चेहरा आधा वैसा ही था जैसे वो कभी थी, सुंदर कोमल, लेकिन आधा सड़ा हुआ, भयानक, जैसे मौत ने उसे आधे रास्ते में रोक लिया हो। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन उनमें एक चीज साफ दिखाई देती थी, इंतजार, जैसे वो अब भी किसी का इंतजार कर रही हो, शायद अपने प्रेमी का, या शायद किसी ऐसे इंसान का जो कभी उसकी कहानी सुने। और कहते हैं कभी कभी जब रात बहुत गहरी हो जाती है और पूरा किला सो जाता है, तब उस गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई देती है, धीमी, बहुत धीमी, जैसे पत्थर पे कोई चल रहा हो। और अगर कोई बहादुर इंसान उस आवाज का पीछा करे तो अंत में उसे वही दिखाई देता है, एक औरत हरी पोशाक में अंधेरे में खड़ी हुई, उसका चेहरा आधा खूबसूरत और आधा सड़ा हुआ, जैसे प्यार और मौत एक ही चेहरे में ठहर गए हो। कहते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ भटकती है गलियारों में, सीढ़ियों पर और उस कमरे के पास जहां उसकी आखिरी सांस टूटी थी। और शायद वो आज भी इंतजार कर रही है किसी ऐसे इंसान का जो उसकी कहानी सुने और उसे याद रखे। प्यारे श्रोतागण, आज आपने भी उसकी कहानी सुन ली है, इसका मतलब अब आप भी उसके रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं। जब आप यह शो बंद करेंगे और अपने कमरे की लाइट बुझाएंगे तो एक बार अपने पीछे जरूर देखिएगा, क्या पता ब्रिसाक की हरी औरत आपकी परछाई में खड़ी हो। शुभ रात्रि अगर आप सो सके तो।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
2: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोवर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज़, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज के सफ़र में, हम इसी खूबसूरत सफ़र को लेकर के साथ में उनकी कई चीज़ों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफ़र होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए पहला गाना सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं के फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपने अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था। बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा सा गीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोकगीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थीं। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो ज़रा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, ज़रा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थीं, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी, ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार SD वर्मन से जिद की कि गाने की शुरुआत किसी वाग यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज़ से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया की जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबा गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो डरना क्या कि शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से। आप सही बोला फिल्म।

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी। रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नज़र में प्यार था। मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्यौहार था। दर्द छुपाकर भी उन्होंने हंसना सीखा। हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रहीं। अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई। हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई। पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफ़र को यहीं विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम संग मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी, जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यहीं विराम देते हैं। मैं हूं आपकी आरजे ख्वाहिश।
0: और मैं हूं आरजे गुमसुम।
1: भूले बिसरे गीतों की ये शाम यहीं थम जाए, फिर मिलेंगे अगली महफिल में। तब तक आप सभी को शुभरात्रि।
0: शुभरात्रि।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल 72-34-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8888109400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मगर मगर
1: क्या?